एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। आज गुरुवार है। शक सवत 1948 के आषाढ़ मास की चौथी तिथि तदनुसार 25 जून सन 2026 इस समय सुबह के 5:57 होने को है। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 6 बजे हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर।
1: आस्था के स्वर।
0: आस्था के स्वर की पहली प्रस्तुति में सुनिए देशगान संवेद स्वर में।

आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर। लीजिए आप सुनिए लता मंगेशकर के स्वर में ये पारंपरिक भक्ति गीत।

आस्था के स्वर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से। लीजिए अब सुनिए हरिओम शरण और नंदिनी शरण के स्वर में ये पारंपरिक भक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आस्था के स्वर कार्यक्रम FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। अब सुनिए आज का चिंतन।

केवल चिंतन समाज को नहीं संभालता, सिद्धांत और चिंतन का आचरण समाज को संभालता है। सत्य बोलो का आचरण नहीं, सत्य का आचरण कभी हरिश्चंद्र बन युधिष्ठिर बन हमें संभालता है। कर्म का उपदेश नहीं, कर्म का आचरण कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी गांधी तथा विनोबा के रूप में हमें दिशा निर्देश देता है। दान दो की घोषणा दान देने की सजीव उदाहरण के रूप में राजा बलि की तथा भामशाह की याद दिलाते हैं। बलिदान की दो ऊंचे स्वर में मंच से की गई ललकार नहीं, बलिदान हो जाने के बाद कभी दीवार में चुने गुरुपुत्रों के फांसी के फंदे में झूले भगत सिंह के, तो कभी चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानी हमें कुछ कर गुजरने के लिए प्रभावित करती है। आचरण के अभाव में चिंतन कुछ भी नहीं है, आचरण रहित सिद्धांत व्यर्थ है। आज का आचरण समाज का आचरण नहीं, आज का आचरण व्यक्ति का आचरण नहीं, आज तो भीड़ का आचरण है। समूह बनते ही समाज के संबंध गए, न रही भक्ति, न रही श्रद्धा एवं न रहा प्रेम। सब अलग अलग स्वार्थों से सधे मिले, दूध का ही संबंध समाप्त नहीं हुआ, रक्त का संबंध भी जाता रहा। नमक की बात तो दूर रही, ऐसी हालत में इस समूह में समाज की कौन सोचे एवं कौन समाज के घटक व्यक्ति की बात करे। हमारे समाज की इतनी दुर्दशा कभी नहीं हुई जो आज है। हमारे चिंतन सिद्धांत एवं आचरण में कोई सामंजस्य नहीं है। नीचे उच्च कोटि का चिंतन आदर्श तथा आचरण का एक प्राचीन कथा प्रस्तुत है। प्राचीन काल में किसी शहर में एक राजा रहता था। वही पास के वन में एक ब्राह्मण भी रहता था। उस ब्राह्मण की एक कन्या थी जो विवाह के योग्य हो गई थी। स्त्री की

0: सलाह से ब्राह्मण उस कन्या के विवाह के लिए उसी राजा के पास धन मांगने पहुंचा। राजा ने उसे 10,000 रुपये दिए। ब्राह्मण ने कहा, महाराज ये तो बहुत थोड़ा है। राजा ने 10,000 पुनः दिलवाए। ब्राह्मण इस पर भी कहता रहा, महाराज ये तो बहुत कम है। अंत में राजा अपना समूचा राज्य ही ब्राह्मण को देने लगा। पर ब्राह्मण पूर्ववत यही कहता रहा कि महाराज ये तो बहुत कम है। लाचार होकर राजा ने पूछा, तो मुझे आप क्या देने को कह रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, आपने अपने परिश्रम द्वारा जो शुद्ध धन उपार्जित किया हो, वह चाहे बहुत थोड़ा ही हो, वह बहुत है, मुझे बस वही दीजिए। राजा थोड़ी देर तक सोच विचार करता रहा। फिर उसने कहा, मैं प्रातःकाल ऐसा धन आपको दे सकूंगा। तदंतर 10 बजे रात को वह अपनी वेशभूषा बदलकर शहर में घूमने लगा। उसने देखा कि सब लोग तो चैन की नींद सो रहे हैं, पर एक लोहार अपना काम अभी तक करता जा रहा है। राजा उसके पास गया और बोला, भाई मैं बड़ा गरीब आदमी हूं, यदि तुम्हारे पास कोई काम हो तो देने की दया करो। लोहार ने कहा, मेरे पास यही इतना काम है, यदि तुम इसे प्रातःकाल तक कर डालो तो मैं तुम्हें 4 पैसे दूं। राजा ने उस काम को तथा उसके एक आद को काम को कर डाला। लोहार ने उसे 4 पैसे दिए और उनको उसने राजधानी में आकर ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण भी उसका सारा राजपाट छोड़ केवल 4 पैसे लेकर घर चला गया। जब स्त्री ने पूछा कि राजा के पास क्या मिला, तो उसने 4 पैसे दिखलाए। ब्राह्मणी झुंझला गई और उसके 4 पैसे छीनकर जमीन में फेंक दिए। दूसरे दिन उस आंगन में 4 वृक्ष उगाए, जिनमें केवल रत्न के ही फल लगे थे। उन्हीं से उसने कन्या का विवाह किया और वह संसार का सबसे बड़ा धनी भी हो गया। राजा भी सुनकर देखने आया। ब्राह्मण ने जब उस वृक्ष को उखाड़कर राजा को वे 4 पैसे दिखला दिए और बतलाया कि इसी से मैंने तुम्हारे राजपाट को छोड़कर तुम्हारी यह ईमानदारी तथा श्रम की कमाई मांगी थी। नेकी की कमाई पहले भले ही थोड़ी दिखे, पर पीछे वह मनुष्य को सभी प्रकार से सुखी और संपन्न बना देती है।
1: ये था आज का चिंतन आलेख मुकेश दुबे का। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग।

वर के रूप में श्री राम जिस घोड़े पर सवार हैं वो मानो कामदेव का सुंदर रूपधारी है, जो अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और मस्त चाल से सबको मोहित कर रहा है। भगवान शंकर श्री राम के इस मनोहारी रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र प्यारे लगने लगे। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु श्री राम के इस रूप पर मुग्ध हैं, किंतु ब्रह्मा को ये छवि देख पाने के लिए अपने मात्र 8 नेत्र पर्याप्त प्रतीत नहीं होते। इधर बारात के स्वागत को आतुर नगरवासियों में आनंद की लहर दौड़ गई है। चंद्रमुखी तथा हरिण की सी आंखों वाली स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर स्वागत गान गा रही हैं। इस अवसर की शोभा देखने के लिए इंद्राणी, शची, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती तथा अन्य देवांगनाएं आम स्त्रियों का रूप धारण कर महिलाओं के समूह में आ मिली हैं। कौन भला किसे जाने और पहचाने, महिला समुदाय के कमल जैसे नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ रहे हैं और होठों पर मुखरित हो रहा है परिछन गीत।

0: श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब सुनिए आज की कृषि चर्चा, वाचक स्वर मनीषा चौबे का है।
1: भैवनहन राम राम। आज हम कृषि चर्चा में चर्चा करांगा खरीफ फसल की बुआई पर्याप्त नमी हो तबच करा। सोयाबीन, उड़द, मक्का इस सब के कई क्षेत्र में प्री मानसून बारिश की शुरुआत हो चुकी। जब तक क्षेत्र में 2 से 3 बार बारिश नहीं होए तब तक खरीफ फसल की बुआई नहीं करा। 100 मिलीमीटर बारिश होने पर बुआई पर्याप्त नमी में करा। उन्नत उत्पादन तकनीक छे, जलवायु क्षेत्र कालीन अनुकूल सोयाबीन की किस्म को चयन करा। अंकुरण परीक्षण का माध्यम से सोयाबीन की बोने कालीन बीज को न्यूनतम 70% अंकुरण सुनिश्चित होने पर बुआई करा। उर्वरक प्रबंधन की बात करा तो पोषण प्रबंधन कालीन अंतिम बखरनी से पहले गोबर की खाद 5 से 10 टन प्रति हेक्टर या मुर्गी की खाद 2.5 टन प्रति हेक्टर क खेत में फैलाई कन अच्छी तरह से फैलावा। कार्बनिक खाद का अतिरिक्त सोयाबीन फसल का लेन आवश्यक पोषक तत्व 20:60:40:20 किलोग्राम प्रति हेक्टर की पूर्ति यानी एनपीके सल्फर की पूर्ति खाली बोनी का समय करा। जेका लेन ई खाद ने छे जैसे यूरिया 56 किलोग्राम, 375 से 400 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 67 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश मात्रा प्रति हेक्टर या डीएपी 125 किलोग्राम, 67 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश ने 25 किलोग्राम बेंटोनाइट सल्फर मात्रा प्रति हेक्टर डाला।

0: खरीफ फसल का लेन बुआई तकनीक की बात करा तो कई साल सी फसल में सूखो अतिवृष्टि या असामयिक वर्षा जैसी घटना न देखी जा रही। ऐसी विपरीत परिस्थिति में फसल का बचावना का लेन ये सलाह दी जाए कि सोयाबीन की बुआई का लेन BBF या रिज्ड फरो पद्धति को उपयोग करा। न खरीफ फसल में बीज उपचार की बात करा तो सोयाबीन फसल की प्रारंभिक अवस्था में रोग न कीट नसीब बचाव का साथ साथ उपयुक्त पौध संख्या सुनिश्चित करने का लेन सोयाबीन में बीजोपचार अत्यंत आवश्यक छे। एकालेन अनुशंसा छे कि बीज क अनुशंसित पूर्व मिश्रित फफूंदनाशक एजोक्सीट्रोबिन 2.5%, थायोफिनेट मिथाइल 11.25%, कीटनाशक थायोमेथाजाम 25%, FS 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम BC उपचारित करा। न कार्बेंडाजिम 25%, मेनकोजेब 50%, WS 3 ग्राम प्रति किलोग्राम BC उपचारित करा। न उपचारित करने का कुछ देर का लेन छाया में सुखाड़ा। एका बाद अनुशंसित कीटनाशक थायोमेथाजाम 30 FS 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज या इमिडाक्लोप्रिड 48 FS बीज की दर से उपचारित करीकर बुआई करा। जैविक बीज उपचार की बात करा तो सोयाबीन की बोवनी करते समय बीज का जैविक कल्चर ब्रेडी राइजोबियम PSM प्रत्येक 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपयोग करा। रासायनिक फफूंदनाशक का स्थान पर जैविक फफूंदनाशक ट्राइकोडर्मा वेर्डी 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज को उपयोग बीजोपचार कालेन करी सकाज। एको जैविक कल्चर का साथ मिले कन प्रयोग करो जा सकज। न बीजोपचार न टीकाकरण में एक निश्चित क्रम फफूंदनाशक कीटनाशक जैविक कल्चर को अनुपालन करीकर बीजोपचार करा। बीज दर न बुआई की बात करा सोयाबीन की बोवनी का लेन अनुशंसित 45 सेंटीमीटर कतार की दूरी पर बुआई करा। साथ हज बीज क 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई करते हुए पौधा से पौधा की दूरी 5 से 10 सेंटीमीटर रखा। न सोयाबीन की बीज दर 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से उपयोग करा। आज की कृषि चर्चा में बस इतोज। राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे आज की कृषि चर्चा। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

इस सभा में अब से कुछ ही देर बाद यानी 7 बजे विशेष कार्यक्रम में सुनिए योगेश पगारे की वार्ता रेवा तट पर बसे तीर्थ स्थल। सुनहरे पत्र सुबह 7:20 पर। 8:15 पर सुगम संगीत में आज के हमारे कलाकार हैं सलमा आगा। 8:30 प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे और सुबह 9 बजे से आप सुनेंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। 10 बजे जिले की चिट्ठी आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे और 10:05 पर आपकी पसंद कार्यक्रम। सुबह 10:35 पर सुनिए लिंबादास रामलाल और साथियों से निमाड़ी लोकगीत। 11 बजे से पुनः विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे। शाम 5:30 पर NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 6 बजे युववाणी कार्यक्रम में आज का क्रम है क्रम इंद्रधनुष।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस

फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 6:30 पर, शाम 7:21 पर हमारा नियमित कार्यक्रम किसान वाणी, इसमें होगी उपयोगी भेंट वार्ता, निमाड़ी लोकगीत, मौसम मंडी भाव की जानकारी। रात्रि 8:00 से विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे। 9:15 पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे और 9:30 से पुनः आप सुनेंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।
1: अरे क्या बात है, सुबह की चाय और अखबार दोनों मिल जाए तो सुबह का आनंद दोगुना हो जाता है।
2: जी हुजूर, यदि चाय और अखबार के साथ हो निमाड़ की सुरीली धड़कन तो सुबह और भी सुहानी हो जाती है, है ना?
1: बिल्कुल सही कहा, तो सुनते रहिए
2: निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
3: आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा

पहली खबर है, आज से शहर में 30 जून तक रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। कलेक्टर श्री ऋषभ गुप्ता के निर्देश पर रक्तदान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शहरी क्षेत्र में रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। आज भगत सिंह वार्ड में रक्तदान शिविर लगेगा। 27 जून को नीलकंठेश्वर वार्ड, 29 जून को रामेश्वर व 30 को गणेशगंज वार्ड में शिविर लगाए जाएंगे। नागरिकों से अपील की है कि वे शिविर में रक्तदान अवश्य करें। अगली खबर है, जिला जेल में बंदियों को नियमित योग्य अभ्यास के लिए जेल अधीक्षक श्री डी के सारस ने प्रेरित किया। अगली खबर है, समितियों के संचालक मंडल के निर्वाचन हेतु रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन अधिकारी श्री संजय गुप्ता ने खंडवा जिले की नर्मदा क्रय विक्रय विपणन सहकारी समिति मर्यादित खंडवा संचालक मंडल के सदस्यों, पदाधिकारियों एवं अन्य संस्थाओं में भेजे जाने वाले निर्वाचन के लिए सहकारी निरीक्षक खंडवा श्रीमती भागवती मोरे को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है। अगली खबर है, सेफ क्लिक 2.0 सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता अभियान शुरू किया गया। अगली खबर है, दादाजी मंदिर नव निर्माण समिति के सदस्यों के साथ मंदिर निर्माण स्थल का कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने किया निरीक्षण। अगली खबर है, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित उत्कृष्ट छात्रावासों महाविद्यालय अनुसूचित जाति जनजाति बालक व कन्या छात्रावासों में विद्यार्थियों के लिए कोचिंग की व्यवस्था के लिए अनुभवी शिक्षकों, व्याख्याताओं, प्राचार्य, सेवानिवृत्त शिक्षकों से विषयवार कोचिंग हेतु आगामी 30 जून तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। अब जानकारी खेल जगत से। क्रिकेट में महिला T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 113 रन से हराया। अब जानकारी मौसम की। शहर में कल 1.5 घंटे में 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

0: कल दिन का अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज की ताजा खबर का संकलन विद्या मुकेश चौहान का।
1: आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा

0: हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7 बजने को हैं। विशेष कार्यक्रम में लीजिए आज सुनिए योगेंद्र पगारे की वार्ता, रेवा तट पर बसे तीर्थस्थल।
1: गंगे चे यमुने चे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधय कुरु। इस श्लोक का अर्थ है, हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी नदियाँ, आप सभी मेरे स्नान करने के जल में पधारिए। यह कहकर भारतीय श्रद्धालु धार्मिक जन स्नान करते हुए सभी नदियों की पवित्रता स्नान जल में पाते हैं। भारत नदियों का देश है। प्राचीन काल से ही भारत में इन्हें माँ कहकर पुकारा जाता है। इनका जल पवित्र और अमृत तुल्य माना जाता है। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी नदी नर्मदा है। नर्मदा ने इस प्रांत को जहाँ एक ओर खुशहाली दी है, वहीं इसका आध्यात्मिक स्वरूप जन जन के मन में श्रद्धा का भाव जागृत करता है। नर्मदा का एक शाब्दिक अर्थ होता है क्रीड़ा अथवा खेल। छोटे बड़े सभी इसके जल में क्रीड़ा करते हुए स्नान करते हैं। नर्मदा को रेवा भी कहा गया है। संस्कृत भाषा में रेवा का अर्थ छलांग लगाना होता है। वास्तव में नर्मदा को अनेक स्थानों पर छलांगे लगाना पड़ती है, तब कहीं जाकर वह मैदानी इलाके में पहुंच पाती है। रेवा का तटीय भाग प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूरित है। इसके किनारे अनेकों महान ऋषियों ने तपस्या की है, अतः इसके किनारों पर पुरातन मंदिर, आराधना के स्थल और तीर्थ क्षेत्र हैं। रेवा तट पर बसे तीर्थ स्थानों पर श्रद्धालु एवं परिक्रमावासियों का तांता वर्ष भर लगा रहता है। एक संस्कृत कवि ने इन शब्दों में नर्मदा का वर्णन किया है, जयति नर्मदा परम पुण्यतोय प्रवाहिनी सिद्ध शिवमयी शुभ सुमंगला गति प्रदायिनी। चारों वेद तथा 18 पुराणों के अनेक पृष्ठ नर्मदा की स्तुति से भरे पड़े हैं। नर्मदा नदी कुवारी कन्या है। एक गंभीर साधक एक व्रता कन्या की भांति वह सबसे अलग रहकर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। आग्नेय पुराण में नर्मदा की जन्म से संबंधित वृत्तांत है। नर्मदा ने 900 वर्षों तक बिना आहार के ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी नर्मदा की तपस्या पर प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। नर्मदा ने ब्रह्मा जी से कहा, जो सम्मान गंगा, यमुना और सरस्वती को प्राप्त है, वैसा ही सम्मान उसे भी मिलना चाहिए। पर ब्रह्मा जी नर्मदा की इस शर्त को पूरी नहीं कर सके। गंगा यमुना के समान पद प्राप्त करने हेतु नर्मदा ने विश्राम नहीं किया और काशी पहुंच गई, जहां घोर तप किया। नर्मदा की घोर तपस्या से महादेव जी प्रसन्न हुए और प्रकट होकर नर्मदा को वरदान मांगने के लिए कहा। तब नर्मदा ने महादेव जी से कहा कि गंगा और यमुना के समान उन्हें सम्मान मिले और उनके जल में स्नान करने वाले भक्तों के पाप धुल जाएं तथा भक्तों के लिए वह मोक्षदायिनी नदी कहलाए। महादेव जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, बेटी नर्मदा, तेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे दर्शन से लोगों को पुण्य लाभ प्राप्त होगा, यह मेरा आशीष है। कहते हैं कि नर्मदा महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करके उस दिन से नर्मदा पृथ्वी पर मानव कल्याण का व्रत लेकर प्रकट होकर बहने लगी। रेवा के उद्गम से लेकर अरब सागर खंबात की खाड़ी में विलयन तक अनेकों तीर्थ स्थल हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच स्थित अमरकंटक एक ऊंचा पर्वत है। वहाँ के कुंड के गौमुख से जलधारा प्रकट हुई है। इस स्थल को कोटिकुंड कहते हैं। यह तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ अनेकों यात्री नर्मदा के उद्गम स्थल को देखने आते हैं और भक्तिभाव में डूब जाते हैं। कोटी तीर्थ स्थल पर यात्रियों के लिए अनेक धर्मशालाएं हैं। कुंड के चारों ओर छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। यहाँ के बने मंदिरों में गौरीशंकर और नर्मदा जी का मंदिर प्रसिद्ध है।

क्षेत्र में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि पर मेला लगता है। अपने उद्गम स्थान से बहते हुए लगभग 322 किलोमीटर दूर पहला स्थान आता है मंडला। यहाँ की प्राकृतिक शोभा दर्शनीय है। इस स्थान पर नदी के तट पर सुंदर घाट और सुंदर मंदिर बने हुए हैं। मंडला में बना हुआ अहिलेश्वर का मंदिर बहुत सुंदर एवं भव्य है। मंडला से आगे चलकर नर्मदा का प्रवाह भेड़ाघाट नाम के सुंदर पहाड़ी स्थान से होता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भृगु ऋषि ने इस स्थान पर घोर तप किया था। यहाँ संगमरमर के अद्वितीय पत्थर हैं। इस क्षेत्र में नर्मदा नदी ने अनेक जलप्रपात बनाए हैं। इन सब में धुआंधार प्रपात प्रसिद्ध है। भेड़ाघाट क्षेत्र के आसपास अनेक देखने योग्य स्थल है। भेड़ाघाट देखने प्रतिवर्ष हजारों यात्री आते हैं। यहाँ पर बना 64 जोगनी का मंदिर और शंकर पार्वती का मंदिर देखने योग्य है। श्रावण मास में यहाँ भक्तजन आते हैं और अपूर्व शांति का लाभ उठाते हैं। भेड़ाघाट के बाद तीर्थ स्थलों में ब्राह्मण घाट पड़ता है। यहाँ भी कई मंदिरों का निर्माण हुआ था। यह भी एक रमणीय स्थान है। आगे चलकर नर्मदा दो भागों में विभाजित दिखाई देती है। नर्मदा एक छोटी पहाड़ी पर से नीचे की ओर छलांग

का मंदिर देखने योग्य है। श्रावण मास में यहाँ भक्तजन आते हैं और अपूर्व शांति का लाभ उठाते हैं। भेड़ाघाट के बाद तीर्थस्थलों में ब्राह्मण घाट पड़ता है, यहाँ भी कई मंदिरों का निर्माण हुआ था। यह भी एक रमणीय स्थान है। आगे चलकर नर्मदा दो भागों में विभाजित दिखाई देती है। नर्मदा एक छोटी पहाड़ी पर से नीचे की ओर छलांग लगाकर अनेक धाराओं में बहने लगती है। सप्तधारा के अधिक वेग होने से यहाँ धरती पर नीचे गहरे कुंड बन गए हैं। 11 किलोमीटर के बाद नर्मदा धीमी गति से बहती है। नर्मदा के दक्षिण तट पर रानी दुर्गावती द्वारा बनवाया गया विशाल घाट और एक शिव मंदिर है। आगे चलकर नर्मदा के किनारे सांडिया गांव है। इस स्थान पर शांडिल्य ऋषि ने अपनी पत्नी के साथ तप किया था, जो अति पवित्र माना जाता है। इस क्षेत्र में बड़े बड़े यज्ञ संपन्न हुए थे, जिसके प्रमाण में अनेक स्थानों पर सुगंधित भस्मी के ढेर मिलते हैं। लगभग 253 किलोमीटर की यात्रा कर कुब्जा नदी नर्मदा से आकर मिलती है। इन दोनों नदियों के संगम को रामघाट कहा जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन युग में राजा रंतिदेव ने इस स्थान पर महान बिल्व यज्ञ संपन्न कराया था। नर्मदा के अगले पड़ाव पर एक और तीर्थ क्षेत्र आता है, उसका नाम है सूर्यकुंड तीर्थ। कहा जाता है कि यहीं पर भगवान सूर्य नारायण ने अंधकासुर राक्षस का वध किया था। आगे प्रवाह में तवा नदी नर्मदा से आकर मिलती है। बरगी बांध से 10 किलोमीटर आगे प्रवाह पर नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर होशंगाबाद नगर बसा हुआ है। होशंगाबाद का पूर्व नाम नर्मदापुर था। नर्मदा तट पर बना नर्मदा मैया का सुंदर मंदिर बना है,

0: मंदिर है। ओंकारेश का संपूर्ण किराना मंदिरों एवं मठों से भरा हुआ है। शंकराचार्य जी ने भी यहाँ तपस्या की थी। प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने को आते हैं। कार्तिक और श्रावण मास में यहाँ मेला लगता है। भक्तों द्वारा की गई जय जयकार से क्षेत्र गुंजायमान हो जाता है। नर्मदा के इस तट पर तीर्थ स्थलों में यह तीर्थ स्थल धार्मिक पुरातत्वता लिए हुई है। ओंकारेश्वर से नर्मदा के किनारे आने वाले स्थानों में प्रमुख स्थान मंडलेश्वर और महेश्वर है। मंडलेश्वर के बारे में कहा जाता है कि प्रसिद्ध विद्वान मंडन मिश्र का यह मूल स्थान था। मंडलेश्वर से 8 किलोमीटर के बाद महेश्वर है। महेश्वर में नर्मदा के किनारे महारानी अहिल्याबाई द्वारा बनाए घाट और मंदिर दर्शनीय है, नहीं करती थी। मांडवगढ़ में नर्मदा मैया अचानक चमत्कारिक भाव से प्रकट हुई थी। परिक्रमावासी रेवा कुंड का दर्शन करने अवश्य जाते हैं। धर्मपुरी के आगे कुश ऋषि की तपोभूमि है। नर्मदा के इस तट पर अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, विश्वामित्र, भारद्वाज ऋषि मुनियों ने तप किया था। नर्मदा के आगे प्रवाह में बड़वानी, गोवर्धन और बीजरान का क्षेत्र पड़ता है। कुछ किलोमीटर चलकर नर्मदा मुड़कर पश्चिम दिशा की ओर बह निकलती है। वहाँ इसके तट पर आपेश्वर तीर्थ स्थान है। यहाँ पर शिव का भव्य एवं सुंदर मंदिर है। शिव भक्तों तथा शैव व्रतधारी जनमानस की 12 महीने यहाँ चहल पहल। दत्तात्रेय जी का मंदिर है। यहाँ पर स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज की समाधि है। यहाँ पूरे वर्ष तीर्थयात्रियों का आवागमन होता रहता है। नर्मदा के प्रवाह के किनारे सीनोर से आगे तट पर अनेक छोटे बड़े तीर्थ स्थल एवं तपस्या तथा साधना के स्थल हैं। शुक्र तीर्थ में एक विशाल वटवृक्ष है। इसके बाद नर्मदा जंगल नाले पार करते हुए शांत भाव से आगे बढ़ती है और खम्बात की खाड़ी में समा जाती है। भड़ोच में भृगुर तीर्थ नामक स्थान है, जहाँ जप तप आराधना की जाती है। तपस्या के लिए नर्मदा का तट अति उत्तम माना गया है। रेवा अति रे तपह कोरियात, यह पुराणों में कहा गया है। भारत की नदियों में से नर्मदा नदी का विशेष महत्व है। रेवा के तट पर बसे अनेकानेक तीर्थ हैं, सैकड़ों वर्षों से धार्मिक भक्तजनों को प्रेरणा देते आ रहे हैं। नर्मदा नदी तीर्थों और मंदिरों की नदी होने के अलावा प्राचीन भारतीय संस्कृति की पोषक रही है।
1: विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे योगेंद्र पगारे की वार्ता रेवा तट पर बसे तीर्थस्थल। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में मंत्रालयों और राज्य सरकारों को परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साइबर खतरों को लेकर जागरूकता पर दिया जोर। आज संविधान हत्या दिवस पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। और सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राज्य एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ी देव मीणा ने पोल वॉल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता है। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। इस बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई और प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि साइबर खतरा एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो बिना दस्तक दिए हमारे घरों तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कल भोपाल में आयोजित राज्यव्यापी साइबर जागरूकता अभियान के तहत सेफ क्लिक 2.0 अभियान के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को साइबर सुरक्षा के 3 महत्वपूर्ण सूत्र, जागरूकता, सावधानी और सहभागिता के बारे में बताया।

0: सुरक्षा जागरूकता में अगर अपन जाते हैं तो इसका हेल्पलाइन नंबर 1930 नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के बारे में सबको पता होना चाहिए। कोई भी गड़बड़ी यह नंबर आपकी अपनी ढाल बनता है, सबसे पहले इस पे कॉल करें। फिर सावधानी की बात आए तो जब भी कोई मोबाइल पे अनजान लिंक आए या अनजान कॉल आए, डराए धमकाए, तो रुको, सोचो, फिर कोई कदम उठाओ। फौरन जल्दी मत करो, लालच में मत आओ, विचार करके आगे बढ़ो।
1: ये अभियान 24 जून से शुरू होकर 8 जुलाई तक प्रदेश के 10 संभाग 55 जिलों और 50,000 से अधिक गांवों में एक साथ चलाया जाएगा। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर 27 जून को सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित की जाएगी। 2000 से अधिक प्रतिभागियों वाले इस समिट में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव शामिल होंगे। वहीं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप और मुख्य सचिव अनुराग जैन भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भूमि आवंटन, भूमि पूजन, लोकार्पण तथा एमएसएमई स्टार्टअप तथा स्वरोजगार अभ्यर्थियों को चेक प्रदान करेंगे तथा एमएसएमई प्रदर्शनी और ईज ऑफ डूइंग क्लिनिक का उद्घाटन भी करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो NCB द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। कल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया जाएगा, जिसे लेकर झाबुआ और डिंडोरी जिलों में प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। झाबुआ कलेक्टर डॉ योगेश तुकाराम भरसट ने एनकोड की बैठक में निर्देश दिए कि अब जिले के स्कूल कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में येलो लाइन खींचकर तंबाकू बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। दूसरी ओर डिंडोरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने बताया कि जिले भर में रैलियां निकालकर नशा मुक्ति की शपथ दिलाई जाएगी। वहीं 15 से 31 जुलाई तक विशेष जागरूकता पखवाड़े के तहत शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना के हितग्राहियों को दुग्ध संग्रहण और विपणन की मजबूत व्यवस्था उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएं। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल कल लोकभवन में आयोजित पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। अब रुख करते हैं खेलों की खबर का। भुवनेश्वर में 24 से 28 जून तक आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ी देव मीणा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पोल वॉल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। पोल वॉल्ट स्पर्धा में देव मीणा ने 5.46 मीटर की ऊंचाई पार करते हुए स्वर्ण पदक अर्जित किया। राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले देव मीणा ने आगामी एशियाई

के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में अगले 48 घंटों में मानसून के दस्तक देने के आसार हैं। राजधानी भोपाल समेत आसपास के जिलों में आज शाम तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून की दस्तक बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांडुना के रास्ते होने के आसार हैं। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर संभागों में अधिकांश जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई। इंदौर जिले में 22 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई। बारिश शुरू होते ही जिले में खरीफ की बुआई का कार्य भी शुरू हो गया है। जिले में वर्ष 2026 के खरीफ सीजन में 252,624 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें बोई जाएंगी, जिसमें प्रमुख रूप से 233,000 हेक्टेयर में सोयाबीन की बोनी होगी, जो कुल क्षेत्र का लगभग 92% है। स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा के उद्देश्य से कल मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष निवेदिता शर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में स्कूलों में बालिकाओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन सुविधाओं, पृथक एवं कार्यशील शौचालयों, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, सैनिटरी नैपकिन वितरण व्यवस्था, प्रयुक्त नैपकिन के सुरक्षित निस्तारण के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं तथा जागरूकता गतिविधियों की समीक्षा की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने दादाजी मंदिर नवनिर्माण स्थल का औचक निरीक्षण कर निर्माण एजेंसी को समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। आगरमालवा जिले में ग्राम पंचायत पालखेड़ी में विधिक जागरूकता शिविर में ग्रामीणों को बाल विवाह और दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा लोक अदालत के फायदों के बारे में बताया गया। मंडला में वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इंदौर के शासकीय महिला पॉलिटेक्निक और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में नामी कंपनियों ने कुल 145 छात्र छात्राओं को नौकरी के लिए चयनित किया। शासकीय आईटीआई राजगढ़ में नए सत्र के प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। इच्छुक छात्र 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। बैतूल की ग्राम पंचायत घाट प्रपरिया में कठपुतली के खेल के जरिए ग्रामीणों को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए जागरूक किया गया। और गुना में कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के तहत बीनागंज में एक विशेष करियर काउंसलिंग सत्र में एयरफोर्स अधिकारियों ने छात्रों को अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया की जानकारी दी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: सुनहरे पत्र कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राखी जैन का नमस्कार। और आज मेरे साथ हैं
1: विद्याधर मुले
0: सर। आपको भी
1: को नमस्कार।
0: आपको मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार राखी जी। नमस्कार
0: सर। आज हमें बहुत सारे मेल मिले हैं
1: तो ये तो बहुत और खुशी की बात है।
0: आपको बता दूं कि मैं कुछ पुराने भी ले रही हूं जो पिछले सप्ताह छूट गए थे, तो मैं शुरुआत उनसे कर रही हूं।
1: हम चाहते ही हैं कि कोई भी मेल ना छूटे, अगर कभी रह जाए तो अगली बार जरूर शामिल हो।
0: बिल्कुल, हम शुरुआत करते हैं। पहला मेल हमें मिला है माता चौक खंडवा से राजेंद्र कटारे, अनीता उदय और उज्जवल कटारे ने लिखा है। ये लिखते हैं, हमें आपके सारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। गुरुवार का सुनहरे पत्र कार्यक्रम बहुत ही शानदार पेश किया गया चिन्मय जी और मनीष शर्मा जी ने। साथ ही एक ही फिल्म से मैं फिल्म धर्मात्मा के गीत और कहानी इन्हें पसंद आई है।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत मशहूर फिल्म रही तो, और मनीष जी ने बहुत मेहनत से उसे बनाया तो पसंद आना ही था। बहुत धन्यवाद।
0: अगला मेल हमें भेजा है नेपानगर से है प्रभुदयाल शिवदे, शिवा बसंतीबाई और गणेश शिवदे ने। ये लिखते हैं, हमें आकाशवाणी खंडवा के सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। 17 जून बुधवार का एक ही फिल्म से कार्यक्रम पसंद आया, फिल्म धर्मात्मा की स्टोरी और गीत इन्हें पसंद आए हैं। इसके लिए ये मनीष शर्मा जी को बधाई दे रहे हैं।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद कि आपने कार्यक्रम पसंद आने के बाद वो मेल करने की जहमत उठाई, क्योंकि आपको जो पसंद आ रहा है वो हम तक पहुंचता है इस मेल के जरिए, और जो पसंद नहीं आएगा वो भी आप मेल के जरिए या पत्र के जरिए ही भेजेंगे। शुक्रिया।
0: अगला मेल हमें भेजा है दिल्ली से रेशमा अंसारी, जमीला शकीला प्रमीला और मोहम्मद सईद अंसारी ने। ये लिखते हैं, 11 जून को प्रसारित सुनहरे पत्र सुना, मन की गहराइयों को छू गया। इसके लिए ये आपको धन्यवाद दे रहे हैं। 11 जून को आपकी पसंद कार्यक्रम वो भी इन्हें पसंद आया है। 14, 16 और 17 जून को आरती जी, श्वेता जी और मनीष शर्मा जी द्वारा प्रस्तुत आपके मीते गीत कार्यक्रम इन्हें पसंद आया है। और शोले फिल्म, शोले की कहानी व गीत एक ही फिल्म से जो हमने प्रसारित की थी वो भी इन्हें पसंद आई है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से शोले का प्रसारण जो हुआ था लगभग एक महीना बीत गया है
0: जी,
1: लेकिन आपने उसे याद रखा और उसका उल्लेख किया। और बाकी कार्यक्रमों के लिए भी जो आपने तारीख वार लिख के भेजे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
0: अगला मेल हमें भेजा है सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री और मोहम्मद शादाब खत्री ने। ये इन्हें भी 11 जून का सुनहरे पत्र कार्यक्रम पसंद आया। इसी दिन का आपकी पसंद कार्यक्रम जिसे मनीष शर्मा जी ने प्रस्तुत किया था वो पसंद आया। 12, 13, 14, 15 जून का आपके मीते गीत कार्यक्रम इन्होंने पसंद किया है। 16 जून का भी इन्होंने पसंद किया है और 17 जून को फिल्म धर्मात्मा की गीत व स्टोरी ने पसंद आई।
1: खत्री परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका पत्र बिल्कुल उसी पैटर्न पे था जिस पैटर्न पे इससे पहले वाला पत्र था।
0: जी, जी, जी,
1: वो भी आपने एक एक तारीख लिख के वो उस कार्यक्रम विशेष का आपने जिक्र किया है, आपके मीते गीत, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: अगला मेल हमें भेजा है नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल्लाह डावर और इनके परिवार के सदस्यों ने। सर इनका पुराना भी ले रही हैं और नया भी है इस हफ्ते।
1: अच्छा, जो
0: का
1: पिछले हफ्ते रह गया था
0: वो भी
1: शामिल होगा
0: और नया भी
1: इस हफ्ते आ गया है उसे। बहुत खूब।
0: ये लिख रहे हैं, हम आकाशवाणी खंडवा के नियमित श्रोता हैं, आपके केंद्र से प्रसारित सभी कार्यक्रम सुनते, खत, ईमेल भेजते, मगर हमारे मेल व खतों को नजरअंदाज किया जाता है, ऐसा क्यों? आगे ये लिख रहे हैं, 11 जून रविवार को हमारे श्रोता कार्यक्रम में सुशील कुमार शर्मा से जो आरती शर्मा की बातचीत थी वो पसंद आई है और फिल्म धर्मात्मा के गीत व स्टोरी पसंद आई। आगे इन्होंने इस बार के जो मेल भेजा है उसमें लिखा है, वही पहले तो नजरअंदाज वाली बात की है और आगे वही फिल्म धर्मात्मा के गीत व स्टोरी इन्हें पसंद आई है, पूरा वही का वही है। सर
1: देखिए, आप हमारे पुराने श्रोता हैं तो आप ये जानते हैं कि नजरअंदाज तो होता नहीं है कुछ, लेकिन ये शिकायत बहुत पुरानी है और हमने चलिए मान लिया है कि पिछली बार आपका मेल नजरअंदाज कर दिया तो इस बार दोनों सिर आंखों पर बैठा लिए। ये बात भी ठीक नहीं और पहली वाली बात भी ठीक नहीं। समय अभाव के कारण बहुत सारे मेल छूट जाते हैं और राखी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा स्पीड हमें बढ़ानी होगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ताकि इस बार ना छूट जाए।
0: बिल्कुल
1: जी।
0: अगला मेल हमें भेजा है कवर कालोरी भड़वा से प्रवीण शिमाली ने, इनका भी पुराना और नया दोनों ले रही हूँ। 12 जून को राग रंग के अंतर्गत राग आसावरी के बारे में बहुत जानने को मिला, लाजवाब पेशकश के लिए गोखले दंपत्ति को बधाई दे रहे हैं। इसी दिन का सुनहरे पल में महान गायक एसपी बाल सुब्रमण्यम के बारे में जो विद्याधर मुले जी ने जो जानकारी दी थी वो इन्हें पसंद आई। इस बार के मेल में इन्होंने लिखा है
1: जी
0: कि 20 जून को चेतना के अंतर्गत स्वास्थ्य भेंटवार्ता महिलाओं का स्वास्थ्य समस्या फिजियोथेरेपी विषय पर डॉक्टर शिवानी सी से जो विद्याधर मुले जी की जो बातचीत थी वो पसंद आई। 23 जून को विविधा के अंतर्गत प्रदूषण का बढ़ता खतरा विषय पर वार्ताकार इरफान सिद्दीकी से सुनी वो इन्हें पसंद आई। 24 जून को एक ही फिल्म की श्रेणी में फिल्म एक दूसरे की कहानी व गीत इन्हें पसंद आए हैं।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके दोनों पत्र हमें मिले और जो छूट गया था उसे भी शामिल किया। जहाँ तक राग रंग की बात है, पिछले कार्यक्रम में भी उसका जिक्र हुआ था कि बहुत सारे लोगों को पसंद आया। और एसपी बालासुब्रमण्यम फिजियोथेरेपी विविधा एक दूजे के लिए, ये बिल्कुल अलग अलग किस्म के कार्यक्रम हैं। और आप हमारे पुराने श्रोता हैं और हमारे बहुत सारे श्रोता सभी किस्म के कार्यक्रम सुनते हैं और सराहते भी हैं। शुक्रिया
0: सर। अब शिकायत,
1: हाँ बिल्कुल,
0: ये भेजने वाले हैं जसवाड़ी रोड मेन माता चौक खंडवा से एनडी धानुक, सुशीला धानुक। ये लिखते हैं पत्रोत्तर सुनहरे पत्रोत्तर में हमने पहले 5 या 6 पत्र लिखे।
1: अच्छा।
0: आपने उन्हें शामिल नहीं किया, हम बहुत नाराज हैं आपसे क्योंकि आपने कार्यक्रम का नाम सुनहरे पत्र रखा है एवं आप ईमेल को पढ़ने लग जाते हैं। पहले हाथ से लिखे पत्रों को शामिल करें तो ठीक रहेगा। धानुक परिवार 1975 से रेडियो से जुड़ा है, नियमित श्रोता हूँ, आपके केंद्र से प्रसारित सारे कार्यक्रम रोज सुनते हैं, तो हमारा ये पत्र जरूर शामिल कीजिएगा
1: जी।
0: और आगे ये लिखते हैं एक ही फिल्म की स्टोरी में आगामी बुधवार को पुरानी फिल्म नील कमल की कहानी सुनवाने का कष्ट करें।
1: नील कमल जी जरूर बहुत मशहूर फिल्म रही है और राजकुमार साहब का अभिनय, जरूर हम उसकी कोशिश करेंगे। और जहाँ तक आपकी नाराजगी की बात है तो धानु परिवार से मैं कहता हूँ कि देखिए आपके अगर पत्र आए हैं और हमें नहीं मिले, हमने शामिल नहीं किए, तो ज़रूर नाराज़गी हो सकती है। लेकिन जैसे ही आपका कोई पोस्ट कार्ड हमारे पास पहुंचा है हमने उसे तुरंत शामिल किया। और जहां तक बात है कि आपका नाम पत्रोत्तर है लेकिन आप ईमेल पढ़ने लग जाते हैं, तो देखिए ये भी पत्र का एक ई तरीका है, है ना, आधुनिक तरीका है। और हमारा कार्यक्रम तो इस ईमेल के तरीके से शुरू होने के बहुत पहले से चल रहा है, आप जानते हैं, आपने कहा कि 1975 से आप हमारे कार्यक्रम सुनते आए हैं, तो भाई ढंग बदल गया है पत्र लिखने का, लेकिन कार्यक्रम वही है। आपने पोस्टकार्ड से हमें भेजा, हमने उसे जरूर शामिल किया है। अब आप, हो सकता है कि आपका ये मंतव्य हो कि इसके साथ हम ई नाम भी जोड़ दें, तो उसकी ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही। जरूरत है आपके पत्रों की, वो हमारे पास पहुंच रहे हैं। अगली बार भी आप पोस्टकार्ड पर लिखिए, जरूर शामिल होगा। शुक्रिया।
0: अगला मेल हमें भेजा है नफीसा लोखंडवाला ने, ये लिखती है 13 जून का विशेष कार्यक्रम में लक्ष्मी सेन जी द्वारा खुश रहने की कला पर प्रस्तुत की गई वार्ता अच्छी लगी। वार्ता से हमें सीख मिली कि हर हाल में खुश रहना चाहिए। इसी दिन चेतना कार्यक्रम में दीपमाला शिंदे जी का डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव से साक्षात्कार में लीवर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। 25 मई को दीपमाला जी का लोकल ट्रेन गाइड अंजलि शिंदे जी के जो बातचीत थी वो इन्हें पसंद आई। 13 जून को प्रशांत मालवी जी ने सुनहरे पल कार्यक्रम में चुनिंदा गीतों को कैसे रचा गया इस संदर्भ में शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 14 जून को प्रसारित सुनहरे पल कार्यक्रम को आरती जी शर्मा ने सुशांत सिंह राजपूत को समर्पित करते हुए कार्यक्रम प्रस्तुत किया, वो पसंद आया। 15 जून को विद्या सिंह चौहान ने बेहतरीन गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम प्रस्तुत किया, उनकी कही ये बात कि हम किसी की सोच नहीं बदल सकते बिल्कुल सही लगी। 18 जून को प्रसारित सुनहरे पत्र कार्यक्रम में चिन्मय दीक्षित जी और पराग गोखले जी ने अपनी बातचीत को बेहतरीन समा बांध दिया। 20 जून को मनीष शर्मा जी ने अपने अनोखे अंदाज में शायरी से सजाकर लाजवाब सुनहरे पल कार्यक्रम प्रस्तुत किया। आकाशवाणी खंडवा को इतने अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद दे रही हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें सच में हम धन्यवाद के पात्र हैं भी। खुद की बढ़ाई हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें बहुत अच्छे श्रोता मिले हैं जो इतना ध्यान से एक एक कार्यक्रम सुनते हैं और उसके बारे में हमें लिख के भी भेजते हैं। और हम ये कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि सब कार्यक्रम आपको पसंद आए हों, जो नापसंद आए हों, जैसे हमारे इससे पहले धानुक जी ने लिखा था कि भाई आपने पत्रोत्तर का नाम पत्र लिखा है, ईमेल शामिल करते हैं। अगर ऐसी कोई शिकायत हो तो वो भी जरूर लिख के भेजिएगा। बहरहाल आपने खुश रहने की कला की बात की, तो हमारे श्रोता हमारे कार्यक्रम सुनकर खुश रहते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत आनंद की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अगला मेल हमें भेजा है, अब सारे नए में ले रही हूँ, ये पुराने हो गए हमारे खत्म, अभी सप्ताह के जो आए हैं ये है, हमें भेजने वाले हैं छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी और इनके परिवार के सदस्यों ने भेजा है। ये लिखते हैं आपके मीति गीत कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति के लिए

0: जी, मनीष शर्मा, विद्याधर मुले जी, श्वेता सोनी जी को ये बधाई दे रहे हैं। आपके यहाँ के सभी कार्यक्रम शिक्षा और ज्ञानवर्धक लगते हैं।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा जो ध्येय वाक्य वही सूचना शिक्षा मनोरंजन है और उसको हम पूर्ण कर पा रहे हैं, इस बात का हमें गौरव भी है और आपको आनंद भी। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अगला मेल हमें भेजा है बबलीश पवार ने, ये भेजने वाले हैं बाड़मेर राजस्थान से। लिखते हैं, मैं आपके केंद्र का नियमित और निष्ठावान श्रोता हूँ। आकाशवाणी खंडवा के कार्यक्रम हमेशा से ज्ञानवर्धक और हमारा मनोरंजन करने वाले रहे हैं। इस ईमेल पत्र के माध्यम से आपका ध्यान एक विशेष विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम में केवल कुछ चुनिंदा श्रोताओं के फरमाइश बार बार शामिल की जा रही है। हम जैसे कई ऐसे श्रोता हैं जो बिना किसी शिकायत के लगातार ईमेल भेजते हैं, लेकिन हमारी फरमाइशों को कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जा रहा है। जो श्रोता शांत रहकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं, उनकी उपेक्षा होना निराशाजनक है। कृपया फरमाइशी ईमेल के चयन की प्रक्रिया पर ध्यान दें।
1: बबलीश पवार जी के साथ डैनी पवार नाम लिखा है?
0: नहीं
1: लिखा। दरअसल हमारे जो श्रोतागण हैं वो भी हमारे परिवार की तरह ही होते हैं और इतने वर्षों से कुछ नाम लगातार हमारे आंखों के सामने आते हैं तो बबलेश पवार जी के साथ डैनी पवार नाम अपने आप ही आ जाता है। आपकी जो शिकायत है वो वाजिब भी हो सकती है और शायद नहीं भी हो सकती, क्योंकि जैसे ही हमें प्राप्त होती है चीज़ें हम उसे शामिल कर लेते हैं। जहाँ तक ईमेल की बात है तो देखिए, होता यह है कि एक निश्चित समय में आप पुराने श्रोता हैं, मेरी इस बात को अलग अलग शब्दों में अलग अलग तरीके से बहुत सारे प्रस्तोताओं के मुंह से सुन चुके होंगे कि एक निश्चित समय में बहुत सारे मेल लेने की हम कोशिश करते हैं लेकिन छूट जाए। और जैसे अभी राखी जी ने ये किया, हमने तय किया था कि पिछले हफ्ते के मेल हम अगले हफ्ते ज़रूर शामिल करेंगे, लेकिन अगर वो हफ्ते उस हफ्ते की बात ऐसी हो जाए कि अब उसको दोहराया नहीं जा सकता तो इसलिए वो पत्र छूट जाते हैं, मेल छूट जाते हैं। इसलिए इसको दिल पे ना लीजिए, आप हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं, आपके पूरे परिवार को हम नाम से जानते हैं, कभी मिले तो नहीं है, इसलिए आप हमारे दिल के बहुत करीब हैं। आप कार्यक्रम सुनते रहिए, इसी तरह कार्यक्रम में आप शामिल होंगे जरूर।
0: अगला मेल हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडे और संजय मार्कंडे ने। ये लिखते हैं, सोमवार का गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता थी दीपमाला शिंदे। इन्होंने बहुत अच्छा जलवायु बारिश की बादलों पर लाभान्वित जानकारी दी व बारिश की गीत सुनवाए, वो इन्हें पसंद आए। और आगे लिख रहे हैं, फिल्म धर्मात्मा की स्टोरी और गीत पसंद आए हैं। इसी तारतम्य आरती शर्मा, श्वेता जी, युववाणी की पलक जी, ममता जी की गुणवत्ता में पेशकश रही। बीते सप्ताह एक शिकायत, उमंग कार्यक्रम का समय क्यों बदल गया है, सुबह ही यह कार्यक्रम ठीक था।
1: जी ममता जी, पलक जी और मनीष जी की तरफ से पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे दूं कि उनके काम को आपने सराहा, बहुत खुशी हुई होगी उन्हें भी। और जहाँ तक उमंग की बात है, NCERT द्वारा जो प्रायोजित कार्यक्रम है, देखिए कुछ निर्णय शासकीय होते हैं और वो हमें प्राप्त होते हैं तो वो तो नीतिगत निर्णय है, उस पर हमें कुछ हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब चूंकि जैसे आपको पसंद ये परिवर्तन नहीं आया तो संभव है कि कुछ लोगों को अच्छा लगा होगा, लेकिन ये निर्णय शासकीय है, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, इसी आधार पर ये परिवर्तन हुआ है।
0: अगला मेल हमें भेजा है हनुमान शिंदे, ऋषिकेश शिंदे ने, ग्राम सेटे, जिला सांगली से। ये लिखते हैं, 20 तारीख को प्रसारित स्वास्थ्य विषय प्रोग्राम चेतना उपयुक्त लगा। इसमें महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्या और फिजियोथेरेपी इस विषय पर डॉक्टर ने जो जानकारी दी थी वो उपयुक्त लगी और फिजियोथेरेपी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डॉक्टर शिवानी सिंह कुशवाहा ने जो जानकारी दी वो इन्हें पसंद आई है।
1: जी डॉक्टर शिवानी सिंह कुशवाहा जी बहुत अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ये तो उनकी बातचीत से जाहिर हुआ ही, लेकिन सिर्फ एक डॉक्टर की बात न करके मैं फिजियोथेरेपी पर अगर बात करूँ तो ये एक बहुत निग्लेक्टेड एक स्ट्रेन है कि आमतौर पर हम जब ठीक हो जाते हैं तो पूरी तरह ठीक होने में जो फिजियोथेरेपी मदद करती है उसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और उसके बाद हड्डी और मांसपेशी से जुड़ी हुई चोट को लेकर हम जीवन भर चलते हैं। तो ये पत्रों में मैंने फिजियोथेरेपी की बात दो पंक्तियां इसलिए भी कर दी कि व्यक्तिगत रूप से मैं फिजियोथेरेपी के बारे में ये जानता हूँ कि वो एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है और उसको डॉक्टर शिवानी ने उठाया था, आपको पसंद आया। और भी बहुत से पत्र हैं, बहुत अच्छी बात है।
0: अगला मेल हमें भेजा है डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, निशा परवीन और आसमान अंसारी ने।
1: जी
0: ये लिखते हैं, 18 जून को प्रसारित सुनहरे पत्र, चिन्मय दीक्षित जी व पराग गोखले जी के

0: सुना अच्छा लगा। इस दिन पराग जी ने मेरा पूरा ईमेल पढ़ा पर मेरा नाम प्रेषक के तौर पर नहीं पढ़ा, ऐसा क्यों? आप बता सकते हैं इस दिन पराग जी द्वारा प्रस्तुत आपकी पसंद कार्यक्रम सुना वो भी नहीं पसंद आया। 18 जून को कृषि चर्चा में प्रसारित जो हमने कृषि चर्चा प्रसारित की थी उसमें सहजन की खेती पर जो जानकारी दी गई थी वो इन्हें पसंद आई है। आगे लिख रहे 17 जून को आपके मीठे गीत कार्यक्रम सुनकर दिल खुश हो गया। 22 जून का दीपमाले जी द्वारा आपके मीठे गीत कार्यक्रम। 17 जून को एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्म धर्मात्मा की कहानी व गीत पसंद आए हैं
1: जी। आपने जिन कार्यक्रमों की बात की है, जिन प्रस्तोताओं की बात की है, उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक पराग जी की बात है कि पूरा उन्होंने आपका मेल पढ़ दिया और आपका नाम उन्होंने छोड़ दिया। देखिए मनुष्य है और वो कुशल प्रस्तोता है तो कभी भूल संभव है, आपसे भी होती है, मुझसे भी होती है, उनसे भी होती है, तो इसे एक मानवीय भूल मानकर इसे छोड़ दीजिए।
0: बिल्कुल। अगला मेल भेजा है दिल्ली से डॉक्टर सोनम और सना और अदीबा ने, ये लिखते हैं जो चिदमय जी और पराग गोखले जी ने सुनहरे पत्र प्रस्तुत किया था वो इन्हें पसंद आया है। हाँ, हम पत्र मेल बहुत लगन के साथ लिखते हैं इसलिए इन्हें प्रोग्राम में जरूर शामिल किया करें। 19 और 22 जून को प्रसारित आपके मीत ये गीत कार्यक्रम इन्हें पसंद आया। एक ही फिल्म में फिल्म धर्मात्मा की कहानी व गीत इन्हें पसंद आए, इसके लिए मनीष शर्मा को बधाई दे रहे हैं।
1: जी चिन्मय जी और मनीष जी की तरफ से मैं आपको शुक्रिया कहता हूँ। और जितनी ही मेहनत और लगन से आप पत्र लिखते हैं और उतनी ही मेहनत और लगन से और इंतज़ार से हम बैठे रहते हैं कि कब आपका मेल और पत्र आए और हम कार्यक्रम में शामिल करें, तो ये प्रेम दोनों तरफ से है। जी
0: सही। अगला मेल हमें भेजा है बिहार से हैं वसीम अकरम, अजीम वकार और कुरिया खातून ने, ये लिखते हैं सुनहरे पत्र कार्यक्रम को हम नियमित रूप से सुनते हैं, ये हमारा पसंदीदा कार्यक्रम है। 18 जून को यह कार्यक्रम चिन्मय जी और पराग गोखले जी ने प्रस्तुत किया था, ये इन्हें पसंद आया। 19, 22, 23 जून को प्रसारित कार्यक्रम आपके मीते गीत इन्हें पसंद आया है। 18 जून को प्रसारित निमाड़ी लोकगीत भी इन्हें पसंद आया है।
1: चलिए बहुत खुशी की बात है कि आपने निमाड़ी लोकगीतों के बारे में हमारे किसी श्रोता ने लिखा है। दरअसल फिल्म संगीत तो सर्वप्रिय विधा है
0: जी,
1: लेकिन लोक संगीत की भी सुध हमारे श्रोता लेते हैं, बहुत खुशी की बात है, धन्यवाद।
0: अगला मेल हमें भेजा है बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी राज और फातिमा अंसारी ने, ये लिखते हैं वही फिल्म धर्मात्मा की कहानी व गीत इन्हें पसंद आए, इसके लिए मनीष शर्मा जी को बधाई दे रहे हैं। 23 जून को प्रसारित आपके मीत ये गीत कार्यक्रम इन्हें पसंद आया, इसके लिए ये पराग जी को बधाई दे रहे हैं। 18 जून का सुनहरे पत्र कार्यक्रम भी इन्होंने पसंद किया है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम को सुनने और पसंद करने के लिए, धन्यवाद।
0: अगला मेल हमें भेजा है दिल्ली से डब्ल्यू अंसारी और बेबी अंसारी ने, ये लिखते हैं 18 जून का कार्यक्रम सुनहरे पत्र हमें पसंद आया है, इसी दिन का आपकी पसंद कार्यक्रम भी इन्होंने पसंद किया है। 17 जून को प्रसारित एक ही फिल्म में फिल्म धर्मात्मा की कहानी व गीत पसंद आए हैं। 14 जून को चंदन दास के गायी सुगम संगीत की रचनाएं सुनकर दिल खुश हो गया।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारे कार्यक्रमों के बारे में लिखा है, एक तरह से हमारी मेहनत सफल हुई आपकी ये चिट्ठी पाकर, इसी तरह लिखते रहिएगा, धन्यवाद।
0: अगला मेल हमें भेजा है दिल्ली से रेशमा अंसारी, जमीला, शकीला, प्रमीला और मोहम्मद सईद अंसारी ने, ये लिख रहे हैं 18 जून को प्रसारित सुनहरे पत्र कार्यक्रम, उसके बाद 18 जून को आपकी पसंद कार्यक्रम जिसे पराग जी ने प्रस्तुत किया था, 22 जून को दीपमाला जी द्वारा पेश आपके मीती गीत कार्यक्रम पसंद आया, इस बार फिल्म इज्जत को लेकर आना, जीवन लता खेड़े व साथियों की आवाज़ में निमाड़ी लोकगीत भी इन्होंने पसंद किए हैं।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया, बात इज्जत की है, हमने कर ली है, जरूर कोशिश करेंगे।
0: जी अगला मेल हमें भेजा है छत्तीसगढ़ से प्रभा रानी खिंजीर, अंजलि, दयाशंकर, आशा देवी खिंजीर ने, ये लिखते हैं 19 और 22 जून को प्रसारित कार्यक्रम आपके मीते गीत पसंद आया है, इसके लिए नीलम त्रिपाठी और दीपमाला जी को बधाई दे रहे हैं। एक ही फिल्म से में फिल्म एक दूसरे के लिए फिल्म की कहानी व गीत इन्होंने पसंद किया है और इस तरह आज मेरी फरमाइश की फिल्म चली, शुक्रिया। रेडियो खंडवा का जो हम श्रोताओं का इतना ख्याल रखता है, मोबाइल ऐप पर आपका कार्यक्रम झकास और बिंदास सुनाई देता है, आजकल विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष वार्ता अच्छी लगी, इस भेंट वार्ता के लिए सरोज सिंह का ये धन्यवाद दे रहे हैं।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी धन्यवाद कि आपको जो आपने विशेषण लगाए हैं
0: जी
1: उसके लिए शुक्रिया, इसी तरह सुनते रहे।
0: अगला मेल हमें भेजा है दिल्ली से लाल बाबू दीवाना उमाराज और दिव्या भारती ने, ये लिख रहे हैं सुनहरे पत्र कार्यक्रम हम नियमित

0: रूप से सुनते हैं अच्छा लगता है। इस कार्यक्रम की जितनी तारीफ की जाए कम होगी, आपके कार्यक्रम लुभावने व दिलकश होते हैं। 18 जून का सुनहरे पत्र कार्यक्रम और इसी दिन का आपकी पसंद कार्यक्रम दिल को छू गया, 19, 22, 23 जून को प्रसारित आपके मीठे गीत कार्यक्रम इन्होंने पसंद किया है
1: जी। लाल बाबू दीवाना जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत सारे कार्यक्रम उन्होंने सुने हैं और उसके बारे में हमें लिखा है। बहुत पुराने श्रोता हैं आप, इसी तरह सुनते रहें, शुक्रिया
0: जी। अगला मेल हमें भेजा है छत्तीसगढ़ से नरेंद्र डोम, निशा और टुकटुक ने
1: जी।
0: ये लिखते हैं 18 जून का सुनहरे पत्र कार्यक्रम, 23 जून को पराग गोखले जी द्वारा जो आपके मीते गीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया था वो पसंद आया है, 17 जून को एक ही फिल्म में फिल्म धर्मात्मा की कहानी व गीत इन्हें पसंद आए हैं
1: जी। धर्मात्मा फिल्म को पसंद करने वाले हमारे बहुत से श्रोता हैं और वो फेहरिस्त बढ़ती जा रही है तो मनीष जी को हम पुनः शुक्रिया कहते हैं आपकी तरफ से जी।
0: अगला मेल हमें भेजा है लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोइन छोटू पवार और मोहम्मद हसनैन पवार ने, ये लिखते हैं सुनहरे पत्र कार्यक्रम के हर दिल अजीज मेजबानों को हमारा पुरखुलूस आदाब, प्रशंसा लिख रहे हैं आगे
1: जी।
0: गुरुवार सुनहरे पत्र कार्यक्रम में चिन्मय दीक्षित और पराग गोखले जी ने श्रोताओं के पत्रों और ईमेल के जवाब बेहद सटीक, सदी और लाजवाब अंदाज में दिए, दोनों आदरणीय को हमारा साधुवाद। गुरुवार का आपकी पसंद कार्यक्रम के लिए पराग गोखले जी को बधाई दे रहे हैं। शनिवार को सुनहरे पल और आपके मीते गीत कार्यक्रम यादगार रहा। रविवार को फोन करे गीत सुने कार्यक्रम को भी इन्होंने पसंद किया है
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपको भी साधुवाद। और दरअसल क्या है, आप हमारे बड़े पुराने श्रोता हैं आप लोग, और आपकी ये जो तारीफ मिल जाती है या फिर एक पावती मिल जाती है कि हाँ आपने जो किया वो हमें अच्छा लगा, तो ये बहुत खुशी की बात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया।
0: अगला मेल हमें भेजा है कलनगंज खंडवा से कौसर भी पवार, हसीना भी पवार, हीना सईद और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने, इन्होंने लिखा है फिल्म एक तुझे की कहानी व गीत इन्होंने पसंद किए हैं
1: जी।
0: और आगे लिखते हैं प्रशांत मालवी जी को इसके लिए बधाई दे रहे हैं। रविवार फोन करें गीत सुने कार्यक्रम को की यादगार और लाजवाब पेशकश के लिए पराग गोखले जी को बधाई दे रहे हैं। सोमवार गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम बहुत पसंद आया, इसी दिन का आपके मीते गीत कार्यक्रम की पेशकश लाजवाब रही, दीपमाला जी को बधाई दे रहे हैं। सप्ताह भर के आपके मीते गीत कार्यक्रम राग रंग सुगम संगीत, युवाणी, हेलो फ्रेंड्स और किसान वाणी कार्यक्रम सभी इन्हें पसंद आते हैं।
1: वाह, बहुत सारे कार्यक्रमों के बारे में लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अगला मेल हमें भेजा है खंडवा से हस्सू बाबा, मोइन छोटू, मोहम्मद फाजिल और इनके परिवार के सदस्यों ने, ये लिखते हैं पिछले सप्ताह गुरुवार सुनहरे पत्र कार्यक्रम में श्रोताओं के पत्र और ईमेल के जरिए प्राप्त सुझाव, शिकायत और प्रशंसा को बड़े ही निराले अंदाज में जवाब दिए गए, इसके लिए ये प्रस्तुतकर्ताओं को बधाई दे रहे हैं। इसी दिन का आपकी पसंद कार्यक्रम दिलो दिमाग पर छा गया, रविवार का फोन करें गीत सुने कार्यक्रम बेहद यादगार और लाजवाब रहा, दोनों प्रस्तुतकर्ताओं को ये इसके लिए बधाई दे रहे हैं। हमें आकाशवाणी खंडवा के कार्यक्रम सुनहरे पल, गुड मॉर्निंग खंडवा, आपकी पसंद, नारी जगत, बाल जगत, युववाणी, हेलो फ्रेंड्स, किसानवाणी आदि सभी कार्यक्रम रोचक लगते हैं। आगे ये एक सुझाव दे रहे हैं, एक ही फिल्म से कार्यक्रम में सलमान खान, शाहरुख खान और काजोल अभिनीत फिल्म करण अर्जुन के गीत और कहानी सुनवाने का कष्ट करें।
1: मेरे ख्याल से ये फिल्म हम पहले प्रसारित कर चुके हैं
0: जी,
1: तो कोई और फरमाइश करें तो कोई नई फिल्म आ जाएगी आपकी फरमाइश पर। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारे कार्यक्रमों की तारीफ हम तक भेजी है, धन्यवाद।
0: अगला मेला में भेजा है पालदाना का इंदौर से हसीना बी मंसूरी और अमीना बी मंसूरी ने, ये लिखते हैं 18 जून को सुनहरे पत्र कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा, चिन्मय जी और पराग जी को बधाई दे रहे। 15 जून को सुबह आपके यहाँ से निमाड़ी लोकगीत सुने, बहुत ही अच्छे लगे, फिर इसके बाद आपके मीते गीत सुना, इसमें साजन फिल्म के गीत से शुरुआत की गई, फिर उसके बाद सारे गीत एक से बढ़कर एक थे और इन खूबसूरत गीतों की बयान में हम इस तरह बहते चले गए कि समय का पता ही नहीं चला। शानदार व आकर्षक प्रस्तुति के लिए विद्या सिंह चौहान जी को ये बधाई दे रहे हैं।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको कार्यक्रम पसंद आया। और कई बार होता है ऐसा कि जब हमारी पसंद का पहला गाना ही हमारी पसंद का हो तो हम कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं, और बाज दवा ऐसा भी देखा गया है कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, ताला हाथ में है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये गाना पूरा सुन ले उसके बाद दरवाजा बंद करेंगे।
0: अगला मेल हमें भेजा है शेगांव महाराज से मोहम्मद अनीस मोहन, मोहम्मद दानिश मोहन, मोहम्मद जुनेद बुहाल ने, ये लिखते हैं गुरुवार सुनहरे पत्र कार्यक्रम में श्रोताओं के ईमेल और पत्र शामिल किए गए, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं को ये बधाई दे रहे हैं और इसी दिन का आपकी पसंद कार्यक्रम भी इन्होंने पसंद किया है। शुक्रवार का राग रंग आपके मीते गीत कार्यक्रम इन्हें पसंद आया, शनिवार सुगम संगीत में सुरीले गीतों ने

0: समा पांडिया रविवार का फोन करे गीत सुने कार्यक्रम पसंद किया है। सोमवार का गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम को भी इन्होंने पसंद किया है। एक ही फिल्म कार्यक्रम में फिल्म एक दूजे के लिए की कहानी और गीत इन्होंने पसंद किया है।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी फिल्मों के बारे में कार्यक्रमों के बारे में लिखा है और अंत एक फिल्म की बात भी हुई है
0: जी।
1: तो शुक्रिया। इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनिए और हम चाहेंगे कि हर सुनहरे पत्र में आप श्रोताओं का पत्र शामिल हो।
0: अगला मेल हमें भेजा जामली कला खंडवा से मणक चंद राठौर, पुष्पाबाई राठौर, छेगांव देवी खंडवा से अशोक वागे और वंदना वागे ने। ये लिखते हैं पिछले गुरुवार का सुनारे पत्र कार्यक्रम इन्हें पसंद आया है। इसी दिन का आपकी पसंद कार्यक्रम भी इन्होंने पसंद किया है। इसके लिए पराग गोखले जी को बधाई दे रहे हैं। फोन करें गीत सुने कार्यक्रम की पेशकश यादगार रही इसके लिए बधाई। सोमवार को गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम की लाजवाब पेशकश के लिए बधाई दे रहे हैं। एक ही फिल्म में एक दूजे के लिए कहानी और गीत इन्होंने पसंद किए हैं इसके लिए प्रशांत जी को बधाई दे रहे हैं। शुक्रवार शनिवार का आपके मीत ही गीत कार्यक्रम इन्होंने पसंद किया है।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत जी की तरफ से भी आपको शुक्रिया हम कहते हैं। और गुड मॉर्निंग खंडवा की भी बात आई है
0: जी।
1: गुड मॉर्निंग खंडवा एक ऐसा कार्यक्रम है जो आकाशवाणी खंडवा के श्रोताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आता है और जितना आधे घंटे में आप उसे सुनते हैं उसको तैयार करने में लगभग पूरा हफ्ता ही श्रोता का दिमाग उसमें लगा रहता है। तो उसके लिए आपकी जब तारीफ आती है तो लगता है कि सच में मेहनत सफल हुई है। शुक्रिया।
0: अगला मेल हमें भेजा है गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी ने। ये लिखते हैं हम खंडवा के सभी कार्यक्रम सुनते हैं, खासकर निमाड़ी लोकगीत बेहद पसंद आते। 14 जून को रामकृष्ण यादव और साथियों से निमाड़ी लोकगीत जो प्रस्तुत किए थे वो पसंद आए। आपके मीठी गीत कार्यक्रम में हमारे मेल शामिल क्यों नहीं किए जाते, कृपया शामिल करें। 24 जून को प्रशांत मालवी जी ने और 23 जून को मनीष शर्मा जी ने आपके मीठी गीत कार्यक्रम जो प्रस्तुत किया था वो इन्हें पसंद आया। हमारे मेल शामिल क्यों नहीं होते, क्योंकि हम तो सही समय पर भेजते हैं। आगे लिख रहे हैं 21 जून को योग दिवस पर जबलपुर में आयोजित योग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। और
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आपके मेल क्यों नहीं शामिल होते ये बात तो ठीक नहीं है, क्योंकि जो मेल शामिल नहीं होते इस हफ्ते उसे तो हम अगले हफ्ते भी शामिल कर लेते हैं।
0: आज ही किया है,
1: इसीलिए कोई मेल छूटता नहीं है। देखिए आपका ये मेल मिला और हमने उसे शामिल किया। आपका मेल हमारे पास आ जाए तो फिर कार्यक्रम में उससे मेल हो ही जाता है।
0: जी बिल्कुल। अगला मेल हमें भेजा है कंडला बंदरगाह कच्छ से जगदीशोरी पूजा और पायल ने। ये लिखते हैं हम आकाशवाणी खंडवा के सभी कार्यक्रम सुनते हैं, पसंद आते हैं। 24 जून को रामकृष्ण यादव से जो निमाड़ी लोकगीत आपने प्रस्तुत किए थे वो इन्हें पसंद आए। हमें प्रभाकर जी से झालरिया लोकगीत सुनाए वो भी इन्होंने पसंद किया है। साक्षरता पर था जरूर सुनवाए। 21 जून का योग दिवस पर जो कार्यक्रम हमने प्रस्तुत किया था वो भी इन्होंने पसंद किया है।
1: जी आपने लोकगीतों की बात की और ये लोकगीतों से जुड़ी हुई शायद चौथी बात है हमारे पत्रों में। और आपने प्रभाकर दुबे जी का जो गम्मत और झालरिया की बात की है हमने इससे पहले भी सुनवाया था और आपको पसंद आता है तो उसे आगे भी जरूर सुनवाएंगे, क्योंकि वो पूरा 13 मिनट का है तो इसलिए कभी कभार ही मौका बनता है। लेकिन बात को हम ध्यान में रखेंगे, जरूर सुनवाएंगे।
0: अगला मेल भेजा है हमें जसवाड़ी से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश श्याम, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और इनके परिवार के सदस्यों ने। ये लिखते हैं 24 जून बुधवार का एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्म एक दूसरे के लिए फिल्म की स्टोरी व गीत इन्होंने पसंद किया है। इसके लिए प्रशांत मालवी जी को धन्यवाद दे रहे हैं।
1: जी प्रशांत जी की तरफ से हम भी आपको धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया।
0: अगला मेल हमें भेजा है सुदर्शन शाह और पल्लवी शाह ने नेपानगर से। ये लिखते हैं पिछले सप्ताह का सुनहरे पत्र कार्यक्रम सुना, प्रस्तुति सहयोगरा पराग गोखले और चिन्मय दीक्षित का बड़ी ही सहजता के साथ अपनी मधुर वाणी में श्रोता साथियों के ईमेल पत्रों को पढ़ा गया। उन सभी का जवाब भी बहुत अच्छे से दिया गया। 19 तारीख को प्रातः 10 बजे विश्व सिकल सेल दिवस पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में आयोजित राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट सुनी। समारोह में देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिनकी गरिमामय उपस्थिति में सिकल सेल जागरूकता पर उनका संबोधन सुना। समारोह का सीधा प्रसारण रेडियो के माध्यम से सफलतापूर्वक किया गया। ओंकारेश्वर महादेव का आशीर्वाद सदैव सभी पर बरसता रहे और टीवी के बजाय रेडियो पर प्रसारण सुनना वो बहुत अच्छा लगा हमें।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का जिक्र किया है और कोई भी बीमारी

0: जो मनुष्यता के लिए घातक होती ही है, लेकिन ये बीमारी ऐसी है जो रक्त के साथ जुड़ी होती है और व्यक्ति को पता ही नहीं होता, और ये अनुवांशिक है। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ों की तरफ अगर देश के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति इतना चिंतित है और उसके बारे में चिंता जाहिर करता है, पूरे देश भर घूम के उसके बारे में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, तो जाहिर है जन जागरूकता फैलती है। और यही काम, जागरूकता फैलाने का काम आकाशवाणी के माध्यम से भी हुआ, और आपने उस कार्यक्रम को सुना, पसंद किया, और आपका कहना है कि टीवी के बजाय आपको रेडियो से उस बारे में सुनना अच्छा लगा,
1: ज़्यादा अच्छा लगा,
0: ये बात हमें और ज़्यादा अच्छी लगी। शुक्रिया।
1: अगला मेल हमें भेजा है सुहाना चौक जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकचे, साक्षी ऋतुराज और पूर्णिमा पटेल ने। ये लिखते हैं, वही सिकल सेल कार्यक्रम पर आयोजित रेडियो रिपोर्ट सुनी, वो इन्हें पसंद आई है। 24 जून का एक ही फिल्म से कार्यक्रम इन्होंने पसंद किया है। आगे लिख रहे, एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्म काला पत्थर की स्टोरी व गीत सुनवाने की कृपा करें।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम पसंद करने के लिए। और हमने वैसे काला पत्थर पर एक बार बात हो चुकी है, लेकिन काफ़ी पहले की बात है, इसलिए हम उसको शामिल कर लेते हैं। तो आज देखिए, मैंने नोट कर लिया है, नील कमल, इज्जत और काला पत्थर,
1: बिल्कुल मैं देख रही हूँ आप नोट करते जा रहे हैं। अगला मेल हमें भेजा है रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना परमानी। ये लिखते हैं, हमें आपके केंद्र के सारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। 24 जून बुधवार का कार्यक्रम आस्था के स्वर सुना बहुत अच्छा लगा। इसी दिन का श्री रामचरितमानस गान का पार्टी बहुत कर्णप्रिय लगा। आकाशवाणी खंडवा का जो प्रोमो है, मंगल भवन अमंगल हारे, बहुत अच्छा लगता है। भगवान श्री राम की कथा मंगल को कराने वाली, अमंगलों को हराने वाली है, ये इन्होंने पसंद किया है।
0: जी, ये दूरदर्शन के कार्यक्रम का प्रमोशनल ऑडियो है, यानी एक विज्ञापन है एक तरह से कह सकते हैं। और चूंकि आपकी बातों से जाहिर है कि आप बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम हमारे यहाँ से होते भी हैं, और आपने जिक्र भी किया है सुबह आस्था के स्वर से। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बात हम तक पहुँचाने के लिए।
1: अगला मेल भेजा है सनावत से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। ये लिखते हैं, 19 जून को ओंकारेश्वर में राष्ट्रपति जी ने अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर अपने विचार व्यक्त किए। सिकल सेल होता क्या है, इसकी पूर्ण जानकारी हमें मिली, इतनी अच्छी जानकारी के लिए धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस, योग दिवस पर भी आयोजित कार्यक्रम को हमने सुना। एक ही फिल्म में फिल्म एक दूसरे के लिए फिल्म की स्टोरी व गीत हमें पसंद आए, इसके लिए प्रशांत मालवीय जी को ये बधाई दे रहे हैं।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमने हमें पत्र लिखा आपने और सिकल सेल की बात की। दरअसल हमारे जो संस्थान का उद्देश्य है सूचना शिक्षा मनोरंजन, और उसमें ये जो सूचना और शिक्षा की बात थी, इसके तहत हमारा ये जो कार्यक्रम था सिकल सेल के बारे में। और मैं चाहूँगा कि दो पंक्तियों में इस बीमारी के बारे में, और अगर जो कोई नहीं जानता है कि जो हमारी रक्त कणिकाएं होती हैं वो गोलाकार होती हैं, इसलिए बहुत सहजता से हमारे धमनियों में बहता है रक्त, लेकिन अगर वो गोलाकार ना होकर चांद के आकार पर, हसिए के आकार का हो जाए, सिकल के आकार का हो जाए, तो वो आसानी से बहेगा नहीं, इसीलिए सारी दिक्कतें पैदा होती हैं। और ये बीमारी आनुवंशिक है, जैसे हम शादी से पहले कुंडली मिलाते हैं ना, उसी तरह ये अगर आपकी जो ब्लड रिपोर्ट है उसका मिलान हो जाए और दो सिकल सेल के जो मरीज हैं वो आपस में विवाह ना करें, तो ये आनुवांशिक होने का ये जो चेन है ये टूट जाएगी। और इसीलिए ये सारा उपक्रम है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश है, इसी तहत हमने भी इस कार्यक्रम के दो पल चुरा कर बात कर ली। चलिए अगला
1: मेल भेजा है सनावत से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज और इनके परिवार के सदस्यों ने। ये लिखते हैं, शनिवार को विशेष वार्ता में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण वार्ताकार अब्बास अली निमाड़वाला और साथ ही चेतना कार्यक्रम में डॉक्टर शिवानी से कुशवाहा से विद्याधर मूले जी की जो बातचीत थी, महिलाओं के स्वास्थ्य समस्या और फिजियोथेरेपी, ये इन्हें पसंद आई है। आगे लिखते हैं, विशेष कार्यक्रम में पंधाना क्षेत्र के थाना प्रभारी दिलीप देवड़ा जी से दीपमाला शिंदे की जो बातचीत थी, साइबर क्राइम, इंटरनेट पर होने वाले अपराध जैसे मामले के बारे में जानकारी दी, वो इन्होंने पसंद की है।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक आधुनिक चिंता है,
1: बिल्कुल,
0: और सभी लोग इससे पीड़ित हो सकते हैं, तो इसी तहत हमने इसे प्रस्तुत किया था। हाँ। आपने सराहा, शुक्रिया।
1: अगला मेल हमें भेजा है सनाव से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े और इनके परिवार के सदस्यों ने। ये लिखते हैं, ये मैं पढ़ चुकी हूँ, ये डबल आ गया है
0: जी सर,
1: है ना। अगला मेल हमें भेजा है प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी और तनुजा जोशी ने। ये लिखते हैं, चेतना कार्यक्रम में डॉक्टर शालिनी कुशवाहा से वरिष्ठ उद्घोषक मूले जी की महिलाओं के रोग एवं उनकी रोकथाम संबंधी जो बातचीत थी वो इन्होंने पसंद किया। इसी दिन आपके मीटिंग

0: गीत कार्यक्रम और मनीष शर्मा जी द्वारा बेहतरीन गीत सुनवाए गए सोमवार 22 जून को दीपमाला शिंदे जी द्वारा गुड मॉर्निंग खंडवा जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था वो इन्होंने पसंद किया है
1: जी।
0: और 24 जून को एक ही फिल्म में फिल्म एक दूसरे के लिए फिल्म की कहानी व गीत इन्होंने पसंद किए, इसके लिए प्रशांत मालवीय जी को ये बधाई दे रहे हैं
1: जी। सभी प्रस्तुताओं की तरफ से मैं भी आपको धन्यवाद कहता हूँ, आपने उनकी मेहनत को सफल बना दिया है।
0: अगला मेल हमें भेजा है रतनपुर से जितेंद्र सिंह गौड़, नरेंद्र सिंह गौड़, सचिन पलक, अंतिम श्रुति यशराज और इनके परिवार के सदस्यों ने ये लिखते हैं, इस हफ्ते के कार्यक्रम सुन नहीं सका किसी कारण से, इस हफ्ते बुधवार को एक ही फिल्म में एक दूजे के लिए एक ही स्टोरी व गाने बहुत ही पसंद आए और आपके मीठे गीत भी बेहतरीन गाने प्रशांत मालवीय जी सर ने सुनवाए वो इन्होंने पसंद किया सर, एक ही कार्यक्रम के बारे में इन्होंने लिखा है
1: जी। और उन्होंने जाहिर भी कर दिया कि
0: सुन
1: किसी
0: नहीं
1: सुन नहीं पाए
0: जी।
1: तो ये अफसोस हमारे साथ अक्सर होता है जब हम किसी खास केंद्र के कार्यक्रम लगातार सुनते हैं और कहीं बाहर जाने के कारण व्यस्तता के कारण सुन नहीं पाते तो अफसोस होता है, हम परिचित हैं इस अफसोस से। शुक्रिया।
0: अगला मेल हमें भेजा है नजमुल हौदा से एसएम जावेद और शगुफ्ता अंजुम ने, ये लिखते हैं 23 जून से बरसात यानी बारिश की शुरुआत हो चुकी, गर्मी से राहत है फिर भी अपना व दूसरों का ख्याल रखें, 24 जून का अपना आपका पसंदीदा फरमाइशी कार्यक्रम सुना आपके मीठे गीत कार्यक्रम जो प्रस्तुत किया था प्रशांत मालवीय जी ने। आगे लिखते हैं फिल्म बाजार निकाह और स्वीकार किया मैंने का गीत बहुत ही सुंदर चयन मतलब लगा इन्हें प्रस्तुति पसंद आई है, मेरी छोटी सी शिकायत है कि मेरे मेल इस कार्यक्रम में एक माह से शामिल नहीं किए जा रहे जबकि सुबह कार्यक्रम मैं बिल्कुल सुनता हूँ
1: जी। देखिए आपने शिकायत की और हमने शिकायत दूर कर दी। शुक्रिया शुक्रिया जी।
0: अगला मेल हमें भेजा है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अलकमस खत्री, मोहम्मद अलकमा खत्री और इनके परिवार के सदस्यों ने ये लिखते हैं, 19 जून का सुनहरे पत्र कार्यक्रम सुना वो इन्हें पसंद आया है, 19 और 20 जून का आपके मीठे गीत कार्यक्रम इन्होंने पसंद किया, 21 और 22 जून का आपके मीठे गीत कार्यक्रम, 23 और 24 जून का आपके मीठे गीत कार्यक्रम भी इन्होंने पसंद किया है और एक ही फिल्म में फिल्म की कहानी इन्होंने पसंद की
1: जी। बहुत बहुत शुक्रिया खत्री परिवार को कि आपने लिखा है और हम तक आपने अपनी बात पहुंचाई है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये आखिरी मेल है क्योंकि कार्यक्रम का वक्त अब बिल्कुल खत्म होने
0: को है। बिल्कुल आखिरी है, मेल भी हमारा ये आखिरी और मैं फटाफट पढ़ रही हूँ इसको, हमें भेजने वाले हैं ओंकारेश्वर से राकेश पप्पू सेन, इन्हें इस सप्ताह का गुड मॉर्निंग खंडवा और पूरे सप्ताह का भर का आपके मीठे गीत कार्यक्रम इन्होंने पसंद किया है
1: जी। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश पप्पू सेन जी और उनके साथियों को, और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करना होगा क्योंकि कार्यक्रम में बस वक्त इतना है कि आपको कहें नमस्कार।
0: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे सुनहरे पत्र कार्यक्रम, हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं, समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से
2: के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की, टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया, देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है, उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा, 26 व्यापार पास जारी किए गए, अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी, और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज शाम मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक

0: में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ

0: इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और दो श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
1: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे तक पहुँचने के लिए नाभिडांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी की गई है।
2: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेके पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP, आर्मी, व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभिडांग के समीप भी एक पड़ाव चयनित किया गया है।
1: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी, नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9

0: નથી. अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी. एक रिपोर्ट.
1: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है. हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा. इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की. इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए. समाचार कक्ष से शक्ति सिंह.
0: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह.
2: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा. ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है. दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है. मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा. श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे. भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे. अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है. मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया. वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया. इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है. एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया. इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है.
0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है. बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है. और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल.
3: धन्यवाद प्रियंका. भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है. अमर उजाला ने लिखा है टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग. शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है अमरीकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति. देश बंधु की खबर है कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार. दैनिक जागरण ने लिखा है क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना. राजस्थान पत्रिका ने लिखा है अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल. पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई. भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को $1,15,00,000 चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है. अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा. अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया.
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की. टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया. देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है. उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा. वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त और आईसी

0: टी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:15 हुए हैं। लीजिए आप सुनिए सुगम संगीत। श्रोताओं, सुगम संगीत में आज की हमारी कलाकार हैं सलमा आगा।

0: अरे पिंकी के पापा, आप इतनी देर से मोबाइल पर क्या सुन रहे हैं?
1: अरे सुषमा, मैं सुन रहा हूँ निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
2: ये सिलसिला है प्यार का, ये चलता रहेगा।

0: तरंगों से जुड़ा है ये मोहब्बत का एहसास, उफ की दूर होने नहीं देता।
1: आप हमारी जान बन गए।
0: सुनते रहे निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
2: आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत और कलाकार हैं सलमा आगा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 8:30 होने को

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, दिल्ली से नरेंद्र देव पांडे और भोपाल से अनीता सक्सेना। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूरवीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

जैसे घने जंगलों के बीच कोई शांत सी नदी चुपचाप बहती हुई जीवन को सींचती रहती है, जैसे अंधेरी रात में दूर कहीं टिमटिमाता दीपक दिशाओं को भरोसा देता है, वैसे ही कुछ व्यक्तित्व अपने समय से आगे बढ़कर समाज की चेतना में उजास भरते हैं। ऐसी ही एक दीपशिखा का नाम है मंगेई गोमांगो, जिन्होंने स्वयं जलकर अपने जनजातीय समाज की ज्ञान परंपरा, सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित कर उसे उजालों का संसार सौंपा। उनकी जीवन यात्रा ये बताती है कि वो केवल एक भाषाविद नहीं थे, बल्कि वो एक महान मानवतावादी थे जिन्होंने सुदूर वनों में रहकर अपनी तपस्या और लगन से अपने समाज को एक नई लिपि दी, अक्षरों की रोशनी दी और उन्हें आत्मगौरव के साथ जीना सिखाया। मंगेई गोमांगो का जन्म 16 जून 1916 को ओडिशा के रायगढ़ा जिले के मरिचगुड़ा नामक एक सुदूर पहाड़ी गांव में हुआ था। घने जंगलों और जलप्रपातों से समृद्ध प्रकृति की गोद में बसे इस क्षेत्र में सोरा जनजाति की घनी आबादी थी। मंगेई गोमांगो का जन्म इसी सोरा समाज के एक अत्यंत संभ्रांत और कुलीन परिवार में हुआ था। सोरा समाज में गोमांगो का अर्थ होता है मुखिया या प्रधान। उनके पूर्वज और पिता गांव के मार्गदर्शक थे। परिवार में आध्यात्मिक चेतना और जड़ी बूटियों का पारंपरिक ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी बह रहा था। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच

फले फूले सोरा जनजातीय समाज में एक गहरा सन्नाटा भी था। आधुनिक शिक्षा से वो सभी बहुत दूर थे। युवा मंगेई ने देखा कि उनके समाज की अपनी एक समृद्ध और संगीतमय भाषा तो है, लेकिन लिपि के अभाव में उनका इतिहास, उनके लोकगीत और औषधीय ज्ञान मौखिक परंपरा में ही हैं, जो समय के साथ विलुप्त हो रहे हैं। इस भाषाई पिछड़ेपन और बाहरी दुनिया के शोषण ने उनके भीतर एक वैचारिक क्रांति को जन्म दिया।

सन 1936 के शुरुआती महीनों में मात्र 20 वर्ष की आयु में मंगेई गोमांगो ने सोरा संस्कृति के संरक्षण के लिए एक कठिन मार्ग चुना। वो मरिचगुड़ा के पास स्थित एक पवित्र पहाड़ी में एकांतवास के लिए चले गए। मन में अपनी भाषा को एक स्वरूप देने का विचार था और इसी विचार के साथ वो कठिन साधना और ध्यान में लीन हो गए। बताया जाता है कि 18 जून सन 1936 की सुबह ध्यान की गहरी अवस्था में उन्हें अंतः प्रेरणा हुई। उन्होंने महसूस किया कि हवा की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट कुछ विशिष्ट आकृतियों में बदल रही है। उन्होंने उन आकृतियों को ताड़ के पत्तों और पत्थरों पर उकेरा। इस तरह 24 अक्षर उनके पास थे। इसे सोरांग सोमपेंग लिपि का नाम दिया गया। यूं सोरा भाषा की ध्वनि को एक आकार मिला और ये लिपि उच्चारण की दृष्टि से बहुत सटीक और वैज्ञानिक थी। अक्षरों का ये अवतरण केवल एक लिपि का जन्म नहीं था, बल्कि ये सोरा अस्मिता का पुनर्जन्म था। उनके इस महान आविष्कार को समाज में फैलाने के लिए सबसे पहले उनके बेटे और दामाद उनके शिष्य बने। लेकिन असली चुनौती सामने थी, इस नई लिपि को जन जन तक पहुंचाना था। लेकिन मंगेई गोमांगो केवल एक विचारक नहीं थे, वो एक कर्मयोगी थे। उन्होंने एक ऐसा आंदोलन चलाया जिसने सोरा समाज की तस्वीर ही बदल दी। उन्होंने मरिचगुड़ा के साथ साथ आसपास के दर्जनों गांवों में अक्षर स्कूल खोले। चूंकि दिन में सोरा समुदाय के लोग खेतीबाड़ी और जंगलों में काम करने जाते थे, इसलिए ये स्कूल सूर्यास्त के बाद रात्रि पाठशालाओं के रूप में चलते थे। मंगेई गोमांगो हाथ में जलती हुई मशाल और ताड़ के पत्तों पर लिखी वर्णमाला लेकर गांव-गांव जाते और बच्चों, महिलाओं, पुरुषों, वृद्धों को अपनी मातृभाषा में लिखना पढ़ना सिखाते थे। उनका ये रास्ता आसान नहीं था। उन्हें दो मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ा। एक तरफ ब्रिटिश प्रशासन और रूढ़िवादी तत्व इस भाषाई साक्षरता को संदेह की दृष्टि से देख रहा था, तो दूसरी तरफ खुद सोरा समाज के कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। ये लोग इसे एक जादुई और अस्वाभाविक घटना के रूप में रेखांकित कर रहे थे।

लेकिन मंगी गोमांगो ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने तर्कों, अपनी विनम्रता और दृढ़ संकल्प से सबको झुका दिया। उनका उद्देश्य केवल एक नई लिपि का प्रचार प्रसार नहीं था, वो सोरा समाज के नैतिक और सामाजिक ढांचे को भी बदलना चाहते थे। उन्होंने देखा कि ताड़ी और मदिरा के सेवन ने सोरा समाज को खोखला कर दिया है। इसके लिए उन्होंने एक व्यापक व्यसन मुक्ति अभियान चलाया। उन्होंने अंधविश्वास, चिकित्सा की जगह तंत्र मंत्र और पशुओं की बलि देने की कुप्रथाओं के खिलाफ तार्किक तथा आध्यात्मिक चेतना का युद्ध लड़ा। उनके इस असाधारण ज्ञान, नैतिक आचरण, समाज सुधार और निस्वार्थ सेवा के भाव को देखकर सोरा समाज और अन्य विद्वानों ने उन्हें अत्यंत आदर के साथ पंडिता की उपाधि से विभूषित किया। लेकिन उनकी ये साधना लगातार जारी रही।

0: पंडिता मंगेई गोमांगो का आयुर्वेद और पारंपरिक जड़ी बूटियों का ज्ञान भी अद्भुत था। उन्होंने रायगढ़ा, कोरापुट और नियमगिरी की पहाड़ियों के घने जंगलों में भ्रमण करके सैकड़ों दुर्लभ जड़ी बूटियों की पहचान की। उन्होंने इनके औषधीय गुणों और मिश्रण की विधियों को अपनी लिपि में लिखकर इस ज्ञान को संरक्षित भी किया। उन्होंने अपने निवास स्थान मरिचगुड़ा को एक चिकित्सा केंद्र में बदल दिया। उन दिनों ऐसे सुदूर क्षेत्रों में अस्पताल या डॉक्टर नहीं होते थे। उन्होंने मलेरिया, गंभीर त्वचा रोग, सर्पदंश और पेट की घातक बीमारियों का सफल इलाज किया। और विशेष बात ये कि उनका ये काम पूरी तरह निशुल्क और सेवा भाव से प्रेरित था। इसके साथ ही उन्होंने सोरा जनजाति के बौद्धिक पोषण पर भी ध्यान दिया तथा साहित्य रचना की। सबसे पहले तो उन्होंने सोरांग सोमपेंग लिपि की पहली प्रामाणिक वर्णमाला की पुस्तक और बुनियादी व्याकरण की रचना की, ताकि भाषा की शुद्धता हमेशा बनी रहे। इसके साथ ही उन्होंने सोरा भाषा में उच्च कोटि के भजनों और कविताओं की रचना की। इन रचनाओं में उन्होंने निराकार ईश्वर की स्तुति, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और मानवीय मूल्यों को पिरोया। उनके द्वारा रचित प्रार्थनाएं आज भी सोरा समाज के विद्यालयों और मंचों पर अत्यंत श्रद्धा के साथ गाई जाती हैं। सोरा समाज में उनके पूर्वजों का इतिहास, उनके शौर्य की गाथाएं और अनगिनत लोक कथाएं प्रचलित थीं। ये सारी धरोहर मौखिक परंपरा में तो मौजूद थी, लेकिन लिखित रूप से ये कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। मंगेई गोमांगो ने सोरांग सोमपेंग लिपि में इसे लिखकर संरक्षित किया। निरंतर शारीरिक श्रम, गांव-गांव की कठिन यात्राएं और ढलती हुई उम्र, इन सारी बातों ने उनके स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव डाला। उनका स्वास्थ्य कमजोर होने लगा और वो बिस्तर पर आ गए। लेकिन अब भी वो थके नहीं, रुके नहीं। वो बिस्तर पर लेटे लेटे भी मानसिक रूप से सक्रिय थे। वो अपने बेटों, दामाद और अन्य युवाओं को अपने पास बुलाते और सोरांग सोमपेंग लिपि के प्रचार प्रसार के लिए रणनीतियों पर चर्चा करते। इसी तरह सक्रिय रहते हुए सन 1980 में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके द्वारा बोया गया बीज आज वटवृक्ष बन चुका है। सरकार और भाषाविदों ने सोरांग सोमपेंग लिपि की वैज्ञानिकता को स्वीकार किया और आज भी प्राथमिक शालाओं में सोरा बच्चों की शिक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही इसे आज डिजिटल फॉन्ट में परिवर्तित करके डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया गया है और आज भी सोरा समाज के लोग 18 जून को लिपि दिवस के रूप में मनाते हैं। नमन ऐसी विलक्षण विभूति को।
1: सौ

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि मंगेई गोमांगो का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन ले, मंगेई गोमांगो का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित कर रहे थे FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 9 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

0: शाहिद माल्या की आवाज में आप सुन रहे थे उड़ता पंजाब फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा शिव कुमार बटालवी ने, अमित त्रिवेदी का संगीत।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की

0: खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

प्रीतम के संगीत निर्देशन में ये गीत आपने सुना हॉलीडे फिल्म से, अरिजीत सिंह की आवाज, इरशाद कामिल के बोल। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे हैप्पी न्यू ईयर फिल्म का ये गीत, इरशाद कामिल के बोल, विशाल शेखर का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर सुन रहे हैं और कार्यक्रम में वक्त एक अंतराल का।

0: प्रेम रतन धन पायो फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल के बोल हिमेश रेशमिया की तर्ज और आवाजें अमन त्रिखा, विनीत सिंह और साथियों की।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना।
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला

0: आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

विशाल शेखर के संगीत से सजा ये गीत आप सुन रहे थे। बैंग बैंग फिल्म के इस गीत में हर्षदीप कौर और बेनी दयाल की आवाज है, अन्विता दत्त के बोल। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर सुन रहे और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। हृदय गट्टानी की आवाज में ये गीत, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, विशाल शेखर का संगीत, फिल्म बैंजो से सुनिए ये गीत।

बैंजो फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे हृदय गत्तानी की आवाज़, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, विशाल शेखर का संगीत। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और दिन भर जहां भी रहें, रहें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ। आज के लिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को दीजिए इजाजत, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। दोस्तों आज के फनकार हैं एक ऐसे सुरीले संगीतकार जिन्होंने नाजुक तरीन गाने दिए हैं, जिनका जादू आज तक कायम है और सदियों तक गाए जाएंगे उनके गीत।

0: बैठे।
1: आज के फनकार एक ऐसे संगीतकार जिनके स्वरबद्ध किए गाने हमारी जिंदगी के साथी हैं, जिनके संगीत में खुशी है, गम है, प्यार है और इंतजार है, ढेर सारी कशिश है, जज्बात का सागर है।

संगीतकार मदन मोहन ने ढाई दशक के सिनेमा के करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। मदन मोहन की बनाई धुन आपकी नजरों ने गीत से संगीत सम्राट नौशाद इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस धुन के बदले संगीत का पूरा खजाना लुटाने को तैयार हो गए थे।

मदन मोहन कोहली का जन्म 25 जून 1924 को कुर्दिस्तान में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल वहां नौकरी करते थे। जिंदगी के शुरुआती 5 साल मदन मोहन ने वहीं बिताए। आगे चलकर उनका परिवार मुंबई आ गया और उनका बचपन बीता राज कपूर, नरगिस और सुरैया के साथ। दरअसल ये उनके पड़ोसी थे। आगे चलकर मदन मोहन ने आकाशवाणी लखनऊ में नौकरी कर ली, जहां उन्हें मिला साथ उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद बरकत अली खां, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसी हस्तियों का।

के बाद मदन मोहन श्याम सुंदर और सचिन देव बर्मन के सहायक बन गए। सबसे पहले मदन मोहन को निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल ने फिल्म आंखें में संगीत देने का मौका दिया। इसके बाद मदन मोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर और मदन मोहन का साथ लेकर आया कई अनमोल गाने। उन गानों की बात करने से पहले आपको ये बता दें कि फिल्म अदा से लता मंगेशकर और मदन मोहन ने साथ काम करना शुरू किया, जैसे अदालत,

मदन मोहन के संगीत की दुनिया लता जी तक ही नहीं सीमित रही, न ही मदन मोहन का संगीत सिर्फ संजीदा गानों तक सिमटा रहा, बल्कि उन्होंने मजाहिया गीतों का जादू भी बिखेरा, जैसे फिल्म चाचा जिंदाबाद का ये गाना।

0: उनके बेटे संजीव कोहली और समीर कोहली विविध भारती के स्टूडियो में आए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: यह हमारा सौभाग्य है कि हम उनके बेटे पैदा हुए, लेकिन मेरे हिसाब से कड़ी तो उनका संगीत है और कड़ी उनके सुनने वाले हैं और चाहने वाले हैं जिन्होंने आज तक उनको जिंदा रखा है। और ये जिंदा उनको ऐसा रखा है क्योंकि उनके गाने आज भी लोग इतने ही प्यार से सुनते हैं जैसे पहले सुनते थे। मदन जी जब गुजरे, हमारे पिताजी, मैं मदन जी ही कहूँगा क्योंकि इट बी ईजी फॉर देम, जब वो गुजरे मैं 18 साल का था, समीर शायद 13-14 के थे, तो हमारी यादें जो बचपन की जुड़ी हैं वो काफ़ी याद हैं लेकिन कुछ धुंधलाई भी हैं। ज़्यादातर हमने उनके जाने के बाद सुनने वालों के तौर पे उनको जाना। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैंने म्यूज़िक कंपनी में भी काम किया और कई संगीतकारों के साथ मिल के काम किया, कई एल्बम्स, कई लोगों का म्यूज़िक बड़े मतलब चाह से सुना समझा। और ये फिर इल्म हुआ कि मदन मोहन जी का एक जो स्थान था वो कुछ अलग था। जितनी इज्जत लोगों ने उनको दी, जितना प्यार सुनने वालों ने और उनके गायकों ने, बाकी संगीतकारों ने जो उनको इज्जत बख्शी है, जिससे हमें इज्जत मिलती है कि मदन जी का संगीत इतने सालों बाद आज भी लोगों को पसंद है। 25 साल उन्होंने म्यूजिक दिया, उनका करियर 25 साल का था, जल्दी गुजर गए 51 की एज पे। हमेशा उन्हें लगता था कि जितना सक्सेस उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिला, हमें नहीं लगता है लेकिन उन्हें ज़रूर लगा। और इसकी वजह भी हैं, सक्सेस का जो बैरोमीटर है वो था कि बड़े बैनर हों, बड़ी फिल्में हों जिनमें बड़े बड़े स्टार्स हों, दिलीप साहब हों, राज कपूर हों, देवानंद हों, फिल्म फेयर अवार्ड मिलना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उस वक्त एक ही अवार्ड था, कि उनके जाने के बाद ये सब होता गया।
2: जी मेरी एक छोटी सी याद है,

0: जमाने में मैं विविध भारती बहुत सुना करता था और मुझे अभी तक याद है ये उस जमाने में टेलीविजन तो था नहीं, तो 7:05 पे आप लोगों का प्रोग्राम शनिवार को जयमाला बजता है, तो वो सुनने के लिए मैंने रेडियो करीब 7 ऑन किया और मैंने रेडियो में ये सुना न्यूज में कि दस्तक ने उस साल के सारे अवार्ड्स नेशनल अवार्ड्स स्वीप कर लिए थे। संजीव कुमार साहब को बेस्ट एक्टर के लिए, रेहाना सुल्ताना साहिबा को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, मजरू साहब को बेस्ट लिरिक्स के लिए, मदन जी को म्यूजिक के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैंने डैड को, म्यूजिक रूम घर के सामने था, मैंने फोन किया उन्हें, मैंने कहा कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं इस वक्त म्यूजिक सिटिंग में हूँ। तो मैंने कहा नहीं, खबर बहुत अच्छी, मैं आपसे आके मिलना चाहता हूँ और खबर इतनी अच्छी कि मैं आपसे 1,000 रुपये मांगना चाहता हूँ, इस खबर के लिए आप मुझे 1,000 रुपये दें। तो उन्होंने कहा खबर अच्छी होगी तो मैं देखूंगा, नहीं तो तुम देखो तुम्हारी क्या हालत करता हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। तो मैं डरते डरते रोड क्रॉस करके मैं म्यूजिक रूम में गया और मैंने जब घंटी बजाई और उन्होंने कहा क्या है, तो मैं देखा कि कोने में रफ़ी साहब बैठे हैं, राजेंद्र कृष्ण साहब बैठे थे वहाँ, उनकी किसी गाने की सिटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा कि आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वो बड़े गुस्सा हो गए क्योंकि उन्होंने लगा कि मैं शायद उनके साथ मजाक कर रहा हूँ। और उसी वक्त दरवाजे की घंटी फिर से बजी और उनके बड़े करीबी मित्र मरहूम जयदेव साहब दरवाजे पर खड़े थे, उनके हाथ में एक शैम्पेन की बॉटल थी और उन्होंने कहा मदन मैंने भी अभी सुना है कि तुम्हें दस्तक के लिए अवार्ड मिला है और मैं तुम्हें मुबारकबाद।
1: इसकी एक वजह थी, वजह यह थी कि उन्हें तब तक कोई बड़ा अवार्ड मिला ही नहीं था और दस्तक 1970 में, मतलब 20 साल का करियर हो चुका था, तो थोड़ा वो निराश भी थे कि मुझे अवार्ड कभी मिलता ही नहीं। और फिर वो दिल्ली जाने से उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। तो संजीव कुमार जी, जिनको भी उस फिल्म के लिए एक्टर का अवार्ड मिला था, वो हमारे घर आए और उन्होंने उनको मनाया कि आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर संजीव कुमार जी ने वही किस्म के दो सूट सिलवाए और मदन जी और संजीव कुमार ने वही दो सूट बोटाई के साथ एकदम जे सेम सूट्स पहन के दोनों साथ में उस फंक्शन के लिए गए।

लेकिन मैं जैसे कह रहा था, इसकी वजह ये थी कि पहले जब फिल्म फेयर अवार्ड, जो मेन अवार्ड उस वक्त कमर्शियल अवार्ड, पॉपुलर अवार्ड होता था जो वोट से होता था, उन्हें 3 बार नॉमिनेट किया गया लेकिन अवार्ड नहीं मिला अनपढ़ 1962 में। उससे मुझे जुड़ी एक बात याद आ रही है कि हम छोटे थे, हम मैं 6 साल का था, तो मदन जी गाड़ी खुद चलाते थे, उनकी बहुत बड़ी गाड़ी होती थी जो पहचानी जाती थी कि ये मदन मोहन की गाड़ी है, क्योंकि बहुत स्पेशल रंग था गाड़ी का। तो वो जब हमें ड्राइव पे ले जा रहे थे, हम वर्ली सी फेस पे जा रहे थे और हम बच्चे थे, मैं जैसे काम छोटा था, तो हम बोलते थे डैड तेज़ चलाओ तेज़ चलाओ, क्योंकि वर्ली सी फेस उस वक्त ट्रैफिक बहुत कम होता था। तो वो तेज़ चलाने लगे, आस्ते आस्ते पुलिस की सायरन्स की आवाज़ पीछे से आने लग गई। हम तो बच्चे थे, समझ नहीं आया कुछ, इतना घबरा गए कि पीछे पुलिस आ गई है। मेरी माताजी जो साथ में बैठी थी, भाई रोको गाड़ी रोको, पुलिस आ रही है, क्या तुम इतने तेज से क्यों चला रहे हो। गाड़ी रोकी और पुलिस के इंस्पेक्टर थे, इनफैक्ट वो उस वक्त सीनियर इंस्पेक्टर थे बहुत, और वो उतरे और उन्होंने

का शीशा नीचे कीजिए। और उन्होंने कहा, मदन जी मैंने इसलिए आपको रोका है कि मैंने आपकी नज़रों ने समझा गाना जो सुना है का माल गाना है। और फिर वो चले गए और मेरे पिताजी ने माताजी की तरफ देख के कहा कि देखो मेरे लिए अवार्ड यही है।

0: संगीतकार मदन मोहन ने थोड़े समय तक फौज में नौकरी की थी। जब चेतन आनंद ने बनाई फिल्म हकीकत, तो संगीत की जिम्मेदारी सौंपी मदन मोहन को और उन्होंने इस फिल्म में दिया बड़ा ही शानदार संगीत, जिसकी मिसाल है ये देशभक्ति गीत।
1: कर चले हम फिदा

दोस्तों, मदन मोहन न केवल सुरीले संगीतकार थे बल्कि उन्होंने सुरीला स्वर भी पाया था। वो खुद भी गाते थे। आकाशवाणी लखनऊ में काम करते हुए मदन मोहन ने संगीत के राग रागिनियों का भी रियाज और प्रयोग किया। इन राग रागिनियों का उन्होंने फिल्मी गानों में भी खूब खूब प्रयोग किया।

0: 1975, जुलाई का भीगा भीगा मौसम, जुलाई के 14 तारीख को मदन मोहन ने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया।
1: हम सब

0: शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है। अब जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।
3: सीधी जिले की चिट्ठी। आलेख सचिंद्र मिश्रा का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का।

सीधी जिला इन दिनों विकास, जनकल्याण और सुशासन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक चलाए गए विशेष जनकल्याण अभियान के अंतर्गत जिले के सीधी, मझौली, कुसमी और रामपुर नेकिन विकास खंडों में व्यापक स्तर पर जनकल्याण शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों का उद्देश्य उन परिवारों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है जो अब तक विभिन्न कारणों से वंचित रहे। सीधी विकासखंड में आयोजित जनकल्याण शिविर में 11,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। वहीं मझौली में 3 दिवसीय शिविर में 14,755 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 14,000 से अधिक आवेदनों का निराकरण कर हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया गया। किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत जिले में कृषक चौपालों का आयोजन किया गया। रामपुर नैकिन और कुसमी में आयोजित चौपालों में किसानों को आधुनिक खेती तकनीकों, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, फसल विविधीकरण, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, जल संरक्षण और कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। किसानों ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया। ग्रीष्मावकाश समाप्त होने के बाद जिले के सभी विद्यालयों में नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो चुका है, जिसके साथ ही स्कूल चले हम अभियान का दूसरा चरण भी शुरू किया गया है। अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बच्चे का 100% नामांकन सुनिश्चित करना और ड्रॉपआउट बच्चों को पुनः शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। इसके लिए विशेष सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। पहले दिन विद्यालयों में विद्यार्थियों का स्वागत तिलक, पुष्प और पाठ्य सामग्री देकर किया गया। विशेष भोज, बाल सभाएं और प्रेरणादायी गतिविधियां आयोजित की गईं। वहीं जिले में शिक्षकों की क्षमता वृद्धि के लिए 6 दिवसीय शिक्षक प्रेरणा व गुणवत्ता संवर्धन कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। सीधी जिले में समान नागरिक संहिता UCC पर व्यापक जन सुझाव अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मड़रिया में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने विषय के पक्ष और विपक्ष में तार्किक एवं तथ्यपरक विचार प्रस्तुत किए। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन विशेष प्रयास कर रहा है। कुसमी विकास खंड की ग्राम पंचायत पौड़ी के घटिया टोला स्थित बैगा बस्ती में लंबे समय से पेयजल संकट बना हुआ था। नए नलकूप खनन से लगभग 70 परिवारों के 250 से अधिक ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने लगा है। मानस भवन सीधी में आयोजित लोक कल्याण मेले में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, डिजिटल भुगतान और वित्तीय साक्षरता पर विशेष जोर दिया गया। मेले में पथ विक्रेताओं को ऋण आवेदन प्रक्रिया, UPI भुगतान, QR कोड उपयोग तथा डिजिटल बैंकिंग के बारे में जानकारी दी गई। स्व सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा लगाए गए उत्पाद स्टॉल विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। इन स्टॉलों ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत मझौली क्षेत्र में 5 स्व सहायता समूहों को 25 लाख रूपये का बैंक ऋण प्रदान किया गया है। सीधी संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉ. राजेश मिश्रा के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा कर निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त की। सांसद डॉ. राजेश मिश्र और जिला प्रशासन के द्वारा पिछले दिनों सीधी रेलवे स्टेशन से कुचवाही तक निर्माणाधीन रेलवे ट्रैक का संबंधित रेलवे अधिकारियों के साथ विस्तृत निरीक्षण किया गया। कलेक्टर ने रेलवे ट्रैक के आसपास जल निकासी की समुचित व्यवस्था, संवेदनशील एवं कमजोर स्थलों की पहचान कर तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सीधी जिले में योग को जनभागीदारी का उत्सव बनाते हुए 51 स्थलों पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम छत्रसाल स्टेडियम में सांसद डॉ. राजेश मिश्रा और विधायक रीति पाठक की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का प्रसारण किया गया, जिसमें उन्होंने स्वस्थ आयु के लिए योग की थीम पर बल दिया। धार्मिक, प्राकृतिक एवं शैक्षणिक स्थलों सहित पूरे जिले में हजारों नागरिकों, विद्यार्थियों, युवाओं और महिलाओं ने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया। बरचर आश्रम में स्वामी अड़गड़ानंद महाराज की उपस्थिति में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं योग साधकों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय पितृ दिवस के अवसर पर बीते दिनों कैलाश तरुण वृद्धाश्रम पनवार में जिला प्रशासन द्वारा तातश्री सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वृद्धाश्रम में निवासरत वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान कर उनके प्रति आदर और कृतज्ञता व्यक्त की गई। सीधी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे सीधी जिले की चिट्ठी। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। स्वीकार करें राखी जैन का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फुकरे फिल्म के गाए इसकी।

से, आवाज सोना महापात्रा की, संगीत राम संपत का और गीत के बोल लिखे हैं मुन्ना धीमन ने। पसंद आप सभी की बड़ा बम चौक खंडवा से संजय मार्कंडे और ममता मार्कंडे। इसी गीत को पसंद किया घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका संप्रीत, गुनगुन हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। रतनपुर झिरन्या से पसंद करने वाले हैं भागीरथ नायक, जितेंद्र, सुभाष, रविंद्र, शिवानी, अश्विनी, हर्षराज, अरविंद, आदित्य और गुनगुन। इसी गीत को पसंद किया है सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमस खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने। बुड़गंज छत्तीसगढ़ से पसंद करने वाले हमें श्रोता है रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंदेश कुमार, चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति। पटियाला से इस गीत को पसंद किया मुकेश भट्ट, नीलम, नितिन, पाला, करण, गीतू और वंश भट्ट ने। निम्बोरा महाराष्ट्र से पसंद करने वाले हैं बमन राव जोशी, हेमंत जोशी, मनीषा, अभिजीत, करिश्मा और अशोक देशमुख। कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनूरा शिमाली। सनावत से इस गीत को पसंद किया दिलीप मालाकार।

समर्थन करने वाले हैं भागीरथ नायक, जितेंद्र, सुभाष, रविंद्र, शिवानी, अश्विनी, हर्षराज, अरविंद, आदित्य और गुनगुन। इसी गीत को पसंद किया है सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमस खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने। बुड़गन छत्तीसगढ़ से पसंद करने वाले हमारे श्रोता है रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंदेश कुमार, चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति। पटियाला से इस गीत को पसंद किया मुकेश भट्ट, नीलम, नितिन, पला, करण, गीतू और वंश भट्ट ने। निम्बोरा महाराष्ट्र से पसंद करने वाले हैं बमन राव जोशी, हेमंत जोशी, मनीषा, अभिजीत, करिश्मा और अशोक देशमुख। कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनूराज शिमाली। सनावत से इस गीत को पसंद किया दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता और मुस्कान मालाकार ने। भाटापर दत्रेगी से है द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर, दीपक और जावेद कुमार वर्मा। इसी गीत को पसंद किया शिवकोठी ओंकारेश्वर से राकेश, पप्पूसेन, ओम, सपना, धर्मेंद्र, मुकेश, विश्वर और वैष्णवी। इंदौर से पसंद करने वाली है वंदना परी, गणेश, कार्तिक, स्वाति और ललिता। आप सब सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गीत।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एहसास की जो जुबान बन गए।
5: ध्वनि तरंगों से जुड़ा है ये मोहब्बत का एहसास, उफ की दूर होने नहीं देता।
4: आप हमारी जान बन गए।
5: सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म सलामे इश्क से, आवाज़ अदनान सामी की, बोल समीर के और तर्ज बनाई है शंकर महादेवन ने, पसंद आप सभी की। खरगोन से डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, भागवत, अभिषेक, सीमा, अमित, सचिन, समर, राज, आर्यन, आरोही और ईशिका, वरवट व काल बुल्ढाना महाराज से नारायण हागे, कमल, दिव्या और जय हागे, मोताला महाराज से विजय सुरलकर, रतनमाला, ओम कुमार और आरती सुरलकर। इसी गीत को पसंद किया है जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामरे, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े। संबलपुर का कानकेर से पसंद करने वाले हैं फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव। पालदाना का इंदौर से हसीना बी मंसूरी और अमीना बी मंसूरी। बटिंडा रोड मंडी डब्वाली से पसंद किया है राजेन नारंग, अंजूर मोहित और तानिया नारंग ने। गाजीपुर से है सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति, रोहन और आर्य जायसवाल ने। कलंगगंज खंडवा से कौसर बी पवार, हसीना बी पवार, अलमास पानो और सबीना जहीर पवार। खंडवा से है मोहम्मद हसनैन पवार, मोइन और मोहम्मद फाजिल। आप सब सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गीत।

मनोरंजन का खजाना लेकर आते हैं आपके लिए। सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा। अगले गीत के लिए हमें अनुरोध भेजा है हमारे इन श्रोताओं ने, अहमदपुर के गांव से कैलाश फुलमाली, सुभाष कंडल, दीपक और समर फुलमाली, जामली कला से शब्बीर मंसूरी, साबिर मुन्ना, फैजल, सोहेल शहबाज और शिफान मंसूरी, जामली कला से हैं माणकचंद राठौर, पुष्पाबाई राठौर, प्रियांशी और दिव्यांश राठौर, खंडवा से है अशोक वागे, वंदना और कान्हा वागे, सनावत से इस गीत को पसंद किया है अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा, राजकुमार पुठाना, संजय बावनिया, माया, कान्हा और कृष्णा ने, मामूलवाड़ी महाराज से है सोपान ताइड़ी, वसंतरा भोजने और पी एस नवानकर, शेगांव महाराज से है मोहम्मद अनीस मुहाल, दानिश, जुनेद, रियाज और रिजवान मुहाल, सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहां, तलहत और फरहत, हरियाणा से हैं अंकित कांगड़ा, मोनी प्रिंस, सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा, दत्रेगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा, खंडवा से है मोहम्मद रफीक पास, साकिब मोइन छोटू पवार और हसनैन पवार। आप सबने सुनना चाहा है फिल्म छिछोरे का गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, संगीत प्रीतम का, गीत के बोल लिखे अमिताभ भट्टाचार्य ने।

आपकी पसंद कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं राखी जैन के साथ। लीजिए आप सुनिए साचे टंडन की आवाज में शैली का लिखा गीत। संगीत साचे परंपरा का है और फिल्म है जर्सी। पसंद आप सभी की ग्राम दीवाल से ही शंकरलाल गंगराड़े, वनीता और वमिका गंगराड़े, सिंगार तलाई खंडवा से राधेश्याम यादव, प्रभा यादव, शालिनी कामेश भारती और राहुल यादव, नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल नीति सुरवी, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र शाह, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद, दप्पा से निघत परवीन, शाहनवाज फरहाज और इनके परिवार के सभी सदस्य, खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता गौरव, ईशान कार्तिक, रिया रोहन और अंगद ठाकुर, मजनू का टिल्ला से है कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर, उमंग, आकांक्षा और माही मलिक, सनावत से है धर्मेन्द्र मालाकार, रीना, निशा, हैप्पी, दिलीप और सुनीता मालाकार, जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी और इनके परिवार के सदस्य, मेरठ से केंट से है दिग्दर्शन और कविता गौड़। आप सब सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गीत।

श्रोताओं अब सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म कबीर सिंह का ये गीत, संगीत मिथुन का और गीत के बोल भी लिखे हैं मिथुन ने। पसंद आप सभी की। मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला अंतिम ज्योति शुभम देवी किशन भाना मन मानस और कनिका पटेल, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता शशांक और सीमा साहू, गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की रानू, रविन्द्र और रौनक सेन, मलिहान सरदाना मेरठ से अनिल जैन, सैयम मुस्कान और जीव्यम जैन, बुरहानपुर से मोहन मुतलिया, अर्शिया आरुष और राजेश कुमार, खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार, मुंबई से हैं अहमद भाई, सदफराज, आरजू, जूही और इमरान। इसी गीत को पसंद किया है प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी और फाल्गुनी जोशी ने। आप सब सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गीत।

श्रोताओं अब सुनिए श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म एक्शन रिप्ले का ये गीत, बोल इशाक कामिल के, संगीत प्रीतम का, पसंद आप सभी की। सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश और सोनाली नारंग, मलकापुर से संजय पाटिल, उषा, प्रथमेश, निवृत्ति और इनके परिवार के सदस्य, एकता कॉलोनी रोहतक से है सीताराम कांगड़ा, बबीता, निखिल और तन्वी, कानपुर से है आफ्ताब उल्लाह, अल्लाह उल्लाह, वली उल्लाह और डब्ल्यू उल्लाह, चंडीगढ़ से है सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। इसी गीत को पसंद किया है वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा ने। भोपालगढ़ राजस्थान से है धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान और पूजा परिहार। रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह और ऋषभ सिंह। उज्जैन से है विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक और कुश मुणत। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खा, ऐशा, सबीहा, अनस और रेहान। गांधी चौक बाड़मेर से है बबलेश पवार, डेनी और मनीष पवार। बलिया से है ओम प्रकाश राय, उषा, अमित और हैप्पी राय। आप सब सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गीत।

0: इसी गीत के साथ आज का आपकी पसंद कार्यक्रम संपन्न करने की राखी को दे आज्ञा। नमस्कार।
1: ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन
2: आकाशवाणी खंडवा।

हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब सुनिए लिंबादास रामलाल और साथियों के गायन निमाड़ी लोकगीत।

आप बने रहिए हमारे हमसफर और सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

0: तो फिर सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन।
1: मेरी आश की अब तुम
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लिंबादास रामलाल और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का स्नेहिल अभिवादन। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का हम तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। लीजिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पंडित कुमार गंधर्व की गाए इस भक्ति पद के साथ।

कुमार गंधर्व की आवाज में अभी आपने ये भक्तिपद सुना, और आइए अब सुनते हैं आनंद मिलिंद का संगीत, गुलजार साहब की शायरी, गायिका हैं आशा भोंसले, और ये एल्बम है दायरा।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है

0: उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविद भारती पर।
2: ये आवाजें हैं जानी बाबू कव्वाल और उनकी हमनवा की।

शिकवे ना किए रह गया होंठों को सिए, खूने अरमान हुआ उफना किया।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रंग तरंग कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं।

विशाल और शेखर के संगीत निर्देशन में रजत अरोड़ा का लिखा गीत, गायिका हैं सुनिधि चौहान और फिल्म का नाम है द डर्टी पिक्चर।

कार्यक्रम का अगला गीत प्रीतम का संगीत है, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और आवाज है शफकत अमानत अली की। ये एक गैर फिल्मी गीत है।

पर बहुत ही क्लासिक हो रहा है, मैं ऐसा समझती हूँ। आप क्या सोच रहे हैं मुझे बताइएगा। बाकी आज जो हमने दो सवाल आपसे पूछे हैं, हमारे श्रोता फटाफट हमें जवाब दे रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि एक ऐसी लड़की थी दिलवाले का और मेरी जंग जीत जाएंगे हम, इसमें पियानो का इस्तेमाल हुआ है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म अनुपमा का धीरे धीरे मचल और ब्रह्मचारी का दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, क्या बात है। तो हो सकता है आपकी पसंद हमारे पसंद से मेल खाती हो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि राम और श्याम का और आदमी और ब्रह्मचारी फिल्म के गीत जो हैं पियानो से जुड़े हुए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम सभी संगीत प्रेमी श्रोता बहुत ही खुश नसीब हैं कि हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक नायाब म्यूजिक डायरेक्टर्स, म्यूजिक कंपोजर्स और वाद्य यंत्रों को बजाने वाले नायाब कलाकार हुए जिन्होंने हमें शानदार गीतों का खजाना दिया है। सोचो अगर ये सारे म्यूजिक वाद्य अच्छी तरह से बजाए न जाएं तो गायक कलाकार की कितनी भी अच्छी आवाज़ क्यों न हो, अच्छा गीत नहीं बन सकता था। इसलिए सभी बजाने वाले साजिंदों को हम नमन करते हैं। बिल्कुल सैल्यूट देना चाहिए हमें उन सभी संगीतकारों को, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे 1960 से 1995 तक का संगीत बहुत ही पसंद है। और एक श्रोता ने तो पियानो के प्रकार लिखा है कि अपराइट पियानो, इसका भजन 175 वजन, इसका 175 किलोग्राम से 300 किलोग्राम तक होता है। अच्छा, क्या ग्रैंड पियानो का 300 से 600 किलोग्राम तक होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पियानो पर फिल्म वंदना का गाना आपकी इनायतें आपके करम

मुझे लगता है कि आज पियानो पर जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमारे दोस्तों की यानी हमारे साथियों की उंगलियां भी थिरक रही होंगी। क्यों थिरक रही है ना, पियानो की तरह। हाँ, पियानो पे मेरा मतलब है, क्योंकि हर गीत के साथ हम आपको एक पियानो की धुन भी अलग से सुनवा रहे हैं। और आज का ये

हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारे सूरत में रोज मेरी नामक एक रेस्टोरेंट के वेटिंग एरिया की फ्लोरिंग पियानो थीम पर बनाई गई है। कांच के व्हाइट और ब्लैक पट्टे पर चलने से अलग अलग लाइटिंग के साथ म्यूजिक बजता है, बहुत ही रोमांचकारी नजारा होता है। ये वीडियो नहीं अपलोड होता वरना मैं दिखाता, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सरोद सीखना चाहता था पर हसरत ही रह गई, हालांकि छोटे भाई ने सितार सीखा है। वहीं एक श्रोता ने बहुत सारे गानों का जिक्र किया है और एक श्रोता लिखते हैं कि मैं हारमोनियम बजाना जानता हूँ। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे खैर गानों का इन्होंने जिक्र किया है और एक श्रोता ने कहा है कि मैं हारमोनियम बजा लेता हूँ और तबला भी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है हमने वायलिन सीखा है 4 साल तक पर अब हम बहुत कम बजाते हैं, अब थोड़ा भूलने भी लगे हैं। अरे भूलिए मत, उसे अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। और अब हम शामिल करते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत। जी हाँ, शम्मी कपूर साहब फिल्म ब्रह्मचारी के लिए और मोहम्मद रफ़ी और लता साथियों की आवाज़ें हैं। हसरत जयपुरी की रचना है

जी हाँ, उदास तो बिल्कुल भी नहीं होना है और जिंदगी का ये सुरीला सफर यूं ही कट जाएगा हंसते हंसते। इसी उम्मीद के साथ अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

साथियों, मौसम चाहे कोई भी हो, प्रकृति का सर्वाधिक सुंदर रूप धूली निखरी ओस से भरी शीतल सुबह में होता है। हर एक सुबह का अपना ही सौंदर्य है। स्वच्छ ताजी हवा और सूर्य की पहली किरण का स्पर्श हमसे कहता हुआ प्रतीत होता है, जागो मोहन प्यारे, भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत हो। रात्रि के अपने विश्राम कक्ष में जाते ही सूर्य का रथ गतिमान हो उठता है और हम सभी निर्मल मन के साथ नई सुबह के कोरे

हर नई सुबह हमारे लिए जागरण का संदेश होती है। एक नई आशा, नई उम्मीद के साथ हमें कर्म पथ पर चलने का हौसला देती है। सुहानी सुबह के अद्वितीय सौंदर्य में हम शांत मन से प्रकृति के नैसर्गिक संगीत को सुनते हैं। ठंडी शीतल सुबह में सूर्य की किरणों के स्पर्श से खिलते फूलों की सुगंध और पंछियों की चहचहाहट हमें ऊर्जावान बनाती है। फूलों की तरह खिलती महकती हमारी सुबहें हमारे जीवन को नित नई दिशा देती हैं। एक आस का सूरज हर दिन हम सभी के लिए उदय होता है।

हमारे जीवन में उल्लास भरती, खुशियों की उजास लिए सुहानी सुबह हमारी आस का वो तारा बनकर चमकती है, जो हमें हमारे सपनों की राहों पे चलकर एक नई पहचान, नया आशियां बनाने को प्रेरित करती है, हवाओं पे एक नई कहानी लिखने का हौसला देती है। जागो, उठो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो।

0: प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संविधान हत्या दिवस के अवसर पर कहा कि ये दिन आज हमें उस काले दौर की याद दिला रहा है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हम ऐसे भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों के प्रति सदैव समर्पित रहे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, आज हम उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने भारत के इतिहास के सबसे काले दौर में से एक यानी आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती से रक्षा की। श्री मोदी ने कहा,
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
0: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के तारातला इलाके में कल एक निर्माणाधीन गोदाम का हिस्सा अचानक ढह गया था जिसमें करीब 9 लोगों की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल से प्रदेश की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 33.92 लाख से अधिक लाभार्थियों को बड़ी आर्थिक सौगात दी। उन्होंने सिंगल क्लिक के माध्यम से 203.56 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य राज्य के बुजुर्गों, दिव्यांगों और निराश्रितों को समय पर आर्थिक संबल प्रदान करना है। श्री यादव ने कहा कि सरकार की इस पारदर्शी डिजिटल हस्तांतरण प्रक्रिया से हितग्राहियों को बिना किसी परेशानी के राशि मिल रही है जिससे उनके जीवन में खुशहाली और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो रही है। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। पिछले 24 घंटों में सीधी और दतिया में सर्वाधिक 41.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया जबकि पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री रहा। छिंदवाड़ा के चांद में 75.2 मिलीमीटर भारी बारिश हुई है। वहीं जबलपुर में 56 और सीहोर में 52 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी चली। मौसम विभाग ने सीहोर और जबलपुर में भारी बारिश के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झंझावात और वज्रपात बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर सहित प्रदेश के

स्थान जिलों में तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की चेतावनी दी है, जबकि सीधी जिले में कुछ स्थानों पर लू का भी प्रभाव रह सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में संचालित शैक्षणिक संस्थानों, कोचिंग सेंटर्स और छात्रावासों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नर्मदापुरम जिले के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में साइबर अपराधों से बचाव को लेकर जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गया। कान्हा टाइगर रिजर्व में एक माह के भीतर 8 बाघों की मौत के मामले को जबलपुर हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। आगर मालवा में कल आयोजित हुए कार्यक्रम के तहत पुलिस अधीक्षक ने एक साइबर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को जागरूक करेगा। धार जिले में खरीफ सीजन 2026-27 के दौरान किसानों को समय पर पर्याप्त रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर ने आकस्मिक निरीक्षण किया। डिंडौरी जिले में वर्ष 2026 की खरीफ मौसम में सामान्य से कम वर्षा और सूखे जैसी स्थितियों की संभावना को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को समय रहते आवश्यक कृषि उपाय अपनाने की सलाह दी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार दो शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मोंटेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। और मैनचेस्टर में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मैच में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियां आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी थी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चो में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता

0: रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
1: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
0: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
2: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस।
3: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
2: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
0: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की ये बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
4: The global south should be enabled.
5: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन DC में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जेकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6ठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने भी श्री मान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल FIR दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जाँच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि

0: वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये और घायलों को 1-1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी हैं। मामले की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल एसआईटी गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है।
1: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके बहुत सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
0: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति पति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच

0: ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

फिल्म बाबर का गीत था, आवाज सुधा मल्होत्रा की थी, गीत को साहिर लुधियानवी ने लिखा था और तर्ज बनाई थी रोशन ने।

ये इस बार है मुकेश और सुमन कल्याणपुर की फिल्म का नाम है मेरा घर मेरे बच्चे। रचनाकार हजरत जयपुरी, संगीतकार सरदार मलिक।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6 बजे

0: बजकर 45 मिनट सिर्फ विविध भारती पर।
1: कार्यक्रम में अब सुनिए प्रेम धवन का लिखा गीत, हंसराज बहल का संगीत, आवाज मुकेश की, और ये फिल्म है मुड़ मुड़ के नातिक।

रास्ता है आपका, ये रास्ता है आपका, अगर मैं साथ हो लिया तो क्या गया जनाब का, जी वास्ता है आपका ये

रुको रुको हवा। कार्यक्रम का अगला गीत कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में शमीम जयपुरी का लिखा हुआ, आवाज़ एक बार फिर मुकेश की, और ये फिल्म का नाम है दिल भी तेरा हम भी तेरे।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। वल्लाह क्या बात है। जी हाँ, ये है फिल्म का नाम जिसका दो गाना अब आप सुनेंगे, स्वर आशा भोसले और मोहम्मद रफी के। इस गीत को प्रेम धवन ने लिखा है और संगीत रोशन का है।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: रवि के संगीत निर्देशन में प्रेम धवन की रचना, स्वर हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के। फिल्म का नाम है अपना घर।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी आपको और सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का नमस्कार।
1: क्या हाल है?
2: हाल बहुत अच्छे हैं।
1: देखिए बारिश की बूंदें पड़ गई है मुंबई के सरजमी पर और
2: मुंबई के अलावा और भी बहुत सारी जगह है जहाँ छुटपुट बारिश की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन बारिश के बाद जब फिर से धूप निकलती है ना तो बारिश का मजा किरकिरा कर देती है क्योंकि उमस बहुत ज्यादा हो जाती है।
1: बस जब बारिश होती है तो हमें इंतजार रहता है कि नदियाँ भर जाएं, तालाब झरने और कलकल बहने लगे, मतलब ये लगता है कि पानी पानी चारों तरफ दिखाई पड़े। और जब ज्यादा बरसात होती है तो हम परेशान भी होने लगते हैं, तो बस यही उम्मीद करते हैं कि इस बार संतुलित बारिश हो। और आज विशेष तौर पर हम अपने श्रोताओं को याद दिलाना चाह रहे हैं कि आज एक विशेष दिन है, नाविक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस
2: जी।
1: तो ये वैसे हमें रोज इस बात का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इस दिवस के बहाने हम लोगों को आगाह करते हैं कि जो हमारे मछुआरे हैं नदियों में जाते हैं, समंदर में जाते हैं, मछलियां पकड़ने जाते हैं
2: जी,
1: तो उनकी उनकी सुरक्षा कितनी ज़रूरी है, कितनी सबकी क्या जिम्मेदारी बनती है, घर परिवार वालों की, समाज की। और दूसरा कि जब आप इस नौका विहार के लिए जाएं और नाविक का काम मतलब मछुआरों का काम करने जाते हैं तो पहली शर्त यह है कि तैरना आना चाहिए, कि बिना तैरे नदी में छलांग न लगाएं कि हम।
2: वैसे भी जब हम किसी पर्यटन स्थल पर जाते हैं जहां नदी, झील, झरने ऐसी चीज़ें होती हैं और वहां पर जब हम नाव की सैर के लिए जाते हैं तो सुरक्षा के तौर पर हमें एक जैकेट दिया जाता है पहनने के लिए कि अगर कभी कुछ दुर्घटना हो तो वहाँ आप सुरक्षित रहें। लेकिन उसके अलावा एक नाविक इस तरह का मौजूद हमेशा रहता है कि अगर कोई दुर्घटना हो तो अधिकतम लोगों को वो बचा कर ला सके। और बहुत ही उनकी कठिन जिंदगी होती है, उनके बारे में लोगों को उनकी सुरक्षा के लिए जागरूकता हो, इसीलिए इस तरह के खास दिन जो है वो हम मनाते हैं।
1: और कई बार क्या होता है कि जब नौका विहार के लिए लोग निकलते हैं तो बहुत सारे जो नाविक होते हैं वो नाव पर

0: जहाँ पर ये सुरक्षा जैकेट नहीं देते
1: जी
0: हैं, कम होते, दो चार होते हैं और 15-20 लोगों को बिठा देते
1: जी
0: हैं, तो ये बहुत खतरनाक होता है। जो लोग बैठते हैं कहीं पैसों की बचत के चलते, कहीं समय की बचत के चलते बैठ जाते हैं, उनको ख्याल रखना चाहिए कि आपकी जिंदगी ज़्यादा कीमती है, न कि आपके धन की धन। तो ये ध्यान रखें, अक्सर किसी जगह पर जब जहाँ पर कहीं भीड़ भाड़ इकट्ठी होती है, तो अमूमन ये घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि फला जगह पर नौका डूब गई। तो ये ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि इस तरह की आपदाएं अब कम हो रही हैं, क्योंकि सरकार की ओर से भी मुहिम चलाई जा
1: जी
0: रही है कि एक तो सुरक्षा जैकेट बहुत जरूरी कर दिया है और जगह जगह पर उनकी टीम काम करती है, नदियों में जाती रहती है कि कहीं ऐसी दुर्घटना हो तो उन्हें बचाया जा सके।
1: तो इससे जुड़े कोई अगर अनुभव है हमारे सुनने वालों के तो वो हमें लिखकर अवश्य भेजें। इसके अलावा आज जिन विषयों पर बातचीत हम करने वाले हैं, हम बता दें कि अगर आपने घर में कुछ पौधे लगाने के आप शौकीन हैं या आप कोई खेती भी करते हैं, तो कीट जो लग जाते हैं, जो कुछ कीड़े हैं ना जो लग जाते हैं, जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, आपके घरेलू पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो आज तो हम सिर्फ घरेलू पौधों के बारे में बात करने वाले हैं। आपने घर में अपने गार्डन छोटा सा बगीचा बनाया, छत पर एक बगिया बनाई है, तो उनको बचाने के लिए क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे सुनने वाले ज़रूर हमसे साझा करें। और शादी ब्याह एक ऐसा बहाना होता है जब बहुत सारे सगे संबंधियों से मुलाकात हो जाती है हमारी। कई बार तो हमें शादी में जाते ही इसलिए हैं कि अरे वो मौसी आएंगी, वो मामा आएंगे, वो ताऊ आएंगे, या उनके बच्चों से मुलाकात नहीं हुई होती है तो उनसे मिलना जुलना भी हो
0: और
1: जाएगा।
0: बहुत सारे दोस्त मित्र मिलेंगे तो चलते हैं, और वो जो इकट्ठे टीम बना के, दल
1: जी
0: बना के जाना, वो एक अलग अनुभव होता है, क्योंकि अमूमन अकेले अकेले ही जाना होता है। लेकिन शादी ब्याह में कई टीम बन जाती है। भाई दफ्तरों से भी जब लोग किसी की
1: जी
0: शादी में जाते हैं तो कहाँ मिले, फला जगह पे मिलते हैं,
1: हाँ जी
0: और सब झुंड बना के जाते हैं, तो उसका एक अलग अनुभव होता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं के इस मामले में क्या अनुभव है कि वो जब शादी ब्याह में जाते हैं तो उन्हें किस तरह की फीलिंग होती है, कौन सा एहसास होता है, उन एहसासात को यहाँ पर साझा करें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।
1: और आज होगी कहानी पद्मश्री की। इसके अंतर्गत जिनका परिचय हम करा रहे हैं ये हैं रमीला बेन राय सिंह भाई। तो बातें विस्तार से होंगी, लेकिन ममता जी एक गीत पहले सुन लेते हैं।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: ममता जी, आज हम जिनकी कहानी की बात कर रहे हैं पद्मश्री के अंतर्गत, ये हैं रमीला बेन राय सिंह भाई, जिनको साल 2022 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा जा चुका है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार बिना स्वार्थ के ये अपनी सेवाएं देती आ रही हैं।
1: और बता दें कि सामाजिक कार्यों में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया और 1 जून 1969 को गुजरात में उनका जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा 10वीं कक्षा के आगे तो नहीं हो पाई और उनका जहां जन्म हुआ था समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए तो लोग जाने जाते हैं वहाँ के, लेकिन संसाधनों तक उसकी पहुंच सीमित है, इसलिए उनकी औपचारिक शिक्षा जल्दी ही समाप्त हो गई। ऐसा समुदाय जहां लड़कियों के लिए शिक्षा अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों और कृषि कार्यों के आगे उपेक्षित थी।
0: बिल्कुल, और रमीला बेन ज्ञान की प्यास उनमें थी और कुछ कर दिखाने का जुनून ये भी उनका कम नहीं हुआ। मतलब जिस जहां वो जन्मी पली बड़ी, माहौल चाहे जैसा भी था, लेकिन उनके जुनून को वो रोक नहीं पाया और इसी बात ने उनके जीवन को उद्देश्य दिया और दिशा भी दी। भले ही वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई थी, लेकिन उनके जीवन के जो अनुभव थे उन्होंने उन्हें एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक बनाया, एक दयालु और दृढ़ निश्चय और परिवर्तन लाने वाली महिला के रूप में उन्हें ढाल दिया। रमीला बेन के जीवन जो था वो बहुत सारी बाधाओं से भरा हुआ था। उनके गांव में उचित शौचालयों का अभाव था, खुले में शौच करने जाना दैनिक जीवन की एक वास्तविकता थी और ख़ास तौर पर अगर महिलाओं की बात करें तो बच्चों के लिए भी बात करें, जो छोटी बच्चियाँ थीं उनके लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकते थे। इस चीज़ से महिलाओं को शौच के लिए रात होने का इंतज़ार करना पड़ता था और इससे उनकी सुरक्षा और गरिमा ये भी खतरे में पड़ जाती थी।
1: और इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं थी ग्रामीणों को, जो सदियों पुरानी प्रथाओं को छोड़ने के लिए मनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो प्रथाओं में इतने जकड़े होते हैं कि उसे निकालना मुश्किल काम होता है। सबके विरोध का सामना करते हुए उन्हें एक एक परिवार का विश्वास भी जीतना था। उस पर उनकी आर्थिक तंगी ने उनकी चुनौतियों को और बढ़ा दिया, जिससे सामग्री जुटाना और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, जो कि वो कर रही थी।
0: और वो अपने इस काम के लिए सरकारी सहायता भी चाहती थी, लेकिन यहाँ भी बहुत सारी बाधाएं आ रही थी, क्योंकि कुछ लोग कई बार ऐसे होते हैं ना जो नहीं चाहते हैं कि ये महिला काम करे। और ये सारी जटिलताएं, इनसे निपटने के लिए बहुत सारा धैर्य और दृढ़ता की जरूरत उन्हें थी। कितनी भी उनकी यात्रा जो चल रही थी उसमें बाधाएं आती गईं, लेकिन वो अडिग रही और अपने अटूट हौसले के साथ में आगे बढ़ती रहीं।
1: और रमीला बेन के गांव में परिवर्तन लाने के लक्ष्य की शुरुआत हो चुकी थी। अपने गांव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उन्होंने सबसे पहले स्वच्छता की समस्या को सुलझाने का प्रयास शुरू किया। अपनी कोशिशों से उन्होंने लोगों को एकजुट किया और 700 से ज्यादा स्वच्छता इकाइयां बनवाई, जिससे कुछ गाँव खुले में शौचमुक्त हो गए।
0: लेकिन उन्हें बुनियादी ढांचा तैयार करने के साथ साथ लोगों में जागरूकता भी बढ़ानी थी। जैसे आपने कहा ना कि भाई अपनी पुरानी जो प्रथाएं या रूढ़ियां हैं, लोग उनको छोड़ने को तैयार नहीं होते, तो उन्हें खुले में

0: फौज के संबंध में जो जोखिम होते हैं उन पर प्रकाश डालने के लिए बहुत सारे शैक्षिक अभियान उन्होंने चलाए, जिनमें बहुत सरल और प्रभावशाली संदेश होते थे जिनके जरिए वो ग्रामीणों को समझाती थी तो बात उनके समझ में भी आ जाती थी।
1: और यही नहीं, उन्होंने सामुदायिक बैठकें आयोजित की, स्थानीय नेताओं से संपर्क किए और घर घर जाकर लोगों से निजी तौर पर बातचीत की इस संदर्भ में। और उनका काम केवल स्वच्छता तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण में आर्थिक स्वतंत्र की शक्ति को पहचानते हुए बहुत से स्वयं सहायता समूह स्थापित किए, जिनमें महिलाओं को एक साथ लाकर सामूहिक रूप से बचत करने और छोटे छोटे ऋण लेने और छोटे व्यवसाय शुरू करने में सहायता दी। और ये सहायता समूह ग्रामीण आबादी और सरकारी योजनाओं को सीधे पहुंचाने का माध्यम भी बने।
0: इन सहायता समूहों ने महिलाओं को सिलाई और हस्तशिल्प से लेकर लघु कृषि तक सूक्ष्म उद्योग चलाने के ज्ञान भी दिया। और रमीला बेन ने विधवा कल्याण के लिए भी बहुत सारा काम किया, जिससे महिलाओं को सहायता मिली और वित्तीय सहायता भी मिलती रही। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्होंने घरेलू आय में सुधार किया और महिलाओं में आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को भाव, जो ये भाव था उसको बढ़ावा दिया।
1: रमीला बेन के प्रयास से गांव में जो स्वच्छता की कमी थी, स्वच्छता की ओर लोग जागरूक हुए और जिससे स्वास्थ्य समस्याएं जो बहुत ज्यादा थी कम हुई और जो धन का अभाव था वो भी बढ़ा, क्योंकि निजी रूप से उन्होंने आर्थिक संपन्नता की ओर उन्मुख किया लोगों को, ग्रामीण लोगों को। और उनके अथक प्रयास के से आसपास के गांव भी जैसे खुले शौच में जाने की जो प्रथा थी उससे मुक्त हुए और जो बीमारियां थी निश्चित रूप से उससे कमतर हुई बीमारियां, और महिलाओं को सम्मान और निजता का अधिकार भी वापस मिला क्योंकि अब उन्हें अंधेरे में खेतों में जाने की जरूरत नहीं थी।
0: और पहले घरेलू भूमिकाओं तक सीमित रहने वाली जो महिलाएं थी, अब वो खुद को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उद्यमी और वित्तीय निर्णय लेने वाली वो बन रही थी। सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ रही थी, परिवारों तक उनके लाभ भी पहुंचने लगे थे। ये वो लाभ थे जो पहले इनके बारे में जानकारी भी नहीं थी उन लोगों को। और इन गाँवों में नए सिरे से सम्मान और आशा की भावना जागृत हुई। इन गाँवों के बच्चे, खासतौर पर लड़कियां, अब बिना डर के अपनी शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित कर पा रही थी।
1: बिल्कुल सही बात है। रमीला बेन गुजरात में एक समाज सेविका के रूप में उभरी और उनका कहना था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, और उनकी सेवा भाव और मेहनत को देखते हुए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। 2002 में पद्मश्री के अलावा उन्हें स्वच्छ भारत अभियान में उत्कृष्ट योगदान के लिए,
0: ममता जी मैं यहाँ करेक्शन करना चाहूंगी, 2022 में उन्हें मिला।
1: 2022, बिल्कुल सही कहा आपने। और 2017 में भी उन्हें पुरस्कृत किया गया स्वच्छ शक्ति पुरस्कार से, और महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें नारी तू नारायणी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और उनका नाम दृढ़ता और बदलाव का पर्याय बन गया।
0: और उनकी ये जो कहानी थी, जो कार्य उन्होंने किए, वो बहुत सारी महिलाओं को के लिए आगे बढ़कर अपने जीवन की बागडोर संभालने के लिए प्रेरित करते थे। बहुत सारे गांवों को स्वच्छ और सशक्त बनाने के लिए जो उनका जुनून था, इसने उन्हें पहचान भी दिलाई और सम्मान भी दिलाया। और रमीला बेन अब तक गुजरात के करीब करीब 700 से ज़्यादा शौचालय वहाँ पर वो बनवा चुकी हैं या मदद की है उन्होंने, हम ऐसा कह सकते हैं। और उनकी कहानी अनगिनत लोगों को प्रेरित करती है और ये साबित करती है कि एक बदलाव का छोटा से छोटा कदम भी अगर है, अगर अटूट संकल्प है, तो वो उसी से शुरुआत उसकी होती है।
1: बिल्कुल। अब यहाँ पर एक गाना सुनवाते हैं सखियों और सखाओं को।

0: चंचल जी, देखिए शादी ब्याह केवल दो लोगों का मिलना नहीं होता, मिलन नहीं होता, बल्कि बिछड़े हुए रिश्तों और परिवारों को फिर से जोड़ने का सुंदर अवसर भी होता है। कहा जाता है कि समाज के दो परिवार का मिलन होता है। घर में जब शादी का माहौल होता है तो चारों तरफ रोशनी, संगीत और खुशियों की गूंज छाई रहती है। ऐसे में जब रिश्तेदारों का आगमन होता है, जब झुंड के झुंड रिश्तेदार आते हैं कि वो फलाने वाली बुआ आ रही हैं, फलानी चाची आ रही हैं, फलानी जगह
1: कोई मतवाला आया मेरे द्वारे भी होता है।
0: और ये भी कहा जाता है कि वो जैसे मड़वा वाली भाभी, पुरवा वाली भाभी और वो प्रतापगढ़ वाली, ऐसे ऐसे जगह जयपुर वाली, तो ये बड़ा
1: जयपुर वाली चाची, आगरा वाले ताऊजी।
0: कई बार तो भाभी और चाची कर वो न कह के बल्कि सीधे सीधे वो जयपुर वाली आ रही हैं, देखिए ना राजस्थान वाली आ रही, तो उससे भी क्लियर हो जाता है कि कौन आ रहे हैं। तो ये जो शादी ब्याह में जमावड़ा होता है, इसी का आनंद अलग होता है।
1: और एक बात और ममता जी, आजकल सिर्फ शादी ब्याह ही रह गए हैं जहां हम अपने पुराने रिश्तेदारों से मिलते हैं। यूं ऑनलाइन बात करना, फोन पर बात करना, और एक जब इस तरह से हम मिलते हैं बहुत लंबे समय के बाद, आमने सामने से एक दूसरे को देखते हैं, तब उस मुलाकात का मज़ा बहुत कहते हैं कि अलग होता है। और इसके अलावा पहले हम अपने बहुत दूर दूर के रिश्तेदारों को भी जाना करते थे, लेकिन आजकल ये चीज़ें बड़ी संकुचित होती जा रही हैं। हमारे बच्चे कई बार तो हमारी जो हमारी सगे बहनों को तो जानेंगे, लेकिन अगर मेरी चाचा की लड़की है या मेरे ताऊजी के लड़के हैं तो वो उनको नहीं पहचानते, क्योंकि उनका मिलना जुलना ही बहुत सीमित हो गया है। जब कोई शादी ब्याह में जाने की बात आती है तो हम भाई बच्चों की परीक्षाएं हैं, अभी उनके स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनका असाइनमेंट है, इनके चलते बच्चे जा ही नहीं पाते, या बच्चों का भी सोच जिस तरह से हो रही है वो एडजस्ट करना नहीं चाहते हैं। जिस तरह से बड़े लोग हर माहौल में एकजुट होकर रह जाते हैं, बच्चे इस बहाने से भी जाना थोड़ा सा,
0: उनको अपना कमरा चाहिए, उनको अपना बाथरूम चाहिए, और उनको अपने खाने पीने की जो टाइमिंग्स है उसी टाइम पे नाश्ता चाहिए, वही दायरा उसी दायरे में सिमट कर रह गए। और बच्चे पूछते भी हैं कि कौन से वाले मामा, कौन सी वाली मामी, कौन सी वाली चाची, कौन सी वाली बुआ, तो उनको पता ही नहीं है कि फ़ोन पर क्योंकि बात होती है, मिलना जुलना हो ही नहीं पाता। तो शादी के बहाने बच्चों को भी ले जाना चाहिए शादी समारोह में। और पढ़ाई की जहाँ तक बात है कि पढ़ाई पे विघ्न आता तो किताब कॉपी लेकर जा सकते हैं अगर दूसरे शहर में शादी,
1: अगर कोई
0: तो।
1: बहुत ज़रूरी ही ऐसा है कि परीक्षाएँ ही चल रही हैं जिन्हें आप बिल्कुल अनसुना अनदेखा नहीं कर सकते हैं, तब आप नहीं ले जा रहे हैं बच्चों को तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं है फिर भी अपनी सहूलियत या

0: सुविधाओं के वजह से बच्चे मना कर रहे हैं, तो थोड़ा जिद करके बच्चों को जरूर लेकर जाना चाहिए, क्योंकि एक समय पर आकर बच्चे रिश्तेदारों को पहचानेंगे ही नहीं और वो रिश्ते कहीं आकर सिमट कर रह जाएंगे। उनके लिए रिश्ते का मतलब होगा सिर्फ उनके स्कूल कॉलेज के दोस्त या जहाँ उनके सहकर्मी हैं वो।
1: अच्छा, अब जरा ये देख लें कि हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं इस बारे
0: जी
1: में। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि शादी ब्याह त्यौहार किसी पारिवारिक आयोजन के बहाने सगे संबंधियों से मुलाकात का अवसर मिलता है। ऐसी मुलाकातें रिश्तों में अपनापन और मधुरता बढ़ाती हैं। परिवार के लोग एक दूसरे का हालचाल जान पाते हैं, सुख दुख साझा करते हैं और पुराने दिनों की यादें ताज़ा करते हैं। आज की व्यस्त जीवन शैली में जब सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तब ऐसे अवसर रिश्तों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। जब इकट्ठे होते हैं फोन पर वो चर्चा कैसे हो सकती है?
0: बिल्कुल सही बात है।
1: हालांकि कई बार ये होता है कि एक साथ कन्वर्सेशन के लिए कई लोग फोन, मतलब कई फोन एक साथ मिला लिए जाते हैं और बात करते हैं, ग्रुप कॉल होता है, लेकिन उसमें वो आनंद नहीं आता जो आमने सामने बैठ के छेड़छाड़ करके एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं, धौल धप्पा करते हैं। उसमें जो आनंद आता है पुरानी बातें ताज़ा करते हैं कि फलानी भाभी ने एक बार ये कहा था, और फिर उस पे जो ठहाके लगते हैं जोरदार, और वो ठहाके कमरे में ही नहीं आंगन तक बरामदे तक गूंजते हैं,
0: बिल्कुल,
1: उसकी
0: बहुत सारी
1: बात अलग
0: छेड़छाड़
1: होती है।
0: होती है और बहुत लंबे लंबे समय के बाद जब अब पुराने रिश्तेदारों से हमारी मुलाकात होती है और जब हम उनसे उनसे मिलते हैं ना, तो एक बात तो बड़ी कॉमन सी होती है जो हर कोई कहेगा, अरे तुम तो बड़े दिन बाद मिले हो, कितना छोटा सा देखा था तुमको, कितने
1: बड़ा हो
0: बड़े हो
1: गया,
0: गए हो।
1: बड़ा हो गया हमारा बेटा,
0: जी
1: बड़ी हो गई हमारी बिटिया। तो ये सब होता है और समय का अंतराल कई बार कुछ चीज़ों को विस्मृत कर देता है, जो जब आप मेलजोल के साथ वो बातें ताज़ा हो
0: कई बार
1: जाती
0: कुछ
1: हैं।
0: कटाक्ष भी होते हैं, अरे बड़ी दुबली हो गई हो, क्या ससुराल वाले खाने को नहीं देते, अगर थोड़ा वजन बढ़ गया कितना खाती हो भाई, ज्यादा खिलाते हैं ससुराल वाले, तो इस तरह के कटाक्ष
1: ज़्यादा अमीर हो
0: छेड़छाड़।
1: गई हो, ये भी
0: हाँ
1: होता है। अब ज़्यादा बातें ना हो जाए इसका ख्याल रखते हैं। एक
0: जी
1: गाना सुनवाते हैं।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
3: परेशान हूं मैं।
2: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
2: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
2: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह कार्यक्रम सखी सहेली और श्रोताओं की टिप्पणियां बहुत सारी आ रही हैं। क्या था विषय की शादी के बहाने सगे संबंधियों से मुलाकात, और चंचल जी भी ढूंढ रही हैं, लेकिन ये जो टिप्पणी आई है वो मैं श्रोताओं तक पहुंचा रही हूं, जो हंसी मजाक वाली बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी कोने में चाचा पुरानी बातें सुना रहे होते हैं, कहीं मामा हंसी मजाक में सबको हंसा रहे होते हैं, तो कहीं बरसों बाद मिले भाई बहन बचपन की यादों में खो जाते हैं। ऐसे मौकों पर लगता है कि रिश्ते कभी पुराने नहीं होते, बस मुलाकात का इंतजार करते हैं, और फिर शादी बीत जाती है लेकिन मन में एक मीठी सी तसल्ली रह जाती है कि इस उत्सव ने कुछ घंटों के लिए ही सही पूरे परिवार को फिर से एक साथ मुस्कुराने का अवसर दे दिया। और कई बार जो मन की गांठें हैं वो भी खुलती हैं, कि नाराजगी होती है कि फलानी बुआ नाराज है, वो फोन नहीं कर रही है, बात नहीं कर रही है, फलानी दीदी नाराज है कि वो फोन नहीं आएंगे शादी में, और आ जाती है जैसे तैसे, फिर रोना धोना मचता है, उसके बाद बिल्कुल माहौल हल्का।
5: अब इसी बात पर देखिए अगला कमेंट है कि शादियों में मिलना जुलना भी होता है और कुछ पुराने गड़े मुर्दे भी खड़ा करते हैं, थोड़ी सी नोकझोंक भी होती है, उसके बाद मुंह फुलाना, बाद में मान मनोवल, और फिर सब एक ही जगह मिलकर बैठकर हंसी ठहाके लगाकर बड़ा एंजॉय करते हैं।
2: एक श्रोता ने लिखा है कि पिछले महीने ही हमारे परिवार में विवाह था, हम सब ने तय कर लिया था कि सभी आएंगे, मई में शादी इसलिए रखी थी कि बच्चे भी फ्री हो जाएंगे, सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए, बचपन की यादें ताजा हो गई, संगीत में भी सब जमकर नाचे, बहुत मस्ती हुई, बच्चों को भी अपने चचेरे ममेरे भाई बहनों से मिलने और समझने का मौका मिला।

0: और बुजुर्ग तो भावुक ही हो गए सबसे मिलकर। कई रिश्तेदारों से तो बरसों बाद मिलना हुआ। सबसे ज्यादा आनंद तो इसमें लेडीज संगीत का जो होता है और रात को जो महलूल होता है, अगर बेटे की शादी है तो उसमें सबसे ज्यादा आनंद घर वालों को आता है, क्योंकि लेडीज संगीत में सारे मिलकर, कहने नाम तो लेडीज संगीत है लेकिन
1: लेकिन
0: उसमें पुरुष भी
1: हाँ
0: शामिल होते हैं, जेंट्स भी, और खूब मस्ती करते हैं नाच गान के
1: लेकिन
0: साथ।
1: जब नहीं पहुंच पाते हैं उनका दुख बयान करते हुए हमारे एक संदेश में लिखा गया है कि सगे संबंधियों के बहाने हमने भतीजे का हाल सुना, बहुत बहाना क्या करें, बच्चों की परीक्षा है और श्रीमान जी की तबीयत खराब है, नौकरी से उन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, शादी के बहाने मिल तो लेते लेकिन जिन्होंने भी बहाने किए हैं वो सभी शादियां पधारें। पता नहीं क्या लिखना चाहती हैं, कुछ साफ साफ नहीं है इनका
0: इनका
1: संदेश।
0: कहने का आशय ये है कि हम लोग बहाने करते हैं कि नौकरी से छुट्टी नहीं मिली,
1: हाँ
0: बच्चों के इम्तिहान हैं। दरअसल उसके पीछे मंतव्य ये होता है कि कौन जाए इतना खर्च बर्च करने के लिए,
1: जी
0: ठीक है उतने पैसों की बचत कर लेंगे, लेकिन वो जो पैसे खर्च करके आप जो खुशी ले आते हैं
1: जी
0: उसकी कोई सानी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर बचत ना करें।
1: हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बताना चाहूंगा कि अभी आपने कहा था ना पुरुष शामिल होते हैं, तो हमारे सखी सहेली कार्यक्रम में बहुत सारे पुरुष श्रोता शामिल होते हैं। तो ये बताना चाहते हैं कि आज शाम को ही रिश्तेदारी में अजमेर में एक शादी है, बड़े बुजुर्ग और छोटे रिश्तेदार सबसे मुलाकात होगी, जहां हम अपने बड़ों के साथ चरण स्पर्श करके आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत पुरानी बात है, मेरे घर में शादी चल रही थी, बारात आ गई थी और सभी नाश्ता पानी करके अपने अपनी जगह पर बैठे हुए थे। सर्दी के दिन थे इसलिए लोग घर के रूम में ही बैठे हुए थे। रिश्तेदारी में आई एक सदस्य बाहर से आए किसी मेहमान का मजाक उड़ा रही थी। वहाँ पर हम सभी बैठे हुए उनकी बात में हाँ मिलाते हुए हंस रहे थे, और तब तक अचानक जनरेटर बंद होने से लाइट चली गई थी। 5 मिनट के अंदर ही लाइट तो आ गई, और जब लाइट आई तो जिनका मजाक उड़ाया जा रहा था वो सामने एक चेयर पर बैठी थी। अब बोलने वाली का चेहरा देखने लायक था, किसी को कुछ बोलते नहीं बना। मैंने उसी समय से उनकी बात को संभाल लिया कि अपनी किसी सहेली के बारे में बोल रही हैं, पर वे मुस्कुरा कर रह गईं और सभी शादी विवाह का विधि विधान देखने के बहाने धीरे धीरे वहां से खिसक गए। आज भी हम सब जुटते हैं तो उस समय की वो बात याद करके खूब हंसते हैं। वैसे वो दोनों रिश्तेदार थी और उन लोगों में आपस में बनती नहीं थी। और कई बार चंचल जी ये भी होता
1: जी
0: है कि खाने पीने के मामले में भी लोग नाराज हो जाते हैं कि
1: हाँ
0: हमें देखा वो फलानी को तो चाय हाथ में पकड़ा दी और हमें चाय पूछा तक नहीं, और हमें तो वो पता है कि हमें लड्डू पसंद है और लड्डू ने दे के हमें तो गुलाब जामुन दे दिया। मतलब बिना बात के भी लोग शिकायत करते हैं।
1: इस तरह की शिकायतें भी होती हैं कि देखो उनकी शादी में गए थे, वहां कितना अच्छा इंतजाम था, हाथों में नाश्ता आता था, समय पर चाय पानी हो जाया करती थी, यहाँ तो 11 बज गए नाश्ते का ही इंतजाम नहीं है। तो कई बार हम जिनके यहाँ जाते हैं उनकी समस्या भी समझ लेनी चाहिए कि हो सकता है हलवाई के आने में देर हुई हो या जो मैनेजमेंट देख रहे हैं वहाँ कुछ दिक्कत हुई हो। जिन्होंने आपको बुलाया है, जो आप आतिथ्य जो कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि आपके आतिथ्य में कोई कमी रहे, लेकिन थोड़ा समझकर हमें भी चलना है।
0: पर रिश्तेदार जो जाते हैं मुझे लगता है कि वो कहीं घर से जुड़े हुए हैं तो सीधे रसोई घर में जाके वो कमान संभाल सकते हैं,
1: जी
0: क्योंकि जो घर वाले लोग होते हैं उन पर भी बहुत बड़ा बोझ होता है, सब सबकी आवभगत करना और शादी की तैयारियां करना, शॉपिंग, कितना सारा तामझाम होता है और सारे रस्मों रिवाज का ख्याल रखना। तो जो रिश्तेदार जाते हैं उनको सिर्फ बैठ के आलोचना करने की बजाय शामिल हो जाना चाहिए कि लाओ हम एक जिम्मेदारी उठा लेते हैं, खाने पीने का नाश्ते का इंतजाम हम कर लेते हैं कि हम सबके हाथों में नाश्ता पहुंचाएंगे, तो कितना अच्छा लगता है।
1: और इसके बाद जब शादी ब्याह के बाद सारे मेहमान चले जाएंगे तो पूरा जो पसरा हुआ घर है या जितने भी चीज़ें फैली हुई हैं उनको समेटते समेटते भी उनको 1 हफ्ता 10 दिन लग जाता है। कई बार तो जो घर के लोग होते हैं उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है।
0: अमूमन ऐसा होता है। अब
1: चलिए फिलहाल हम एक आनंद की बात कर रहे हैं, शादी ब्याह के मजे की बात चल रही है, तो गाने सुन लें।
0: सुनते हैं।

0: भाई ममता जी शादी ब्याह की बात चल रही थी और एक कमेंट में देखिए क्या लिखा गया है, सालों से दूर रहे कजिन्स, चाचा, ताऊ, मौसा, मौसी एक छत के नीचे आ जाते हैं, जिससे बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। ढोल, नगाड़े, संगीत, हंसी मजाक के बीच लोग अपनी रोज़मर्रा की चिंताओं को बिल्कुल भूल जाते हैं। नई पीढ़ी का परिवार के सदस्यों से यानी कि बच्चों और बहुओं के साथ पूरे कुनबे से मिलना हो जाता है, अपनी संस्कृति को समझने का मौका मिलता है। दुख में भले ही लोग दूरी बना लें, लेकिन शादी की खुशी हर किसी की कड़वाहट को भुलाकर गले मिलने का अवसर देती है।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारी बातें कॉमन है, कई श्रोताओं ने लिखी तो वो एडिट करते हुए मैं आगे पढ़ रही हूँ। लिखा है कि इस शादी वाले घर में सभी व्यस्त होते हैं शादी, और उसी व्यस्तता में अपने चचेरे, ममेरे, फुफेरे, भाई बहन, बुआ, चाचा, मामा का परिवार सभी से मिलना जुलना होता है और सबसे मज़ा आता है। संगत में पत्तल में बैठ कर खाना खाना और एक दूसरे की खिंचाई करना और रात में एक रूम में सभी मिलकर गीत गवाई, आधी रात तक गप्पे लड़ाना, फलाने की बेटी और फलाने की बहू और तुम्हारी वो सहेली और तुम्हारा वो दोस्त, आज इस विषय प्रसंग ने परिवार में हुई कितनी शादियों की यादें ताज़ा कर दी।
0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि शादी ब्याह के रंग बिरंगे समारोह केवल उत्सव नहीं होते, बल्कि रिश्तों की डोर को मजबूत करने वाले ऐसे अवसर होते हैं जो हम शादी में जाते ही इसलिए हैं कि सारे रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाए। शादी एक ऐसा माहौल भी होता है जहां पर अपनापन दिखाई देता है। हंसी मजाक में साथ बैठकर भोजन करने का आनंद ही होता है। मेहंदी लगवाना, ढोलक की थापर, बन्ना बन्नी के संगीत की महफिल रिश्तों को मजबूत बना देती है। तो कई बार समारोहों में नई पीढ़ी का परिचय भी अन्य सदस्यों से हो जाता है, जिससे पारिवारिक जुड़ाव बना रहता है।

0: में फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर सबने इतने फोटो वीडियो शेयर किए कि सब बोलने लगे, आजकल तो आपका परिवार फेसबुक पर छाया हुआ है।
1: इसी तरह से आज ये विषय ऐसा है कि इसके कमेंट भी बहुत सारे छाए हुए हैं। हमने कोशिश की हम बहुत सारे संदेशों को शामिल कर सकें, लेकिन जिनके नहीं हो सके उनसे माफी मांगते हुए अब सुन लेते हैं ये गीत।

0: भुलाना, हमें ना भुलाना। और बहुत सारे रिश्तेदार भी ये बात कहते हैं, जब शादी विवाह के रंग बिरंगे समारोह केवल उत्सव नहीं होते, ये हमारी एक सखी ने लिख भेजा है, बल्कि रिश्तों की डोर को मजबूत करने वाले ऐसे अवसर होते हैं जहाँ जाने पर सारे रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाती है। और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह की बातें लिखी हैं।
1: और अब हम बात करते हैं कि अगर आपने घर में कुछ छोटी सी बगिया बनाई है और उस पौधों पर कीट लग जाते हैं तो उन्हें बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। इस पर हमारे श्रोता ने बड़े अच्छे उपाय बताए हैं कि बारिश के मौसम में ये होता ही है। इसके लिए कुछ उपाय इस तरह से हैं कि नीम के तेल की 3-4 बूंदें में 3-4 बूंदें शैम्पू की भी डाल लें और अब इसे पानी में घुल जाए इस तरह से इसका घोल बना लें और ये मिक्सर शाम के समय पूरे पौधों पर हर तरफ से स्प्रे कर दीजिए। खासतौर पर पत्तों के नीचे वाले हिस्से पर करना है क्योंकि कीट और अंडे वहीं पर ज़्यादा पनपते हैं। और अगर नीम का तेल ना मिले तो हल्दी के पानी को भी मिलाकर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जली हुई लकड़ी की जो राख होती है उसे अगर पत्तों पर छिड़का जाए तो उससे भी कीड़े नहीं आते हैं। नीम के हरे पत्तों को चलाकर उसका धुआं करने से भी कीड़ों से बचाव हो जाता है। बाजार में या ऑनलाइन इस तरह की गम कीबोर्ड मिलते हैं, 2-4 वो कई किसी जगह पर टांग देने से कीड़े उस पर चिपक जाते हैं, लेकिन कई लोग कीट को मारना नहीं चाहते तो वो इस उपाय को ना करें।
0: और लहसुन अदरक और हरी मिर्च का घोल बना ले, मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का घोल बनाकर उसे छानकर जैविक कीटनाशक छिड़काव कर सकते हैं। ये प्राकृतिक रूप से कीटों को दूर रखता है और पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। और समय पर पौधों की सिंचाई करें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा पानी न दें, उनमें संतुलित खाद का प्रयोग करें ताकि पौधे स्वस्थ रहें।
1: और अगर पौधे बहुत छोटे हैं तो उनके पीछे छुपे हुए जो कीड़े और अंडे होते हैं उनको हाथ से ही हटा देना चाहिए, ऐसा एक कमेंट में लिखा गया है। और भौतिक बाधा कीड़ों तक पहुंचने से रोकने के लिए महीन जाली का उपयोग किया जाता है। चिपचिपे जाल, पीले रंग के चिपचिपे पौधे
0: पीली स्टिकी ट्रैप लगाएं, हाँ। मेरे ख्याल से ये कहना चाहते हैं ताकि वो जैसे मक्खी है, मधुमक्खी है, तो जो उड़ने वाले कीट को आकर्षित करने के लिए किया जाता है ताकि वो पकड़ने में मदद मिले।
1: इसके अलावा पेस्टिसाइड का उपयोग भी कर सकते हैं या कीटनाशक जिसे हम कहते हैं। ये हमारे श्रोताओं ने हम तक सलाह पहुँचाई है। और हम अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस की अगर बात करें ममता जी, तो 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी और पहला अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून 2011 को मनाया गया था। दुनिया का लगभग 80-90% जो भी व्यापार होता है वो समुद्र के रास्ते से ही होता है। नाविक बहुत लंबे समय तक अपने परिवारों से दूर रहकर बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं और जो सप्लाई चेन है जिसे हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला कहते हैं वो सुचारू रूप से चलती रहे, इसमें इन नाविकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और हमारे दैनिक जीवन में जितनी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, खासतौर पर जो भी वस्तुएँ हैं, भोजन है, ईंधन है, वो सब हमें इन्हीं समुद्री रास्तों से नाविकों के द्वारा पहुँचाया जाता है।
0: बिल्कुल, और समुद्र में तेल की खोज की जाती है, वो उनमें भी इनकी अहम भूमिका होती है। और कई बार समुद्र में जब तूफान आता है, सीरफ जिसे कहते हैं, तो कई नाविक दूर दूर तक समुद्र के बीचों बीच चले जाते हैं तो उनकी जान को भी बहुत खतरा होता है। वो मुसीबत से लड़ते हुए कई बार घर वालों को पता नहीं चलता है, कोई नेटवर्क का नेटवर्क नहीं होता है, मोबाइल फोन वहाँ तक नहीं पहुँचता है, तो उस समय घर वालों की चिंता देखते ही बनती है। 3-3, 4-4 दिन, कई बार महीनों तक वो तूफान में फंसे रहते हैं, लेकिन जब वो घर लौट आते हैं तो घर वालों की चिंता खत्म होती है।
1: बिल्कुल, इसीलिए उनके क्या अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा किस तरह हो, उनका कल किस तरह से बेहतर किया जाए, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस तरह के जो भी खास दिन हैं वो आयोजित किए जाते हैं। और इस दिन का उद्देश्य भी यही है कि नाविकों के योगदान के लिए उन्हें समाज में सम्मान और आभार व्यक्त करने के लिए और उद्योग समुद्री उद्योग को बेहतर हो सके इसे बढ़ावा देने के लिए ये दिन हम मना रहे हैं।
0: और अब सुनते हैं प्रोग्राम का ये आखिरी गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम जिसमें आप श्रोता कॉल के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं और अपने विचार रखते हैं। आज भी कुछ ऐसे ही विचार आप श्रोताओं के द्वारा विविध भारती को लेकर, विविध भारती के कार्यक्रमों को लेकर। तो सुनते हैं आज का हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती
1: जी। नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम है जी कल्लू मनियार, चिड़ी वाला।
0: कल्लू जी कहाँ से?

0: बोल रहे हैं?
1: रामपुर मनियारा और जी जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश।
0: अच्छी बात है, अपने बारे में बताइए, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया, शुक्र है मालिक का, आपकी दुआएं हैं। मेरा चूड़ी का काम है, मैं चूड़ी जो है साइकिल पर ले जाता हूँ।
0: अच्छा, साइकिल पर चूड़ियां लगा के आप बेचने जाते हैं?
1: जी हाँ, गाँव में जो रामपुर के चारों तरफ गाँव है ना, उनमें जाता हूँ।
0: तो कैसे बांधते हैं चूड़ियों को साइकिल पे, गिरने का डर नहीं रहता है, चूड़ियां टूट जाएंगी तो?
1: अजी बांध के ले जाता हूँ मैं चूड़ी को बहुत अच्छी तरीके से।
0: अच्छा, फिर घर घर फेरी लगाते हैं?
1: अभी फिर मैं गांव में जाता हूँ, फिर बच्चे खुद ही बता दें, कल्लू ताऊ जी आ रहे हैं, चूड़ी पहन लो। अच्छा। तो घर वाले बुला ले रहे हैं फिर।
0: अरे वाह, यानी आप बहुत फेमस हैं कल्लू ताऊ जी के नाम से ना?
1: जी।
0: अच्छी बात है।
1: चूड़ी बेचता हूँ कांच की।
0: कांच की चूड़ियाँ बेचते हैं, तो महिलाएं किस तरह की चूड़ियाँ ज्यादा पसंद करती, कौन सा रंग ज्यादा लेती हैं?
1: मैरून रंग ज्यादा पसंद करती हैं जी।
0: मैरून रंग पसंद करती हैं, चमकदार?
1: हाँ जी, मैरून रंग ज्यादा पसंद करती हैं, और रंग भी तो काफी हैं वैसे, बाकी ज्यादातर मैरून चलता है।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: और कांच की चूड़ी है, शुभ मानते हैं इसको, कांच को?
0: बिल्कुल, हमारे यहाँ सुहाग का प्रतीक मानते हैं चूड़ियों को, कांच की चूड़ियों को पहना जाता है।
1: जब मैं चूड़ी पहना देता हूँ तो नुचकारती है फिर चूड़ी, फेंटा नुचकारती है मेरा औरतें, ये सुहाग की चीज है ना
0: जी। तो एक चूड़ी ज्यादा देते हैं आप?
1: हाँ बिल्कुल, दो देता हूँ जी मैं तो।
0: अच्छा, दो दे देते हैं आप?
1: दो जो देता हूँ, जोड़ा ही भगवान तुम्हारा बनाओ रखे, जोड़ा ही मैं दे रहा।
0: अरे वाह, चलिए कल्लू जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बताइए अपनी पसंद का गाना।
1: फिल्म का नाम है जी आपकी परछाइयाँ, और आवाज है रफी की, गाने के बोले ये है तमन्ना तेरे घर के सामने।
0: बहुत सुंदर, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ, दुकान पे बैठा हूँ, आपके नंबर मिला रहा था।
0: अच्छा, क्या दुकान है आपकी, किस तरह की?
1: किराने की दुकान है मैम।
0: अच्छा, सभी सामान रखते हैं?
1: जी मैम।
0: तो सुबह खुल जाती होगी कितने बजे, 8 बजे या 10 बजे?
1: 7 बजे खुल जाती है, रात के 10 बजे तक चलती है।
0: तो लंच में घर जाते होंगे या खाना साथ लेके आते हैं?
1: नहीं मैम, मैं दुकान घर पे ही है और घर पे ही बैठा रहता हूँ, घर पे ही रेडियो है, विविध भारती का साथ है।
0: अरे वाह, फिर तो आपके मजे हैं कि जब हुआ एक बार घर के अंदर चले गए, खाना वाना खाया, पानी वानी पी, चाय वाय पी और आ गए, है ना?
1: जी
0: मतलब घर के अंदर ही है तो और भी आराम हो गया है, घर के अन्य लोग भी
1: जी
0: आकर दुकान को संभाल लेते होंगे।
1: जी जी और आने लोग आते हैं और विविध भारती को सुनते हैं और खासकर हेलो फरमाइश सुनते हैं तो बहुत आनंद आता है।
0: आपकी दुकान पे आके सुनते हैं श्रोता?
1: जी
0: तो उन्हें बताइए कि मोबाइल पे न्यूज ऑन AIR ऐप जो है डाउनलोड कर ले और सुने।
1: जी मोबाइल पे सुनते हैं, पर दुकान से ग्राहक आते हैं भी सुन के जाते हैं।
0: अच्छा लगता है हम लोगों को कि हमारे श्रोता इतनी शिद्दत के साथ हमें सुनते हैं। कैसा लगता है आप सबको हेलो फरमाइश कार्यक्रम?
1: अच्छा लगता है,
0: क्या अच्छा लगता है इसमें?
1: दूसरों को श्रोताओं को मौका मिल जाता है बातचीत करने का और गाने अच्छे लगते हैं सबसे बड़ी बात।
0: बिल्कुल सही कहा, बातचीत का मौका मिलता है और आपकी पसंद के गाने भी इसमें आते हैं, है ना?
1: जी
0: तो चलिए आज आपकी पसंद का गाना बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज मजबूर कलम का गीत सुनना चाहता हूँ, रिम जिम बरसता जी बाहर पानी अंदर जी आग लगी है, मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में गीत है।
0: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये झमाझम गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार मंदाकिनी जी।
0: नमस्कार। अरे आपको पता है मंदाकिनी है इधर?
1: जी मैम आपकी आवाज इसे पहचान जाते हैं।
0: अरे तो हमारे कार्यक्रम बहुत शिद्दत से सुनते हैं, गहराई से सुनते हैं ना।
1: जी मैम।
0: नाम बताइए अपना।
1: जी मैम मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, जिला महोबा उत्तर प्रदेश से।
0: कैसे हैं सुनील जी?
1: बहुत बढ़िया है मैम,
0: अच्छा
1: आप कैसे हो?
0: मैं भी अच्छी हूँ। अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप सुनील जी?
1: जी मैम अभी तो हम भट्टों में काम करते थे राजस्थान में।
0: अच्छा, राजस्थान में कहाँ?
1: जी भरतपुर में करते थे मैम।
0: और अब क्या कर रहे हैं इन दिनों?
1: जी अभी मैम छुट्टी हुई तो अभी घर आए, 2-4 दिन हुए घर आए हुए अभी।
0: अच्छा, तो भरतपुर में कैसा लगता है आपको? कैसा माहौल है वहाँ का?
1: जी मैम बढ़िया माहौल है, अच्छा लगता है वहाँ पे रहना, काफी साल हो गए अभी जाते जाते।
0: तो आपका परिवार कहाँ रहता है, महुआ में?
1: जी मैम।
0: तो आते जाते रहते होंगे ना, दिक्कत तो होती होगी अप डाउन करने
1: जी
0: से।
1: मैम दिक्कत तो होती है, अब ऐसा है कि 8 महीनों के लिए चले जाते हैं तो 8 महीना वहाँ पे लगातार काम करना होता है भट्टों पे, तो 8 महीने। अब फिर आपके प्रोग्राम तो हम 1 बजे रात से ही सुनना चालू कर देते थे। जी
0: अच्छा, आपको टाइम मिल जाता
1: आप
0: था?
1: टाइम तो इतना रहता है कि अब हमको 1 बजे रात को उठना पड़ता था काम के लिए, तो आपका प्रोग्राम 1 बजे रात से ही चालू हो जाता, फिर सुबह 11 बजे तक, फिर यहाँ पर 4 बजे से आपका प्रोग्राम चालू रहता था करीब 10 बजे तक रात को।
0: क्या बात है ना, प्यार है आपको
1: जी
0: विविध भारती से कि रात को 1 बजे से
1: जी
0: कार्यक्रम सुनना शुरू कर देते हैं।
1: जी मैम आपका ये सखी सहेली का टेलीकास्ट दोबारा होता है ना 3 बजे रात को,
0: हाँ बिल्कुल,
1: तो रात में सुनना बहुत अच्छा लगता है आपका सखी सहेली कार्यक्रम।
0: अच्छी बात है आप लोग कार्यक्रम सुनते हैं। लेकिन ये जो काम आप करते हैं भट्टों का, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है क्या?
1: जी मैम ये तो मुश्किल काम है, इसमें मेहनत बहुत है।
0: बहुत मेहनत है इसमें तो, और आपको बिल्कुल एक तरह से अपने आप को खपाए रखना पड़ता होगा,
1: जी मैम उसमें मेहनत तो काम ज्यादा पड़ता है।
0: और उसमें से भी आप समय
1: हाँ
0: निकाल कर विविध भारती सुनते हैं और खुश रहते हैं, बहुत अच्छी बात
1: नहीं
0: है।
1: वो तो वैसा है कि काम चलता रहता है, विविध भारती भी संग में चलता रहता है, उसके बगैर तो मन ही नहीं लगता हमारा। जो सुबह हुआ कि हम सीधा विविध भारती चालू कर देते हैं पहले,
0: अच्छी बात है।
1: सभी लोग सुनते हैं, फिर हम तो ऐसा है कि रात में बिजली रहती, काम बिजली में करना होता है रात को, तो एम्पलीफायर में लगा के रखते हैं, जब बिजली चली जाती है तो फिर ब्लूटूथ स्पीकर में लगा के रखते हैं।
0: इतनी व्यवस्था कर रखी है आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। हमारे ऐसे जो दीवानगी वाले श्रोता हैं, दीवानगी की हद तक विविध भारती को प्रेम करते हैं, उनसे बात करके हमें अच्छा लगता है। बताइए सुनील जी, आज कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: हेमलता जी का गाया गुताना है, भीगा भीगा मौसम आया बरसे घटा घनघोर।
0: बहुत सुंदर, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश
0: हेलो,
1: मंदाकिनी दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मंदाकिनी दीदी, मैं बोल रहा हूँ राम बाबू मालवीय, कोलार रोड भोपाल से।
0: स्वागत है आपका राम बाबू जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ दीदी, आप सुनाओ, आप कैसे हो और हमारे विविध भारती की संपूर्ण टीम कैसी, क्या है?
0: सब अच्छे हैं, बताइए अपने बारे में राम बाबू जी।
1: अपनी ड्राई क्लीनिंग का काम है, लॉन्ड्री का, और वो काम वाम करते हैं और अपने परिवार के साथ में जो भी है, जो दाल रोटी के लिए कमाते खाते हैं और बढ़िया आनंद मंगल से जितना परमात्मा ऊपर वाले देते हैं उसी में खुश रहते हैं और विविध भारती सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी इंसान को संतुष्ट तो रहना ही होगा एक हद तक, है ना? अगर
1: जी
0: हमारी
1: जी जी बिल्कुल
0: महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि हम असंतुष्ट रहेंगे तो फिर जिंदगी तो खराब ही होनी है, हमारा वर्तमान खराब ही
1: जी
0: होना
1: बिल्कुल।
0: है। बहुत अच्छा लगा
1: और
0: आपसे बात करके, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: आज गाना सुनना चाहेंगे, फिल्म का नाम है पापा कहते हैं, उसमें गाना है उसकी आवाज में, घर से निकलते ही कुछ दूर
0: चलते
1: चलते
0: ही बहुत सुंदर गाना सुनना चाहते हैं
1: ही।
0: आप?
1: वैसे दीदी, आपके यहाँ के प्रोग्राम जो आपने नए शुरू किए वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमने चिट्ठियां भी भेजी है मन चाहे गीत में।
0: अच्छा चलिए सुने आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: संदीप कुमार मक्कड़, पींगा वाला चौक, गोरैया, पंजाब डिस्ट्रिक्ट जलंधर से आपका निमिष होता।
0: जी स्वागत है आपका संदीप जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं, आपका साथ है तो अच्छा, ना हो तो
0: और भी अच्छा।
1: जी हाँ जी हाँ,
0: बताइए क्या करते हैं संदीप जी आप?
1: मेरा वैसे फोटो फ्रेम और लेमिनेशन का काम है, इसके अलावा मैं गाता भी हूँ और लिखता भी हूँ।
0: अरे क्या गाते हैं और क्या लिखते हैं बताइए।
1: मैंने अपना हिंदी सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया है, मैं लिखता भी हूँ, हिंदी सॉन्ग लिखता हूँ और मैं सूफी सॉन्ग भी लिखता हूँ। गाने के कुछ बोल हैं वो सुनाना चाहूंगा।
0: गा के सुनाइए।
1: चलती ट्रेन में चलती चाय पी ले पी ले, तू मेरा हिंदू तो मुस्लिम भाई, पी ले आएगी सुस्ती मड़ेगी सुस्ती, एक प्याली पी ले भाई पी ले पी ले, ओ सब है मुसाफिर दिल के अच्छे, सब है मुसाफिर दिल के अच्छे, कान कहाँ पर उतरेगा भाई पी ले, ओ चाहे मेरी गरम मसाला, पिएगा कोई किस्मत वाला, कोरा हो या

0: बिल्कुल काला, खुल जाएगा दिल का ताला, कहता रहेगा कहने वाला, चलता रहेगा चलने वाला, सुन दे भाई सुन दे लाला, आगे मेरे फौजी भाई, तेरे पे कुर्बान में भाई, तुम हो सबकी जान हो भाई, बैठो तुम भी चाय है आई, बैठो तुम भी चाय है आई। ये है मेरे गाने के
1: क्या
0: बोल,
1: बात
0: और अंतरा
1: है।
0: सुनाया।
1: अच्छा, जो
0: जी हाँ जी
1: लिखते
0: हाँ,
1: हैं कैसी सूफियाना कविताएं लिखते हैं?
0: सूफियाना, जैसे मैं सूफियाना भी सुनाना चाहूंगा। सब सियाने मिलदे ने, सब सियाने मिलदे ने, ते कमला कोई कोई, ओ बोलण वाले मिलदे ने चुप कोई कोई, तांदा मेला मंदा मेला, तांदा मेला मंदा मेला, ते समझे कोई कोई, ओ सब सियाने मिलदे ने ते कमला कोई कोई।
1: बहुत अच्छा लगा संदीप जी, अपने शौक को आगे बढ़ाइए, लिखते रहिए और इसी तरह गाते रहिए। अगली
0: जी
1: मुलाकात
0: हाँ
1: में
0: जी हाँ
1: फिर
0: जी हाँ
1: आपसे
0: जी
1: कोई
0: हाँ।
1: नया गीत सुनेंगे, बताइए।
0: तो मेरी 30 तारीख को मैरिज एनिवर्सरी भी है, मेरी वाइफ ज्योति है, उसके लिए डेडिकेशन है, उनको सुनाना चाहूंगा। फिल्म है बीवियों तो ऐसी, गाना है फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: सकते हैं। इंतजार है, नमस्कार।
1: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
0: जी मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ।
1: जी स्वागत है आपका, बहुत पहले आपसे बात हुई भी है।
0: जी जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना, मैं आपका वही जाना पहचाना श्रोता हूँ।
1: अच्छा, आपका नाम है शारदा
0: जी,
1: तो आपका ये नाम किसने रखा?
0: मेरे पिताजी ने रखा है, और मैं बसंत पंचमी के आसपास माँ शारदा की कृपा से प्राप्त हुआ था माता पिता को। तो मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, न छल न कपट न प्रमाद हूँ, न छल न कपट न प्रमाद हूँ, मैहर की देवी माँ शारदा का प्रसाद हूँ।
1: बिल्कुल, वही हमने जानना चाहा कि ये जो नाम है महिलाओं का ज्यादा होता है शारदा, पुरुषों में बहुत कम ऐसे नाम सुनाई देते हैं, तो जानने की हमारी इच्छा हुई कि शारदा नाम क्यों रखा गया, कैसे रखा गया, तो आपने बता
0: जी,
1: दिया
0: जी,
1: है।
0: जी, मेरे बहुत लंबे लंबे बाल भी हुआ करते थे लड़कियों जैसे, और मैं कॉलेज तक मैं यूं ही लंबे बाल रखा करता था। गोरा चिट्टा रंग था मेरा और भोला सा चेहरा मासूम सा, तो बहुत से लड़के मुझे को लड़की समझ के दोस्ती करते थे कि ये लड़की जरूर होगी, लड़के की भेष रहती है।
1: वाह, बहुत अच्छा लगा। देखिए एक नाम के पीछे कितनी चीजें छुपी होती है ना, और अब कैसा लगता है आपको, अब लोग जानते हैं कि भाई ये तो शारदा प्रसाद जी हैं, शारदा कुमारी नहीं है।
0: सब लोग जानने लगे हैं शारदा प्रसाद प्रजापति हैं, और अब तो दाढ़ी मूछे सब हो गई हैं, तो लोग बाग जानते हैं।
1: क्या करते हैं शारदा जी?
0: मैं घर पर रहता हूँ और बच्चों के साथ में आनंद पूर्वक आकाशवाणी और विविध भारती से जुड़ा रहता हूँ। रेडियो सुनना ही मेरा शौक है, दीवानगी है, जुनून है, और जब आकाशवाणी विविध भारती में हमारा फोन लगता है सुरीली हर दिल की धड़कन, तो बस हृदय प्रफुल्लित गदगद हो जाता है। इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता होती है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, बस ये तो महसूस करने वाली बातचीत होती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और हम भी महसूस करते हैं अपने श्रोताओं की दीवानगी को। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
0: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है विरासत है, कुमार सानू और चित्रा जी ने गीत गाया है, जावेद साहब ने लिखा है और अनु मलिक का संगीत है। गीत के बोल हैं, पायले चुनमुन चुनमुन झांझरे रुंझुन रुंझुन, कितना मधुर है ये मिलन।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ जी दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मंदाग्नि जी बोल रही है?
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: जी, गजराज ज्योति बात कर रहा था, रेलाई राजगढ़ ब्यावरा मध्य प्रदेश से।
0: अरे स्वागत है आपका गजराज जी, कैसे हैं?
1: दीदी बहुत अच्छे हैं, मुझे आपकी जो आवाज है ना बहुत प्रिय लगती है।
0: क्या बात है, ये तो आप लोगों
1: हाँ,
0: का प्यार
1: और
0: और
1: शायद मैंने
0: स्नेह।
1: दीदी आपको बीकानेर से भी सुना है।
0: बिल्कुल सुना होगा, आप लोग तो वैसे भी दीवाने हैं आकाशवाणी के, रेडियो के, और हमारे श्रोताओं की वजह से ही। तो देखिए ना, आज आकाशवाणी कितना आगे निकल गया है।
1: जी,
0: बताइए गजराज जी, आप क्या करते हैं, अपने बारे में थोड़ा बताइए।
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ, और इसके अलावा जो समरसिबल रहते हैं खेतों के लिए पंप, उनकी रिपेयरिंग भी होती है हमारे यहाँ।
0: आपके पास मतलब शॉप है?
1: जी
0: अच्छा, आप करते हैं?
1: जी
0: अरे वाह, क्या बात है। तो फिर एक पन दो काज हो गया, खेत भी संभाल लिया और ये काम भी कर लिया।
1: और साथ साथ रेडियो तो हमको मिलता ही रहता है, विविध भारती तो।
0: वो तो आपकी खुराक में शामिल है ना, हो सकता है एक रोटी कम खा लेते
1: जी
0: होंगे, लेकिन विविध भारती सुनना नहीं भूलते आप श्रोता लोग।
1: नहीं भूलते हैं। जी,
0: बहुत अच्छा लगता है हमें। तो गजराज जी, आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: सौदागर मूवी का है, इमली का बूटा बेरी का पेड़।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत है, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मंदाकिनी जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं बढ़ापुर बिजनौर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं
0: बोलिए, नाम बताइए।
1: नाम एम ताहिर है, यानी मोहम्मद ताहिर।
0: मोहम्मद ताहिर साहब, स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: शुक्रिया मैम, बहुत बढ़िया, आपकी दुआएं हैं।
0: देखिए, ऐसा है कि आप अच्छे हैं तो अपने अच्छे कार्यों से अच्छे हैं आप, और ईश्वर की आप पर जो है अति कृपा है, अल्लाह की है ना।
1: जी जी, सब ऊपर वाले के कर्म से सब सही है।
0: क्या करते हैं ताहिर जी आप?
1: मैडम जी, मैं एक शॉपकीपर हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है।
0: अच्छा, किस विषय पर?
1: जी मैंने बाई इकोनॉमिक्स किया था।
0: तो आपने अपनी दुकान संभाल रखी है या अपने पिता की?
1: जी पापा बैठते थे, उसके बाद मैं बैठता हूँ, बस अब उन्होंने फिलहाल रेस्ट के लिए।
0: किस तरह की दुकान है
1: ये? लेडीज की है, आपसे ही मुतालिक सारे सामान है इसमें, जैसे गिफ्ट होते हैं, बैंगल्स होती है और कॉस्मेटिक्स वगैरह।
0: तो आपने एमए इकोनॉमिक्स में किया, तो आगे कुछ और एग्जाम्स वगैरह नहीं दिए? क्या आपका उद्देश्य यही था कि पिता के व्यवसाय को संभालना है?
1: बात ये थी कि उसके लिए कहीं जाना पड़ता और पापा जी को मुझे अकेला कहीं भेजना मंजूर नहीं था।
0: अच्छा, हाँ, ये हमारे माता पिता का जो अति मोह है संतान के प्रति ना, उसमें वैसे अच्छी बात है कि हम ताउम्र माता पिता का साथ दे पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छूट भी जाता है जिंदगी में। हालांकि कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, आप खुश हैं तो सब अच्छा है।
1: बहुत बढ़िया जी।
0: तो बताइए, गाना कौन सा सुनेंगे?
1: फिल्म कन्यादान से मेरी जिंदगी में आते, रफी साहब की
0: आवाज। क्या बात है, तो कुछ और बात होती।
1: जी जी,
0: कोई खास मकसद इस गाने को सुनने का?
1: नहीं मैम, अल्फाज सही है, आवाज तो कोई कहने के दो राय है ही नहीं इसमें।
0: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

सूरत छुपा सकता नहीं कितनी दिल

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो मैम, नमस्कार
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: जी। मैं जलंधर सिटी पंजाब से सोनू बात कर रहा हूँ जी।
0: सोनू जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं जी। आप मीनाक्षी जोशी जी बात कर रहे हैं?
0: हाँ जी
1: हाँ जी मैडम जी, क्या जी, नमस्कार आपको
0: सुनते
1: जी।
0: हैं हमारे
1: जी
0: कार्यक्रम।
1: मैं तो रेगुलर आपसे जुड़ता रहता हूँ फेसबुक के माध्यम से। हाँ
0: क्या बात है।
1: जी, बस क्या होता है ना, कभी कभी इबारत कुछ समझ में नहीं आती, फिर आप दो क्वेश्चन भी पूछते हैं।
0: आप जवाब देते हैं उसका?
1: हाँ जी, मैं जरूर पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जवाब दूँ आपको और मेरा नाम जुड़ा रहे अभी भारती के साथ में।
0: तो सवाल तो बिल्कुल सीधे सादे होते हैं और एक कार्यक्रम को थोड़ा सा लाइवनेस बनाने के लिए करना पड़ता है, नहीं तो कार्यक्रम
1: देखिए,
0: बिल्कुल उबाऊ हो जाएगा।
1: और विविध भारती का प्रोग्राम, लेकिन जब से स्टार्ट हुआ है विविध भारती का, तब से मेरे ग्रैंडफादर, फादर मेरे और मैं, वो कभी भी बोझ महसूस नहीं हुई। इतने बढ़िया प्रोग्राम होते हैं विविध भारती के।
0: मतलब आपके दादा की विरासत को आपके पापा ने संभाला और अब आप संभाल रहे हैं, है ना? जैसे हम
1: हाँ जी
0: उनके
1: हाँ जी
0: कामों को संभालते हैं कि भाई हमारे
1: हाँ
0: दादा
1: जी
0: की ये बिजनेस था और उनके बाद पिता ने और पुत्र ने संभाला, तो विविध भारती सुनने की भी आप लोगों ने ये एक ले रखा है प्रण कि हमारे दादाजी की सुनने की आदत को हम भी सुनने में डाल लेंगे।
1: उन्होंने कहा था ना, चैनल वो सुना जाए जिसमें अच्छी ज्ञानवर्धक बातें हों। तो रेडियो ऐसा माध्यम है कि कभी इसमें गलत जानकारी मिलती नहीं, सही मिलती है हमेशा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और आप लोग इतने प्यार और ईमानदारी से सुनते हैं, सबसे बड़ी बात ये हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग कार्यक्रम
1: जी
0: पेश
1: जी
0: करते हैं और आप लोग इतनी संजीदगी के साथ अपनी बात कहते हैं।
1: जी मैडम जी, देखिए आप जितने भी वीडियो पोस्ट करते हैं ना फेसबुक पर, वो सभी मैं देखता रहता हूँ और सभी मैं लाइक भी करता हूँ। जो आपने
0: हमारे
1: 90 साल का जो जश्न मनाया वो भी मैंने देखा।
0: चलिए तो आप बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको।
1: मैंने गाना सुना है जी दोस्ताना मूवी का, किशोर दा और आशा जी की आवाज में, बहुत खूबसूरत गीत है। दिल लगी ने
0: दी
1: दी
0: हवा,
1: हवा
0: थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई।
1: और आग जल पड़ी।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मैं संतोष जी हाड़ा बोल रहा हूँ, ग्राम चिड़ा कंजर डेरा देवास जिले से।
0: स्वागत है संतोष जी, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया है, ट्यूट हो गया हमको।
0: अरे
1: सुनते रहते हैं आपका प्रोग्राम, बचपन से सुन रहे हैं जी। आज 44 साल की उम्र हो गई हमारी, और रेडियो समय से सुन रहे, जो सेल वाले शुरू स्टार्ट हुए थे।
0: कैसा लगता है रेडियो सुनने से, जिंदगी संवर गई आपकी?
1: रेडियो दीदी, हम है ना, हमारे फार्म हाउस पे मस्त सुना करते हैं, मजदूर काम किया करते हैं, और आपकी वीर भारती पूरी टीम को हम बधाई देना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे लिए इतने सुंदर सुंदर कार्यक्रम लाते हो, फोन इन कार्यक्रम लाते हो, और गाने पुराने सदाबहार में जो सुनाते हो, बहुत बहुत अच्छा लगता है।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा, आप इतने गहराई से हमारे कार्यक्रम सुनते हैं और उनके बारे में अपने विचार भी रखते हैं। वैसे आप खुद क्या करते हैं संतोष जी?
1: जी खेती गृहस्थी का काम है, खेती गृहस्थी का।
0: तो अभी क्या है आपके खेत में?
1: जी अभी खाली पड़ा है, बस वर्षा दीदी का इंतजार है, जैसे पानी गिरता है तो हम सोयाबीन लगाएंगे दीदी।
0: तो सोयाबीन की खेती में कितनी मेहनत मशक्कत हो जाती है, कितना ध्यान रखना पड़ता है?
1: दीदी जो अब जो सोयाबीन की फसल है बिल्कुल बेकार हो चुकी है, सिर्फ ये मेहनत फसल है, जैसे पानी का इंतजार रहता है, खेतों में चारा उगवाता है तो दवाई का इंतजार रहता है, डोरे लगाना पड़ता है, बेलों का समय रहा नहीं, ट्रैक्टरों से लगाते हैं और फिर भी चारा नहीं मरता, फिर डबल दवाई उड़ाते हैं, इल्ली की दवाई उड़ाना पड़ता, बहुत कठिन का काम है ये सोयाबीन पैदा करना। उसके बाद भी फिर मौसम सहयोग नहीं देता है तो फिर बैठक भी बहुत कम होती है हम किसानों को, सोयाबीन की फसल में तो बहुत घाटा है।
0: सही कहा आपने, बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। तो फिर सोयाबीन की फसल को बार बार फिर क्यों बोते हैं, कोई कारण है खास?
1: मेहनत का तो है, फिर भी क्या है, इसमें नुकसान चीज नहीं होती। अभी हम मक्का लगा दें तो जंगली सुअर खा जाते हैं, मूंगफली लगा दें जंगली सुअर खा जाते हैं, रतालू की फसल करें तो वो भी जंगली सुअर खा जाते हैं, उड़द दाल वगैरह पैदा करते हैं तो हिरन खा जाती, हिरन भी बहुत है हमारे इधर।
0: अच्छा, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता होगा आपको, तो ये तो 24 घंटे की निगरानी हो गई।
1: जी ये क्या है, सोयाबीन में निगरानी नहीं रखना पड़ता है, दूसरी जो फसल है इसमें बरोबर निगरानी रखना पड़ता है।
0: तो इसलिए आप सोयाबीन को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देते हैं ना, कि सोयाबीन की फसल लग जाए। अपने गाँव के बारे में बताइए थोड़ा सा, कैसा है आपका गाँव?
1: हमारा गांव बहुत सुंदर है, ऐसे तो हमारे गांव के पोहे और समोसे कचौरी बड़े फेमस है।
0: क्या बात है, पोहे और समोसे?
1: यस,
0: मुंह में पानी आ गया हमारे, देखिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने हम एक नई जानकारी दी है सोयाबीन की खेती के बारे में। तो संतोष जी अब गाना बता दीजिए।
1: गाना है वो प्यार हमारा अमर रहेगा याद करेगा जहां।
0: फिल्म का नाम क्या है?
1: मुद्दत,
0: मोहम्मद अजीज की आवाज
1: जी।
0: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का गीत फिर।

0: आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें, ताकि हम अन्य श्रोताओं को इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर दे सकें। हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222860288, दूसरा नंबर 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, मैं आजकल सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं अपना प्रेम कहीं रख कर भूल गई हूँ। हाँ, मैं अपना प्रेम कहीं रख कर भूल गई हूँ। ढूंढ रही हूँ उसे। दुख का दरवाजा खुला, करुणा के कमरे में झांका, हंसी को हटाकर देखा, सपनों की भी तलाशी ली, कहीं न मिला तो आज ही थाने में जाकर रपट लिखा दी है कि प्रेम के बगैर भला कोई कैसे जी सकता है। हाँ, प्रेम के बगैर भला कोई कैसे जी सकता है एक भी पल।

कहते हैं चखे बिना तो नमक तक की परख पूरी नहीं होती, और मैंने मोहब्बत कर ली, स्वाद चख भी लिया। हाँ, कैसे थे मोहब्बत के वो पल, इश्क की वो गलियां। अब कुछ याद नहीं रखना चाहती मैं, कुछ भी तो याद नहीं रखना चाहती।

तुमसे ही की थी मोहब्बत, हाँ कुछ कुछ याद है मुझे, पर अब मैं भूलने लगी हूं। तुम जो चाहो कहो, मेरे दिल को कुरेदो। तुम जो चाहो कहो, मेरे दिल को कुरेदो। मेरे सीने में गुलाब भर भर के बिखेर दो चाहे। मैं भूल चुकी हूं सब कुछ कि तुम करते थे मुझसे कभी प्यार, चूमते थे मेरी पेशानी को, मेरे हाथों पर करते थे बोसों की अनगिनत बरसात। हाँ भूल चुकी हूँ मैं अब सब, भूल चुकी हूँ मैं अब सब।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बदल चुकी हूं मैं, भुला के तुमको आगे बढ़ चुकी हूं मैं। और प्रेम ही तो सब कुछ नहीं है, हम ये न तो मांस है, न ही कोई पेय, न नींद, न तूफानी बारिश से बचने के लिए छत, नहीं डूबते हुए लोगों के लिए कोई तैरता हुआ सहारा। फिर क्यों करूं मैं मोहब्बत, क्यों याद रखूं तुम्हें मैं, हाँ फिर क्यों तुम्हें याद रखूं मैं।

जीवन में जो आई थी उमंग, पतझड़ में जो आया था वसंत, सर्दियों की वो बहकी बहकी रातें, प्यार की सारी वो गहरी गहरी बातें, वो प्रेम को निभाने का अटल इरादा, हमेशा साथ रहने का वो वादा, सब धीरे धीरे खत्म हो गया। अब तुमने आसानी से कह जो दिया था, भूल जाओ ये सब, और मैं भूल गई हूं सब सब कुछ सब सब कुछ।

जब प्यार खत्म होता है तो दिल में एक खालीपन रह जाता है। निसंदेह तुम्हारे जाने से घर खाली हो गया था और जीवन सूखी बंजर जमीन, पन्ने जिंदगी के खाली रह गए थे। दिल के किसी सुनसान कोने में पीड़ाएं चुपचाप घर कर गई थीं। हाँ, ये सच है, पर अब समय का मरहम उन्हें भर चुका है। हाँ, समय का मरहम उन्हें भर चुका है। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरे साथ रहे ना रहे, मेरा साथ दे ना दे, मैं अब आज़ाद हूँ। अब मैं अपने वश में हूँ। हाँ, अब मैं अपने वश में हूँ, किसी और के नहीं।

FM 101.2 MHz पर श्रोताओ, ये आकाशवाणी खंडवा है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत, नमस्कार। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रौल, नारायणी सिंह रौल, नोमेश सिंह रौल, नेहा और वान्या सिंह रौल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है, दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है सरगुजा मैनपाट से रूबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम थापा। स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया, शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू, नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी। कृष्णा पार्क दिल्ली से असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनूठी गुफाओं के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, वहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे पुरातत्व और मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बोर्रा की गुफाओं पर। आपको शायद ये नाम अनजाना लग रहा होगा, तो आपको बता दें स्थानीय भाषा में इन गुफाओं को बोर्रा गुहलू कहा जाता है। बेशक ये बहुत जाना माना नाम तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहां पर स्थित हैं। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापत्तनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर अनंतगिरी की पहाड़ियों में स्थित हैं। इनकी गहराई 260 मीटर से भी अधिक है। श्रोताओं, माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि इन गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ। श्रोताओं, यहाँ एक नदी है जिसका नाम गोस्थानी है। गोस्थानी नदी की छोटी छोटी जलधाराएं यहाँ की चूना पत्थर से बनी पहाड़ियों पर लाखों वर्षों से बहती रही हैं। इस नदी की धार में एक खास प्रकार का अम्ल या एसिड है जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इसने चट्टानों को खरादना शुरू किया और लाखों वर्षों में एक विशाल गुफा बना दी। सच में प्रकृति का करिश्मा आश्चर्यजनक है। श्रोताओं, इन गुफाओं की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के खरादे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खरादे गए पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियां इतनी अनोखी और वास्तविक हैं कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। है ना बड़ी अद्भुत बात। सच में श्रोताओं, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है, जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई गोर्रा गुफाओं की। आइए अब बात करते हैं आखिर इसकी खोज कैसे हुई। ये जानना भी बहुत जरूरी है। सन 1807 की बात है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने इसकी खोज तब की जब वे चट्टानों पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करने इस क्षेत्र में आए। जब उन्होंने इन गुफाओं में प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित इन अद्भुत आकृतियों को देखा तो प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने विधिवत इन गुफाओं का दस्तावेजीकरण किया और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इन दिनों ये गुफाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन गुफाओं को देखने बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और भूगर्भ शास्त्री आते हैं। श्रोताओं, जब हम प्रकृति के करिश्मे को देखते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आकर्षण सिर्फ चकाचौंध और दिखावे में ही नहीं होता। सच्चा आकर्षण तो वहाँ है जहाँ हम अवलोकन करके ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और विस्मयकारी है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अद्भुत विस्मयकारी आंध्र प्रदेश

0: बोर्रा गुफाओं की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की? प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गिजू भाई बधे का। यह कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद गिजू भाई बधेका के शैक्षिक चिंतन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी देता है। गिजू भाई बधेका जी ने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी बहुचर्चित पुस्तक दीवा स्वप्न के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई है।
1: गुरु भूमि यानी गुरुओं और शिक्षकों की भूमि। भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के बारे में भला कौन नहीं जानता।
2: खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया।
1: यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें कई विलक्षण विभूतियां हुईं, जिनका शैक्षिक चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा।
2: उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजू भाई बधे का।
1: साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतक गिजू भाई बधेका जी के, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे।
2: गिजू भाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के चित्तल नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वो गिजू भाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों के प्रति अविरल स्नेह और गहरी संवेदना थी।
1: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेंत खाना हुआ करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाए।

0: मास्टर जी।
1: प्रणाम। हाँ तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को डेढ़ का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है। याद किया है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है। बिजू, तुम सुनाओ।
2: जी मास्टर जी, मैंने कोशिश
1: कोशिश वोशिश मैं नहीं जानता, खड़े होकर सुनाओ।
2: जी जी, डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन।
1: अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या?
2: जी जी जी, सुनाता हूँ।

0: डेढ़ एकम डेढ़ डेढ़ दूनी।
1: तुम सबके लिए मेरी बेटी ठीक है, इधर इधर आओ सामने।
0: जी
1: कान खोल कर सुन लो तुम सब, यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?
2: गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
3: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
4: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना। तो क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे बच्चे सीखें लेकिन बिना तनाव के, भय मुक्त होकर? इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा, समाज को इस दिशा में कुछ करना ही होगा।
2: गिजू भाई ने 1920 में एक बाल मंदिर यानी विद्यालय की स्थापना की और वकालत छोड़कर पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए। यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेकानेक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने पर बहुत जोर देते थे।
3: उन्होंने बच्चों के इंद्रिय विकास, शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति का अवलोकन, कथा वाचन और खेल आधारित शिक्षा जैसी गतिविधियों पर बल दिया। इस पद्धति से बच्चे हंसते खेलते आनंददायी गतिविधियों में भाग लेते हुए खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते थे।
2: इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिजू भाई स्वयं इन बालकों के साथ रहकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। वो बालकों को ब्रह्म स्वरूप मानते थे, इसलिए अपने द्वारा स्थापित विद्यालयों को उन्होंने बाल मंदिर कहा।
3: सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ।
2: इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मोंटेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पूरी तरह अपनाने का प्रयास किया।
3: एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा। तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था,
5: गिजू भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ? शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा

0: दृढ़ विश्वास है कि उनका ये महान कार्य आगे बढ़ चलेगा।
1: गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते थे, तो गिजू भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूछों वाली माँ भी कहते थे।
2: बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गिजू भाई अक्सर कहा करते थे,
3: शिक्षक बंधुओं, कहानी बच्चों को रटाना नहीं, खूब रस ले लेकर अभिनय करके उन्हें कहानी समझाओ, उनसे प्रेम से बात करो, उन्हें हंसाओ। वो सिर्फ सूचनाओं से अबोध हैं, अज्ञानी नहीं है। यदि बच्चा सप्ताह में 5 दिन शिक्षक के साथ 5 या 6 घंटे बिताता है तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए?
1: अपनी साहित्यिक कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक विधियों को सविस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जीतेश कुमार जी, जिन्होंने गिजू भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जितेश जी नमस्कार।
4: नमस्कार।
1: तो जितेश जी, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण के लिए गिजू भाई द्वारा बताई गई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है
4: जी,
1: तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन कौन सी पद्धतियां हैं।
5: देखिए, वैसे उनकी तो बहुत सारी पद्धतियां हैं
1: जी,
5: लेकिन कुछ खास हैं जिन पे मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूँ। उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं
1: जी,
5: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है
1: जी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है
5: जी? और है, एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
1: युगल और सहभागिता पद्धति
5: जी, इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
1: जी,
5: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है
5: जी। इसके अलावा एक पद्धति और है।
1: हाँ हाँ, बताइए।
5: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
1: प्रश्नोत्तरी पद्धति
5: जी, इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
1: अच्छा।
5: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
1: जी,
5: वो बहुत ही शानदार है।
1: अच्छा
5: जी।
1: तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जीतेश कुमार जी। तो जीतेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
2: साथियों, अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
1: गिजू भाई ने 100 से भी अधिक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है दिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजू भाई की ये एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ।
2: इस पुस्तक में गिजू भाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है, प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, बालकों में बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रटंत शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे।
1: गिजू भाई के अनुसार

0: शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए, जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो, ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।
1: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। चौवन वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो गया।
2: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिजू भाई बधे का, एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, असर नवाज उस्मानी, सुनील लोहिया और परवेज गौहर, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना।
4: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम गिजू भाई बधे का।

आइए अब सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत, जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावनाएं क्या क्या हैं और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखता है।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं।

थोड़ा सा इंतजार। गुनगुनाते रहें और सुनते रहें निमाड़ की सुर।

0: थोड़ा सा इंतजार। गुनगुनाते रहें और सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के, क्षमा करें, इस समय संध्या के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी लीजिए। मैं हाजिर हूँ आपकी दोस्त प्रियंका वाणी। दोस्तों, गुरुवार को हमारा क्रम होता है इंद्रधनुष, और अब इंद्रधनुष तो देखने को मिलेंगे ही, क्योंकि मानसून का आगमन जो हो चुका है। बारिश की ठंडी ठंडी बूंदों ने गर्मी से राहत देकर माहौल सुकून से भरा और खुशनुमा बना दिया है, और हर तरफ हरियाली छाई है। दोस्तों, चलेंगे हमारे इस रंगों से सजे क्रम पर, लेकिन आइए उससे पहले पूछ लेते हैं आपसे आज के सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे देश के नए सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? और आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के मांडू को किस उत्पाद के लिए GI टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे कार्यक्रम के अंत में। तब तक बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए युववाणी। दोस्तों, आज का दिन हर क्रिकेट फैन को याद होगा। भारतीय क्रिकेट इतिहास के पन्नों में ये दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज है, क्योंकि आज ही के दिन 36 साल पहले यानी 25 जून 1983 को भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। इस ट्रॉफी ने भारतीय क्रिकेट की तस्वीर पूरी तरह बदल दी। इंग्लैंड की मेजबानी में साल 1983 में खेले गए वर्ल्ड कप के लिए जब भारतीय टीम रवाना हुई, तब उसे कमजोर माना गया, लेकिन कपिल देव की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने धीरे धीरे अपना अभियान आगे बढ़ाया और सेमीफाइनल में इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में भारत के सामने दो बार की चैंपियन वेस्ट इंडीज की टीम थी। क्लाइव लॉयड की कप्तानी में वेस्ट इंडीज 1975 और 1979 वर्ल्ड कप जीत चुका था। माना जा रहा था कि भारत को आसानी से हराकर वेस्ट इंडीज की टीम तीसरी बार भी चैंपियन बन जाएगी, लेकिन कपिल देव के नेतृत्व वाली टीम ने उसके इरादों पर पानी फेर दिया और इतिहास रच दिया। दोस्तों, इसके अलावा आज ही के दिन सन 1975 में आपातकाल लगाया गया था, जिसमें मौलिक अधिकारों का निलंबन, प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आइए दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं युवा उद्यमी सूरज गजरिया से रियल एस्टेट में निवेश, इस विषय पर प्रियंका वाणी की बातचीत।
4: दोस्तों, आज हमारे साथ है सूरज गजरिया जी, जो एक युवा उद्यमी है और सुनियोजित भूमि अंशदान एक रियल एस्टेट कंपनी के सीईओ है। नमस्कार सूरज जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
5: नमस्ते प्रियंका जी। नमस्कार सभी श्रोताओं को, मैं सूरज गजरिया खंडवा से सुनियोजित अंशदान कंपनी का सीईओ और फाउंडर हूं।
4: जी सूरज जी, आप जिस व्यवसाय से जुड़े हैं उसकी विस्तृत जानकारी हमें बताएं, ताकि हमारे जो बहुत सारे युवा श्रोता है वो जान पाए कि आपका व्यवसाय क्या काम करता है और किस बारे में है ये।
5: बेसिकली ये एक रियल एस्टेट कंपनी है जो की टियर 1 सिटीज में कंस्ट्रक्शन का वर्क करती है, लाइक मल्टीज, मेगा मॉल्स और सोसाइटी।

0: सिटीज, टाउनशिप्स, इनके प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कंपनी के अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, राइट। बट बेसिकली जो अभी लास्ट टाइम कोविड था, कोविड के बाद जो युवा थे उनको इन्वेस्टमेंट के लिए एक शेयर मार्केट का ऑप्शन खुल गया था, जिसमें लोगों ने काफी सारा इंटरेस्ट दिखाया और काफी इन्वेस्टमेंट किया। बट उसके जो रिजल्ट रहे लॉन्ग टर्म में, जो प्रोमिसेस किए जा रहे थे वो प्रोमिस पूरे नहीं कर पाए वो लोग। अभी भी 4 या 5 साल में जो भी रिटर्न है वो 20-30% मैक्सिमम रिटर्न है SIPs पे, म्यूचुअल फंड्स पे, वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे। तो हमने उनके लिए एक रियल कॉन्सेप्ट लाया है, रियल इस्टेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, कि जो भी पैसा लोग शेयर मार्केट में लगाते थे या फिर FDI कराते थे, क्या होता है बैंकिंग सेक्टर में जो FDI करते हैं लोग वो 7% पर ईयर का रिटर्न देती हैं, बट जो हमारी महंगाई दर है वो 5-5.5% की दर से बढ़ रही है। तो जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर्स है, उनके हाथ में 1 या 1.5% ही पैसा इंक्रीज हो, ग्रोथ कर पाता है। तो हमने इन सभी को सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए एक नया कॉन्सेप्ट लाए हैं कि यदि वो हमारी कंपनी में निवेश या इन्वेस्टमेंट या FDI कराते हैं तो हम उन्हें सेफ रिटर्न्स देंगे। हमारे यहाँ जो रिटर्न्स की स्कीम्स है वो 75% से 95-110% तक के हैं, जो कि कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी रियल एस्टेट में जो हमारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं अब उनमें हम 50% पैसा पब्लिक्स का रहेगा, कंज्यूमर्स का रहेगा, कस्टमर्स का रहेगा, 50% पैसा जो रहेगा कंपनीज का रहेगा, ताकि कंपनी भी काफी लार्ज लेवल पे ग्रो करे। एंड बेसिकली जो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटीज है वो कस्टमर्स के, कस्टमर्स जो बड़े लेवल्स पे जो उद्यमी लोग हैं वो जितने ग्रोथ कर पा रहे हैं उतना आम आदमी नहीं कर पा रहा है। तो हम आम आदमी के लिए ये स्कीम्स लेके आए हैं ताकि वो भी ग्रो कर सके।
1: जी। और सूरज जी, जैसे कि हमारा खंडवा एक छोटा शहर है, तो यहाँ पर आपको ये व्यवसाय शुरू करने की प्रेरणा कहाँ से मिली?
0: बेसिकली यदि कोई भी जॉब या फिर बिजनेस करता है तो एट द एंड रियल एस्टेट में ही पैसा इन्वेस्ट करता है, राइट। और खंडवा बेसिकली मेरा होम टाउन भी है, इसलिए मैं कंपनी की शुरुआत मेरे होम टाउन से ही करना चाह रहा था।
1: जी। और जैसे कि आपने बताया एक आपकी रियल एस्टेट कंपनी है, तो इसमें मैंने देखा है और हम आमतौर पर देखते हैं कि बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी कठिनाइयां आती है, तो आपको किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आपने उन चुनौतियों को कैसे टैकल किया?
0: बेसिकली जो कठिनाइयां हैं वो ट्रस्ट इशू की काफी सारी आती है, अभी भी मैं उसी से फेस कर रहा हूँ। तो ट्रस्ट इश्यू क्या होता है, हमारे देश में स्कैमर्स इतने बढ़ गए हैं कि हर 100 में से 2 बंदों के साथ स्कैम हो रहा है, राइट। स्कैम बढ़ते हुए ट्रस्ट इश्यू काफी सारे हो जाते हैं। तो
1: जी
0: हमने इसका सॉल्यूशन, इसलिए मैंने होम टाउन से इसलिए शुरुआत की क्योंकि यहाँ ट्रस्ट इश्यू का जो है कि हाँ हम प्रॉपर खंडवा से रहने वाले हैं, ठीक है। सेकेंडरी चीज कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंटेशन, लीगल जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं गवर्नमेंट की साइड से, प्राइवेट लिमिटेड की साइड से, सारे हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है।
1: और जैसे आपने बताया कि थोड़े से आपको जो एक भरोसा है आपके कस्टमर्स का, वो उनको करने में थोड़ा सा मुश्किल होती है, तो आपकी कंपनी किस तरह से अलग है दूसरी कंपनियों से?
0: बेसिकली जो दूसरी कंपनीज हैं वो म्यूचुअल फंड्स में लगाती हैं पैसा और उसके बेस पे रिटर्न्स देती हैं, बट यदि कंपनियों को वहीं से प्रॉफिट नहीं होगा तो कस्टमर को कैसे रिटर्न्स दे पाएंगी। इसलिए सबसे सेफ चीज होती है प्रॉपर्टीज, जो कि ग्लोबल क्राइसिस लाइक कोविड उसमें भी प्रॉपर्टीज के रेट भले ही इंक्रीज नहीं हुए थे बट डिक्रीज भी नहीं हुए थे। तो प्रॉपर्टीज एक तो सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, राइट। कि यदि हमने कोई प्रॉपर्टी परचेस करी है तो वो उससे जो रेट पे परचेस करी है उससे नीचे नहीं आएगी, हमेशा फायदा का ही सौदा होता है। हमारा जो इंक्रीमेंट है, जो पैसा इंक्रीज होता है, हमेशा प्रॉपर्टी में ज्यादातर इंक्रीज होता है। तो इसलिए हमने रियल एस्टेट को उससे कनेक्ट किया है।
1: जी। और सूरज जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रियल एस्टेट एक उभरता हुआ क्षेत्र है, तो आप हमें बताइए कि हमारे युवाओं के लिए क्षेत्र में क्या अवसर है?
0: युवाओं के लिए इस क्षेत्र में अवसर काफी सारे हैं, यदि वो हमारी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर किसी और कंपनी, यदि खुद का भी स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं तो रियल एस्टेट से बेस्ट, मतलब जो रिस्क मैनेजमेंट होता है

0: रियल एस्टेट में वो रिस्क मैनेजमेंट का फैक्टर खत्म हो जाता है। आपको उस चीज में, यदि आपके पास लीगल सारी चीजें हैं, यदि आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर पा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट जो हैं, यदि हम कुछ परचेस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं, तो वो लीगल है, सारी चीजें लीगल हैं, तो वो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है हमारा।
1: जी। और अंत में सूरज जी, मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारे युवाओं को गाइडेंस दीजिए कि अगर वे इस तरह का कोई उद्यम शुरू करना चाहते हैं तो किन-किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए।
0: फर्स्ट ऑफ ऑल, युवाओं को ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रॉफिट की तरफ ना जाएं, हम कस्टमर सर्विस की तरफ जाएं, ठीक है। और जो जॉब का जो क्राइटेरिया हो रहा है, जॉब का क्राइटेरिया ऐसा हो जाता है कि हम एक सीमित जगह बन जाते हैं, ठीक है। हम आगे नहीं सोच पाते हैं, हम फ्यूचर प्लानिंग्स नहीं कर पाते हैं, कर पाते हैं बट उस मास लेवल पे नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं
1: जी
0: सभी युवाओं को यही बोलना चाहूंगा कि आप स्टार्टअप ज्वाइन कीजिए, जो भी है उद्यम अपना शुरू कीजिए, और फर्स्ट प्रायोरिटी कस्टमर्स को दीजिए कि हम कस्टमर सर्विस प्रॉपर प्रोवाइड करवा पाएं। कस्टमर का बेनिफिट्स पहले देखें, देन फिर हमारा बेनिफिट देखें।

0: सकते हैं, हम फ्यूचर प्लानिंग्स नहीं कर पाते हैं, कर पाते हैं बट उस मास लेवल पे नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं
1: जी
0: सभी युवाओं को यही बोलना चाहूंगा कि आप स्टार्टअप ज्वाइन कीजिए, जो भी है उद्यम अपना शुरू कीजिए, और फर्स्ट प्रायोरिटी कस्टमर्स को दीजिए कि हम कस्टमर सर्विस प्रॉपर प्रोवाइड करवा पाएं। कस्टमर का बेनिफिट्स पहले देखें, देन फिर हमारा बेनिफिट देखें।
1: जी जी बिल्कुल, और बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो युवा साथी है वो इस जानकारी से लाभान्वित होंगे।
0: जी
1: हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुनी रियल एस्टेट में निवेश, इस विषय पर सूरज गजरिया से प्रियंका वाणी की बातचीत। दोस्तों, अब आपको एक किस्सा सुनाती हूँ, बल्कि आज ही का किस्सा। मैंने 6 बजे का अलार्म लगाया, मतलब अलार्म तो रात को ही लगा दिया था, लेकिन वो बजा सुबह 6 बजे, लेकिन उसे स्नूज करते करते 7 बज गए। और फिर जब घड़ी में 7 बज गए ये देखा, तो मेरा सारा मोटिवेशन ही खत्म हो गया, क्योंकि मैंने सोचा था कि 6 बजे उठकर पूरे जोश से एक्सरसाइज करूंगी, फिर नहा धोकर अखबार पढ़ते हुए नाश्ता करूंगी और एक प्रोडक्टिव दिन की शुरुआत होगी। लेकिन वो प्रोडक्टिव दिन शुरू ही नहीं हो पाया। आज का दिन भी बाकी दिनों की तरह ही आम रह गया, क्योंकि मैंने 1 घंटे की देरी की वजह से काम शुरू ही नहीं किया, क्योंकि मुझे एकदम परफेक्ट काम शुरू करना था, बिल्कुल 6 बजे उठकर। लेकिन इसी परफेक्शनिज्म के चक्कर में हम में से कई लोग काम शुरू ही नहीं कर पाते। आज उठने में 8 बज गए तो कल से 6 बजे उठूंगी, फिर अगर कल नींद 7 बजे खुली तो फिर वही बहाना कि कल 6 बजे उठूंगी, और यही करते करते सुबह उठने की आदत बन ही नहीं पाती। जरा सोचिए, जैसे अभी बारिश शुरू हो चुकी है तो इस वजह से हर तरफ कीचड़ हो रहा है, और कभी किसी दिन कीचड़ के छींटे अगर हमारे कपड़ों पर लग गए तो क्या हम कीचड़ में ही लेट जाते हैं, ये सोचकर कि कपड़े तो गंदे हो ही गए हैं तो चलो इनको और गंदा करते हैं। नहीं ना, लेकिन हम अपने काम और जो टास्क हमें करने हैं उनके साथ यही करते हैं। यदि शुरुआत अच्छी नहीं हो पाती तो वो काम आगे ही नहीं बढ़ाते। कितनी बार हमने कल के चक्कर में अपनी पढ़ाई, जिम और दूसरे जरूरी कामों को टाल दिया है। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि किसी चीज का कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता। जो करना है अभी से शुरुआत करनी होगी। पढ़ाई शनिवार से भी शुरू की जा सकती है, उसके लिए किसी मंडे का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कोई काम 7:15 पर भी शुरू किया जा सकता है, उसके लिए घड़ी में 8 बजने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हमें बस एक्शन पर फोकस करना है, परफेक्शन पर नहीं, क्योंकि आप जितना अच्छा कर ले, हर काम में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो परफेक्शन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, हमें बस अपना काम करते रहना है। तो कल जब सुबह आपका अलार्म बजे तो उसे बिना स्नूज किए उठ जाइएगा, और अगर स्नूज एक दो बार कर भी दिया और थोड़ी देर हो भी गई तो भी अपना मोटिवेशन खत्म मत होने दीजिएगा। अपने मन को काबू में करके बस जिस भी स्थिति में हो और जितने भी बजे उठ पाओ अपना काम शुरू कर दीजिए।

दोस्तों, आज का हमारा क्रम है इंद्रधनुष। और जीवन में भी तो कई रंग होते हैं, लेकिन सबसे गहरा रंग होता है प्रेम का। एक माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम, किसी प्रेमी का अपनी प्रेयसी के प्रति प्रेम, कभी किसी वस्तु से लगाव को भी हम प्रेम समझ लेते हैं। प्रेम तो हर तरफ है, लेकिन सबसे ज़रूरी है खुद से प्रेम करना, यानी सेल्फ लव। सेल्फ लव का ये मतलब कतई नहीं है कि आप बस खुद की ही तारीफ करते रहे। इसका मतलब है अपनी अच्छाइयों को जानना और कमियों को स्वीकारना और उन पर काम करना और हर परिस्थिति में खुद का सम्मान करना। जिस तरह हम लोगों को उनकी गलतियों के लिए माफ़ कर देते हैं, खुद को भी

माफ कर देना चाहिए। हर समय अपने आप को मानसिक प्रताड़ना देना सही नहीं है। किसी और से अगर गलती हो जाए तो हम कोई बात नहीं यार, हो जाता है, दोबारा कोशिश कर लेना, तुम कर सकते हो, ऐसी बातें करते हैं। लेकिन वही गलती अगर हमसे हो जाए तो मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं किसी काम का नहीं हूँ, और ना जाने कितनी दुनिया भर के नकारात्मक बातें अपने बारे में बोलते हैं। और फिर तुलना भी तो हम बहुत करते हैं। सोशल मीडिया पर लोग अपनी अच्छी साइड दिखाते हैं, ये हमें समझना होगा। उनके संघर्ष और असली जिंदगी के बारे में कोई नहीं बोलता, लेकिन हम ये सब देखकर स्वयं को कमतर आँकते हैं। पर याद रखिए, हमें तुलना बस हमारे पुराने वर्जन से करनी है। हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करना है, और सेल्फ लव का पहला कदम है खुद को स्वीकार करना। आप परफेक्ट नहीं हैं, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। बस यही बात तो हम सभी को और खूबसूरत बनाती है। सोचिए, अगर हम सभी समान होते तो किसी फैक्ट्री से निकला हुआ कोई शोपीस लगते। तो ये तुलना और परफेक्शन को छोड़िए, पूरी दुनिया से बेहतर बनने की जद्दोजहद को भी छोड़िए। बस अपने पुराने वर्जन से बेहतर बनना ही असली जीत है। तो खुद से प्यार कीजिए, और आपको जो पसंद हो वो कीजिए। फिर चाहे किसी पार्क में बैठकर किताब पढ़ना हो, कहीं घूमने जाना हो, या फिर अपनी पसंद का खाना खाना। हर समय दूसरों को खुश करने की कोशिश में हम कभी कभी खुद को भूल जाते हैं। जैसे हम रोज मोबाइल चार्ज करते हैं ना, वैसे कभी कभी खुद को भी चार्ज कर लेना चाहिए। तो लीजिए, सुनिए ये नगमा, अपना मूड।

दोस्तों, हमने बात की सेल्फ लव की, और सेल्फ लव का ये मतलब भी होता है कि आप अपने ज्ञान में निरंतर वृद्धि करते रहे। तो आइए दोस्तों, अब आपको जल्दी से बता देते हैं आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के उत्तर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न था, हाल ही में किसे देश के नए सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है तुषार मेहता। और आज का हमारा दूसरा प्रश्न था, हाल ही में मध्य प्रदेश के मांडू को किस उत्पाद के लिए GI टैग दिया गया है? इसका उत्तर है खुरासान इमली, जिसे मांडव इमली भी कहते हैं। अब ये तो थे आज के प्रश्नों के उत्तर। अब कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए अनुमति आपकी दोस्त प्रियंका वाणे को। नमस्कार।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे युववाणी FM 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सभी को विद्याधर मुले का नमस्कार।

आज के फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम की शुरुआत इस आवाज से हुई जो मदन मोहन साहब की। मदन मोहन साहब अपनी आवाज के लिए नहीं, अपने संगीत के

लिए जाने जाते थे और भारतीय फिल्म संगीत में सबसे प्रतिभाशाली संगीतकारों की अगर फहरिस्त के पहले तीन नाम हो तो उसमें शायद मदन मोहन साहब का नाम भी रखना होगा। आज उनकी जयंती है। आज ही के दिन बगदाद यानी इराक में उनका जन्म हुआ था और उसके बाद जब वो भारत आए अपने पिता के साथ उसके मुंबई में, तो फिल्म संगीत से उनका सामना हुआ और जब लता जी के साथ उनकी मुलाकात हुई उसके बाद तो भारतीय फिल्म संगीत को कुछ बेहद अनूठे गीत उन्होंने दिए हैं। उन्हें गज़लों का शहज़ादा कहा जाता था। चलिए, उनकी आवाज़ से हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया है। इस गीत में उनके साथ उनके बाद लता जी की आवाज़ भी होगी, पर पहले संगीतकार मदन मोहन साहब की आवाज़।

आज मदन मोहन साहब के संगीतबद्ध गीत हम आपको फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में सुनवाने जा रहे हैं। श्रोताओ, मदन मोहन साहब को लता जी का संगीतकार कहते थे। मैं कई बार कहता हूं कि ये किसी भी संगीतकार के लिए हो सकता है थोड़ा अपमानजनक भी हो, लेकिन मदन मोहन साहब को इससे खुशी ही मिलती थी, क्योंकि लता जी, जिन्हें माँ सरस्वती का अवतार भी लोग कहते हैं, उनसे बेहतर और बेहतर गवाने की इच्छा रखना और उन्हें पसंद आए ऐसी संगीत रचनाएं बना पाना, ये किसी भी संगीतकार के लिए बहुत तारीफ की बात थी, काबिलियत की बात थी। अब आपको एक गीत आपको सुनवाते हैं, जाहिर है लता जी की आवाज़ में होगा, पूजा के फूल, इस फिल्म का ये गाना है, राजेंद्र कृष्ण की ये रचना है और संगीत मदन मोहन का। आइए सुनें।

मदन मोहन साहब की एक चुलबुली सी रचना आपको सुन पाते हैं। भाई भाई फिल्म का ये गाना है, गीता दत्त की आवाज़।

श्रोताओ, आकाशवाणी खंडवा से विद्याधर मुले के साथ फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं संगीतकार मदन मोहन के संगीतबद्ध कुछ गीत। और अब प्रेम के गीतकार हसरत जयपुरी का एक गाना आपको सुनवाते हैं, फिल्म सुहागन, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की।

मैं भला होश में कैसे रहूं। फिल्म संगीत के जो शौकीन हैं उनके लिए उनकी पसंद के गाने इसी तरह मदहोश करने वाले होते हैं। बहरहाल, मदन मोहन साहब की बंदिशों की बात कर रहे हैं, उनके संगीतबद्ध गीतों की हम बात कर रहे हैं, तो शायद वो कौन थी का लग जा गले ये गीत। बहुत से लोगों का मानना है कि ये मदन मोहन साहब की सबसे मशहूर बंदिश है। हो सकता है कि आपको नज़र में कोई और गीत भी हो, लेकिन ये गीत बहुत मकबूल है, बहुत मशहूर है, इससे कोई इनकार नहीं करता। आइए सुनते हैं।

प्रोग्राम की शुरुआत में ही हमने कहा था कि मदन मोहन साहब की ख्याति प्रसिद्धि इस बात के लिए भी थी कि उसे गज़लों का शहजादा कहा जाता था उन्हें। तो चलिए प्रोग्राम का आखिरी जो गीत है वो गीत नहीं गज़ल है। कुछ कहने पे तूफान उठा लेती है दुनिया, अब तो इस पे कयामत है कि हम कुछ नहीं कहते। गज़ल राजेंद्र कृष्ण की, मदन मोहन साहब का संगीत और फिल्म

श्रोताओं, विद्याधर मूली के साथ फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आपने सुने संगीतकार मदन मोहन की जयंती पर उनके संगीतबद्ध कुछ गीत। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी खंडवा है, शाम के 7 बजे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं दिल्ली से हिंदी समाचार।
1: गेम साथ मैं मुनीश शर्मा। आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर एक सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदना

0: भरी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चो में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, एक बरस बीत गया।
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंता कयाला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तागक, ओडिशा से भाजपा के देवाशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ला ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। भारत ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों, उपमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। बैठक में प्रमुख वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अमरीका के फुलटर्न में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग और किदाम्बी श्रीकांत सहित अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने आज आसान जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने भारत के ही डी सनीत को पराजित किया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 101.2 MHz पर ये आकाशवाणी खंडवा है।
4: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहुं सुदर्शन।
5: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
6: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
7: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूं और कहाँ दूं।
6: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
7: क्यों?
6: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
7: वो कैसे?
6: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
7: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
6: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में

0: बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
1: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
0: आप कब आ रहे हैं
1: आकाशवाणी खंडवा पर?

0: आप बने रहिए हमारे हमसफर और सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: एफएमएंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रोग्राम्स का खजाना।
2: तुम आए तो आया मुझे यार, गली में चांद निकला।
1: तो सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
3: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
4: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
3: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
4: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
5: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
6: ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन
1: आकाशवाणी खंडवा।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से FM 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:10 होने को हैं। आइए सुने भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार।
1: का हाल अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचारों के बाद 7:21 से। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 7:10 हुए हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। संविधान हत्या दिवस पर देश भर में लोकतांत्रिक मूल्यों पर हुई चर्चा, प्रधानमंत्री ने भी दी श्रद्धांजलि।

0: पंचली। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिंगल क्लिक से 203 करोड़ रुपए की पेंशन राशि अंतरित की। प्रदेश के सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट या मृत्यु की स्थिति में अधिकतम 300 दिनों के अवकाश का नकदीकरण कर सकेंगे। और प्रदेश के 15 जिलों में मानसून की दस्तक, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस के अवसर पर देशभर में आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पर कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक अत्यंत कठिन दौर था जिसने हमारे संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित की गई और राजनीतिक नेताओं तथा पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। श्री मोदी ने कहा,
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी

0: आज संविधान हत्या दिवस के अवसर पर देश भर में आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पर कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक अत्यंत कठिन दौर था जिसने हमारे संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित की गई और राजनीतिक नेताओं तथा पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। श्री मोदी ने कहा,
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, एक बरस गया, एक बरस।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाती है ताकि भविष्य में लोकतंत्र पर ऐसा हमला फिर न हो। उधर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आपातकाल की विभीषिका के विरुद्ध डटकर खड़े होने वाले लोकतंत्र प्रहरियों को नमन करते हुए कहा कि 25 जून 1975 देश में लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन था। आज के ही दिन 1975 में इंदिरा सरकार के अहंकार के परिणाम स्वरूप देश में आपातकाल लगाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की ये सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारत और सेशल्स के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जनजन के मजबूत संबंध हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी देश है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज 33,92,695 से अधिक भाई बहनों और बुजुर्गों के खातों में 203,56,00,000 रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि राज्य सरकार का कोई भी निर्धन परिवार, माताएं बहने, हमारे दिव्यांग साथी स्वयं को बेसहारा न समझें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अंत्योदय का संकल्प सिद्ध हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा,
3: नर सेवा ही नारायण सेवा, ये जो माननीय मोदी जी का भाव है, इस भाव के आधार पर आज 33,92,695 से अधिक इस विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं के जुड़े हुए सभी भाई बहनों और बुजुर्गों को मई महीने की 203,56,00,000 की राशि ट्रांसफर करने की आप सबको बधाई देता हूँ। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। सभी प्रकार के गरीब, युवा, नारी, किसान सबके लिए हमारी सरकार काम कर रही है।
0: भोपाल के लोकभवन में विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 102वीं बैठक आयोजित हुई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विश्वविद्यालयों को युवाओं में कौशल, योग, सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं को अधिक अवसर देने और गरीब कल्याण की योजनाओं से विद्यार्थियों को जोड़ने पर बल दिया। बैतूल जिले में जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर को प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री सम्मान से विभूषित किए जाने के बाद भोपाल लौटे मोहन नागर का मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा,
4: 23 जून को अवार्ड जब मिला तो निश्चित रूप से ऐसा लगा कि वर्षों की जो साधना थी, जो छोटे छोटे काम हम बैतूल के जनजाति समाज के साथ गंगा अवतरण अभियान के और कार्यकर्ताओं के साथ जो कर रहे थे, उसको और देश के शीर्षस्थ लोगों ने संज्ञान में लिया और विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण को लेकर के जो काम किया है, बैतूल के जनजाति समाज के बीच में शिक्षा को लेकर के जो काम किया है राष्ट्रपति जी ने, उसको संज्ञान में लेकर के और इतना बड़ा पुरस्कार उस अभियान को दिया है, मैं सबके प्रति हृदय से आभारी हूँ।
5: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने सरकारी कर्मचारियों के लिए लीव इनकैशमेंट राशि के संबंध में नए दिशा निर्देश

जारी किए हैं। इसके तहत अब कर्मचारी रिटायरमेंट या सेवाकाल में मृत्यु की स्थिति में मिलने वाली छुट्टी की राशि का स्व आकलन कर सकेंगे। आदेशानुसार कर्मचारियों को अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश ईएल का ही नकदीकरण लाभ मिलेगा। यदि किसी ने पहले इसका लाभ लिया है तो वो अवधि कुल 300 दिनों की अधिकतम सीमा में से घटा दी जाएगी। प्रदेश में मॉनसून ने दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के 15 जिलों में कल दस्तक दे दी है। अगले 2 से 3 दिनों के भीतर मॉनसून प्रदेश के शेष हिस्सों को भी कवर करने का अनुमान है। विभाग ने कल सीहोर, सागर, विदिशा, छिंदवाड़ा सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में भारी से सामान्य बारिश की चेतावनी जारी की है। बीते 24 घंटों के दौरान खंडवा जिले में 24.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है। वहीं सीहोर जिले में इस दौरान 0.91 इंच बारिश हुई। छिंदवाड़ा जिले में 1 जून से अब तक कुल 64.4 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है। दतिया जिले में अब तक केवल 13.25 मिलीमीटर ही बारिश हुई है। उधर पांडुर्ना जिले के ग्राम बढ़ चिचोली में खेत में काम करते समय आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर प्रीति यादव ने स्कूली वाहनों की नियमित और सघन जांच करने के कड़े निर्देश दिए हैं। धार जिले के धामनो क्षेत्र में परिवहन विभाग ने विशेष अभियान चलाकर 50 स्कूली वाहनों की जांच की। नियम विरुद्ध पाए गए 7 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 33,000 रूपये का जुर्माना वसूला गया। नर्मदापुरम जिले में रेशम समृद्धि योजना के तहत किसानों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ई रेशम पोर्टल पर मलबरी पौधरोपण हेतु ऑनलाइन पंजीयन शुरू कर दिया गया है। सागर जिले में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जलगंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा करते हुए वर्षा जल संचयन के लिए फॉर्म पॉन्ड्स के निर्माण के निर्देश दिए। झाबुआ जिले के मेघनगर में संभागीय चलित खाद्य प्रयोगशाला द्वारा मेघनगर और उदयगढ़ में औचक निरीक्षण कर किराना दुकानों और दुग्ध केंद्रों से खाद्य पदार्थों के 34 नमूने जांचे गए। शहडोल जिले के बुढ़ार में जनजातीय कार्य विभाग ने 2 करोड़ रूपये से अधिक की गंभीर वित्तीय अनियमितता सिद्ध होने पर पूर्व विकासखंड शिक्षा अधिकारी अशोक शर्मा को बर्खास्त कर दिया। नीमच जिले के ग्राम हनुमंतिया व्यास में शासकीय कुएं से पानी बेचने की शिकायत पर कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश पर पीएचई विभाग ने त्वरित कार्रवाई कर रोक लगाई। गुना के चाचौड़ा शाखा में खाद वितरण व्यवस्था में लापरवाही और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के बाद प्रभारी प्रबंधक को हटाकर मोन्टू बिंदल को नया प्रभार सौंपा गया है। भोपाल के थाना जहांगीराबाद क्षेत्र के आनंद विद्या मंदिर में सेफ क्लिक 2.2 अभियान के तहत करीब 250 छात्रों को साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी दी गई। मंदसौर में पीएचई विभाग द्वारा भानपुरा में आयोजित कार्यशाला में 44 ग्राम पंचायतों को जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए 10 प्रकार की जांच वाली फील्ड टेस्टिंग किट वितरित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: आप सुनी रहा निर्माण की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है किसान वाणी कार्यक्रम।

किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाला सभी भाइयों भाई नख आपका अपना भाई अखिलेश की राम राम। भाई बहनों ने हमारा प्रदेश का साथ हमारा जिला में भी मानसून ने अब दस्तक दे दी। पिछला दो दिन से हम देखे राज की बारिश को दौर शुरू ही हुई और साथ ही तापमान में भी बहुत ज़्यादा कमी आई गई। तापमान में कमी होने से गर्मी से भी हमको राहत मिली। न भाई बहनोनी शाम का समय हवा आंधी न बारिश को दौर भी अब चली रही, तो ऐसा समय जरूरी छे कि हम पेड़ पौधा न का नीचा खड़ा नहीं रहवा, उनसे दूर रहवा, न बिजली का खंभा न से भी दूर रहवा। भाई बहनोनी मानसून का आना से अब हमको तैयार रहनु बीज की बुआई की। बीज की बुआई का पहला हमने खेत की गहरी जुताई भी करी ली, न साथ ही सभी प्रकार के आदान व्यवस्था ने भी हमने जुटाई ली होगा, या फिर हमारा कई भाई बहन आदान व्यवस्था की व्यवस्था करी रहा होगा। फसल को गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्रमाणित बीज पर निर्भर करे। एक सफल न गुणवत्तापूर्ण उत्पादन बीज का चयन, बीज की बुआई न बीज की अंकुरण क्षमता पर निर्भर करे। बीज का चयन से लेकर बीज का सही अंकुरण क्षमता को विशेष ध्यान रखनु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण छे। स्वस्थ बीज बुआई को 25% उत्पादन निर्धारित करे। अब हम बात करेंगे कि बीज का चयन न बीज की जांच का बारे में हमको कौन कौन सी बात में ध्यान रखना है। बीज प्रमाणित लेवा। प्रमाणित बीज हमेशा विश्वसनीय संस्था या फिर प्रमाणित डीलर से हम बीज खरीदा। पैकेट पर जी लेवल छे उसकी जांच जरूर करी लेवा। पैकेट पर फसल को नाम, किस्म, अंकुरण प्रतिशत, पैकेजिंग की तारीख न खत्म होने की तारीख की जांच जरूर करी लेवा। पुराना न तारीख खत्म होने वाला बीज नहीं खरीदा। भाई उन्होंने यदि हम घर का बीज न को उपयोग करी रहा है तो उनकी जांच भी जरूरी छे। बीज साफ सुथरो न रोग न जीवाणु से मुक्त होए। बीज की अंकुरण क्षमता पहले हम जांची लेवा। बीज न खाम पानी में भिगोई कर रखा। बीज यदि तैरी रहे तो उनका नहीं लेवा क्योंकि वो खोखला या फिर खराब हो सके। बीज की बुआई का पहला उनका फफूंद नाशक या फिर जैविक दवा नसी उपचारित जरूर करा, जेकासी मिट्टी जनित रोग नसी बची सकांगा। भाई उन्होंने बीज चयन में सावधानी का साथ महत्वपूर्ण छे बुआई को सही तरीको। खेत की तैयारी जुताई का साथ खेत का समतल तो हमने कर ही लिया, लेकिन बीज की बुआई की गहराई की बात आवे तो बड़ा बीज ख ज्यादा गहराई लगभग 2 से 3 इंच पर करा, न छोटा बीज न की बुआई सतह का करीब में बोनू चाहिए जिकासी अंकुरण में रुकावट नहीं आव। बीज का बीच पर्याप्त दूरी रखा जिकासी प्रत्येक पौधा का पर्याप्त मात्रा में धूप हवा न पोषक तत्व मिली सका। भाई उन्होंने अंकुरण का दौरान भी हमको सावधानी रखनु। अंकुरण का लेन खेत में पर्याप्त नमी जरूरी छे। 2-3 अच्छी बरसात होने के बाद कृषि विशेषज्ञ वैज्ञानिक न की सलाह पर हम अच्छा किस्म का बीज की बुआई करा। बीज की बुआई में इन्हीं बात को भी ध्यान रखा कि खेत की माटी ज्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बीज सड़ी जाए। खेत की माटी को भुरभुरो होना जरूरी।

0: खेत की माटी भुरभुरी रहेगा तो बीज नख अंकुरित होना कारण हवा पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। बुआई का बाद बीज नख खेत की माटी से अच्छी प्रकार से ढकी देवा, क्योंकि कहीं चूहा या फिर चिड़िया न बीज ख नहीं खाई पावो। अपना क्षेत्र रु मौसम का अनुसार अनुमोदित न प्रमाणित बीज को चयन करा। बीज साफ एक रूप न रोग रहित हो, कीट से ग्रस्त नहीं हो, इन्हीं बात को भी हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसी कारण से बुआई में देरी हुई रही तो उन्हें समय के अनुसार उपयुक्त किस्म को हमको चयन करना चाहिए। बुआई से पहले लगभग 100 बीज लेकर गीला कपड़ा या फिर बोरी में बांधी कर कुछ दिन रखी कर बीज के अंकुरण क्षमता को भी परीक्षण जरूर करा। अंकुरित बीज न की गिनती करी कर अंकुरण प्रतिशत निकाला। न बीज की अंकुरण क्षमता यदि कम छे तो बीज की मात्रा बढ़ाई कर बुआई करा। यदि अंकुरण बहुत ही ज्यादा कम छे तो ऐसा बीज न को उपयोग हमको नहीं करना चाहिए। उन्होंने बीज का बुआई का बाद जब पौधा ठीक से स्थापित नहीं हुई पौधा ही तब वो सबसे नाजुक स्थिति में रही। अंकुरण का समय खेत की माटी की ऊपरी परत पर नमी लगातार बनी रहनी चाहिए। ऐसा समय भारी सिंचाई या फिर खेत में जल भराव की स्थिति से हमको बचना चाहिए। साथ ही खेत में जल निकासी की व्यवस्था भी जरूरी है। भाई उन्होंने बीज बुआई से लेकर अंकुरण तक हमको विशेष ध्यान रखना। तो ये थी आज की अपनी चर्चा। बीज की बुआई का पहला हमको कौन कौन सी बात न ध्यान में रखना चाहिए।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: भाई बहनों, अब समय छे कार्यक्रम आपसी प्रश्न पूछने को। प्रश्न छे, मृदा स्वास्थ्य कार्ड सी कौन कौन सी जानकारी न मिले। प्रश्न एक बार अरु सुनी लो, मृदा स्वास्थ्य कार्ड सी कौन कौन सी जानकारी न मिले। इना प्रश्न को उत्तर आप भाई बहन ढूंढी कर रख जो, हम प्रश्न को उत्तर आपको बताऊंगा कार्यक्रम का आखिरी में। नव करी ले आज की अपनी बात। आज की बात छे राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का बारा। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन भारत शासन की एक प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजना छे। देश में रसायन मुक्त पारंपरिक अरु पर्यावरण का अनुकूल योग्य खेती बनावणु एकालन ई योजना शुरू करी। ई योजना एक प्रमुख न महत्वाकांक्षी योजना छे। केंद्र शासन द्वारा साल 2024 नवंबर महीना में एक स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना का रूप में एक मंजूरी दी थी। इन योजना को मुख्य उद्देश्य छे लगभग 7 लाख

0: हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती शुरू करनो। लगभग 1 करोड़ किसान भाई ने तक जागरूकता लावना को लक्ष्य छे। इन योजना क्लस्टर आधारित मॉडल छे, जेका अंतर्गत प्रत्येक क्लस्टर लगभग 50 हेक्टेयर को होएगा, जेका में आसपास का लगभग 125 किसान भाई शामिल रहेगा। अभी तक लगभग 18,000 से अधिक क्लस्टर बनाया जा चुके हैं, न लगभग 18 लाख से ज्यादा किसान भाई भी नामांकित हो चुके हैं। प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत केंद्र शासन स्तर पर लगभग 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर भी स्थापित किया जा रहा है। इना केंद्र नम जैविक संसाधन जैसा जीवामृत बीजामृत उपलब्ध रहेगा। प्राकृतिक खेती ख अपनाना वाला किसान भाई ने ख शुरू में आने वाली परेशानी से बचावने का लेन केंद्र शासन द्वारा आर्थिक प्रोत्साहन का रूप में भी मदद भी दी जा रही। प्राकृतिक खेती का तरीका न ख अपनाने का लेन किसान भाई ने ख 4,000 प्रति हेक्टेयर 1 साल का रूप में प्रोत्साहन राशि 2 साल का लेन मिलागा। किसान भाई नखा अधिकतम 1 एकड़ प्रति किसान भाई के हिसाब से लाभ दियो जाएगा। प्राकृतिक खेती मिशन को मुख्य उद्देश्य छे खेती की लागत का कम करनो, क्योंकि आधुनिक खेती का तरीका अपने कर हमको लागत भी ज्यादा लगी रही, उत्पादन कम मिल रही, जो साथ ही रासायनिक दवाई को खाद को उपयोग करने से जमीन की उपजाऊ क्षमता भी कम हुई रही। ऐसा समय प्राकृतिक खेती अपने कर हम खेती की लागत कम कर सकें। बाजार से महंगा रासायनिक उर्वरक यूरिया डीएपी न कीटनाशक खरीदने की निर्भरता भी कम ही जाएगा। प्राकृतिक खाद और कीटनाशक स्थानीय स्तर पर गाय का गोबर गोमूत्र और नीम की पत्ती नसी तैयार करियो जाएगा। प्राकृतिक खेती अपनाने से लगातार रसायन का उपयोग से खराब ही रही न खेत की माटी की सेहत का सुधारना न साथ मित्र जीवाणु न की संख्या का बढ़ावना कल्याण छे। प्राकृतिक खेती मिशन अपनाने से हम सब भाई बहन जहरीला रसायन से हमको मुक्ति मिलेगा, शुद्ध न पौष्टिक खाद्यान्न भी हमको मिल सकेगा। स्थानीय नस्ल की गाय और पशुपालन का खेती का साथ जोड़नु छे। प्राकृतिक खेती सिर्फ केवल पुरानी पद्धति पर निर्भर नहीं है, बल्कि प्राकृतिक खेती को वैज्ञानिक आधार भी छे। खेती का जलवायु परिवर्तन का अनुकूल बनाने का लेन बहुफसल प्रणाली भी अपनायो गए। प्राकृतिक उत्पादन की सही कीमत दिलावने का लेन एक सरल प्रमाणन प्रणाली न समर्पित राष्ट्रीय ब्रांड उपलब्ध कराया जाएगा। ये थी आज की अपनी बात राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का बारह में। भाई बहनोनी आओ अब हम सुनी लेवा भेंटवार्ता। विषय छे कृषि में चूहे और उनका प्रबंधन। जानकारी रही राज वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश परसाई।
1: किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश परसाई जी। आज आप हमें जानकारी देंगे कृषि में चूहे और उनका प्रबंधन। तो डॉक्टर सतीश परसाई जी आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार।
2: नमस्कार किसान भाइयों।
1: परसाई जी, जैसा कि हमारे किसान भाई भी जानते हैं और हम सभी जानते हैं कि चूहों का कृषि और मानव दोनों पर जो है वो विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो जहाँ तक हम यदि कृषि की बात करें तो कृषि में चूहों का क्या महत्व है?
2: कृषि में चूहों का बहुत महत्व। जहाँ तक कृषि का संदर्भ है, में हम देखते हैं कि खेत से चूहों का प्रकोप शुरू हो जाता है। खेत में हमारी खड़ी फसल को चूहे नुकसान करते हैं, काट करके खाते हैं, पौधे काट देते हैं, नीचे आपके फल सब्जियां लगाते हैं तो फलों को कुतर देते हैं, इस प्रकार से खेत में क्षति पहुँचाते हैं। और खेत के बाद जब हम अनाज को भंडारित करते हैं तो भंडारण में भी ये चूहों की समस्या हमारे लिए बनी रहती है। और मैं तो ये कहूंगा कि चूहों की समस्या कहीं भी बनी रहती है, घरों में भी चूहों की समस्या आमतौर पर देखने में आती है। घर वाले भी हमारे परेशान होते हैं और कहा भी जाता है कि मानव के लिए बड़ा सिर दर्द है चूहा, ऐसी मान्यता है लोगों का कहना। और एक चीज और

0: मैं ध्यान में लाना चाहूंगा किसान भाइयों को, बीमारियां फैलाने में भी चूहों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्लेग जो कभी वर्षों पहले फैला था, उसके कारण काफी मौतें हुई थी। तो ये प्लेग जैसी बीमारी या तंदरी ज्वर जिसको हम कहते हैं, ये बीमारियां भी चूहों के कारण प्रसारित होती। चूहों का मानव के लिए भी महत्व है, खेती के लिए भी महत्व है, निश्चित रूप से।
1: जी परसा जी, आपने जैसा कहा कि कृषि के साथ जो है घर में भी जो है इनका जो प्रभाव है वो हानिकारक
0: हाँ
1: है,
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल,
1: मानव के लिए किस प्रकार से ये हानिकारक
0: मानव के लिए जैसा मैं बता चुका हूँ, जैसे
1: है? जी
0: घर में ये कपड़ा उतर गई, नहीं
1: जी जी
0: आपने घर में रहना शुरू कर दिया तो खाना पीने की चीज तो ठीक है, कपड़ा उतर देंगी, प्लास्टिक का पाइप उतर देंगी, कोई भी खाने वाली वस्तु हो चाहे ना खाने वाली वस्तु हो, हर किसी को उतर देंगे। और हमने कई बार देखा है, पढ़ा है कि दूरदर्शन का प्रसारण या आकाशवाणी का प्रसारण चूहों के, यानी जो उनका संपर्क सूत्र है, वो कुतरदही के कारण घंटों अवरुद्ध रहा।
1: जी
0: या रेलवे प्लेटफॉर्म पर हम देखते हैं कई बार चूहे उछलते हुए ट्रैक पर दिखाई देते हैं, जो रेलवे की लाइन है
1: जी
0: तो
1: जी
0: वो वहां भी इसको खोखला करते हैं, रेलवे ट्रैक को। हवाई यात्रा प्रभावित हो जाती है, अनेक अनुभव हैं चूहों के साथ, और आए दिन सुनने में पढ़ने में, तो कहीं भी ये चूहा आ सकता है, कहीं भी ये नुकसान पहुंचा सकता है। चूहा हमारे लिए कितना बड़ा शत्रु है। हाँ
1: खाद्य पदार्थों के साथ साथ जो अखाद्य पदार्थ हैं उनको भी चूहे कुतरते हैं।
0: बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है चूहों के साथ में
1: जी
0: कि ये खाद्य पदार्थ तो खाते ही हैं, खा रहे हैं उसको, तो वो तो नुकसान हमारे लिए ठीक है, वाजिब है। लेकिन अखाद्य वस्तु जैसे प्लास्टिक का पाइप तो इसके सामने आ गया, उसको कुतर
1: जी
0: दिया। मैंने बताया था कि बिजली की लाइन काट दी, तो इस तरह के भी हम अनुभव देखते हैं, कपड़े कुतर दिए, ये तो कोई खाद्य वस्तु नहीं है।
1: जी जी
0: लेकिन ये वास्तव में एक जानकारी किसान भाइयों को देना चाहूंगा कि ये चूहों की मजबूरी है कि उन्हें कुतरना ही है। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि उनके दांत एक वर्ष में 13 सेंटीमीटर तक बढ़ रहा है।
1: जी
0: तो कुतरना हम ये कहें कि चूहों की मजबूरी है, जिस कारण कि वो कुतरते रहते हैं, चाहे वो खाने की चीज हो चाहे ना हो, तो ये इनके साथ महत्वपूर्ण है। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि जितना कुतरते हैं खाते हैं, उससे कहीं 10 गुना अधिक अनाज जो है ये इनके कारण जो इनकी मल मूत्र या मेलिन, शायद आमतौर पर किसान भाई इसको बोलते हैं,
1: जी
0: उन संदूषित कर हमें प्रत्यक्ष रूप से और अपरोक्ष रूप से चूहों से ये महत्वपूर्ण हानि।
1: परसा जी, चूहे जो है वो मानव और कृषि के लिए हानिकारक है, तो अब बात आती है इनके रोकथाम की, तो रोकथाम में क्या
0: बिल्कुल
1: क्या सावधानियां रखना चाहिए?
0: हाँ, चूहों की रोकथाम के लिए बहुत सी सावधानी रखने की आवश्यकता। सबसे पहली चीज तो चूहों की, जैसे हम घरों में या भंडारण में जहाँ भी अनाज बड़े स्तर पर भंडारण कर रहे हैं और उसको नुकसान की संभावना है, या घरों में तो हमें इनके आगमन के जो स्रोत है जहाँ से ये घरों में आ सकते हैं, उन पर रोक लगाने की पहली आवश्यकता होती है। घर या भंडार गृह में निकासी, हम जो गंदा पानी है या नल जो हमारा किचन से अपना रसोई से निकलता है, हमारे जो नहाना स्नानागार होते हैं वहां से निकलता है, वो सब जाता है, तो यहाँ भी जो निकास द्वार है वहां पर अपनी लोहे की जाली लगी होनी चाहिए, ताकि चूहों का आगमन अपने घरों में ना हो, अपने भंडार गृहों में ना हो, ये सावधानी हमें लेने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ ही और भी चीजें हैं चूहों से जुड़ी हुई कि ये बहुत तेजी से बढ़ते दौड़ते हैं, यानी इनकी प्रजनन क्षमता बहुत तेज, तो ऐसे भी कई अब रसायन नई चूंकि अवधारणा है, तो नई अवधारणा के तहत ऐसे रसायन हमारे लिए उपलब्ध है जिनका हम उपयोग चूहों के लिए कर सकते हैं, और वो ऐसे रसायन हैं जो चूहों को नपुंसक बना देते हैं, यानी उनकी जनन क्षमता को रोक देते हैं। तो ये भी एक उपाय किया जा सकता है, तो आगे आने वाली संतति उनकी रुक सके। मैं जानकारी देना चाहूंगा कि एक जोड़ी चूहा जो है 800 की संख्या,
1: जी
0: ये आंकड़ा यदि इससे समय चले उत्पन्न होते हुए चूहों की संख्या को ध्यान में लेकर की बात करें तो ये 2 करोड़ तक हो सकते हैं एक साथ। ये एक मन में बात आना चाहिए कि कितना बड़ा संकट है हम लोगों के लिए, कितनी बड़ी समस्या है
1: जी
0: और किस प्रकार से इनका

0: जोकथाम प्रबंधन करते
1: जी। चूहों के नियंत्रण की बात आती है तो खेत में भंडार में जो है जो अनाज का जहाँ हम भंडारण करते हैं तो वहाँ पर उपाय हम कौन कौन से अपनाए, कई बार घरेलू उपाय के साथ साथ रासायनिक उपाय भी।
0: बहुत सारे मैं विविध तरीके बताऊंगा
1: जी
0: जिनको अपनाया जाता है। खेत में सबसे पहली सावधानी या सबसे पहली चीज हमें ये करना है कि इसे फसल लगी है तो हम खेत का पूरा निरीक्षण करें। शाम के समय में सामान्य रूप से ये अनुशंसा की जाती है कि खेत का निरीक्षण करें और निरीक्षण के दौरान ऐसी संभावित जो छेद हैं आपके वो दिखाई देते हैं जहाँ चूहों का बिल हो, ऐसे संभावित बिलों की पहचान करें और उनको मिट्टी, गीली मिट्टी और गोबर की मदद से उनको लीप करके ये मतलब मिट्टी से बंद करके इनको रखें रात भर के लिए। अब सुबह इन जो बिलों को हमने जो संभावित बिल हमने शाम के समय देखे थे सुबह इनका पुनः निरीक्षण करें। यदि इनमें से जितने भी बिल खुले दिखाई दे रहे हैं वो बिल हमें ये बात का संकेत देते हैं कि इनमें चूहों का निवास, और ये जीवित बिल का नाम इनको देंगे तो अब इन बिलों में हमें इनके नियंत्रण की व्यवस्था, बिलों में नियंत्रण के लिए हम जो खुले बिल मिले हैं अगली सुबह हमको उन सब में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड नाम की टिकिया आती है, उस टिकिया को डाल करके और पुनः उसको गीली मिट्टी से बंद करके, ये पहली चीज होगी आपकी खेतों में इनकी पहचान करना कि कहाँ ये रह रहे हैं, इनका रिहायशी कहाँ है, क्षेत्र है, और फिर वहाँ इनकी नियंत्रण की व्यवस्था। फिर साथ ही साथ हमको विविध मोर्चों से लड़ाई लड़ना है तो हमें जिंक फॉस्फेट नाम का जो रसायन है, चूहा नाशक जिसको हम कहते हैं नाशक, तो ये उपयोग करना है। और एक बात मैं महत्व बताना चाहूंगा और सामान्य रूप से किसान भी जानते हैं, घरों में भी हम जानते हैं, चूहों को यदि हम जहर देते हैं सीधा बिना किसी प्रलोभक के तो वो उसे ग्रहण नहीं कर, लेकिन इसमें थोड़ी सी सावधानी हम लेते हैं कि 2-3 दिन तक उसको आकर्षित करें, एक सादा विष रहित चारा, चाहे वो खाद्यान्न हो चाहे नमकीन हो आपका कोई, तो ये रख करके और उसको या आटा भी रख सकते हैं, जो भी खाद्यान्न हम उपयोग कर रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि वही खाद्यान्न या वही चीज जैसे जब पकौड़े बना करके हम उनको आकर्षित कर रहे हैं तो बाद में आगे 2-3 दिन या बाद में जहर मिल जाए, जब वो खाना शुरू कर दें पर्याप्त हमने अनुभव किया कि ये खाने लगे हैं तो उस स्थिति में आपका जिंक फॉस्फाइड जो काला दवा है पोषक नाशक उसको मिला, तो ये थोड़ी सी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है सख्ती स्वभाव के। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि ये जिंक फॉस्फाइड में एक कमी भी है, कमी हम जो अनुभव करते हैं वो ये है कि एक बार जिंक फॉस्फाइड हमने रखा और उसमें जितने चूहों का सफाया हो गया वो हो, उसके बाद हम आगे वो रखते हैं तो चूहे उसको नहीं खा, सामान्य रूप से ये एक मात्रक विष, यानी एक बार इनकी जो मात्रा है चूहे के शरीर में पहुंच गई उसके कारण ही ये चूहे मरने लगे, तो एक शंका एक भय जो अन्य उनकी संतति है उसमें पहुंच जाता है कि ये कोई चीज गलत है और इसका हमें उपयोग नहीं करना, तो ऐसे खाद्य वस्तुओं का वो फिर ग्रहण करना बंद करते
1: जी
0: चूहे। तो ये प्रजाति बहुत सतर्क है, सख्ती स्वभाव की है, ये हमें जानना चाहिए, तो वो ग्रहण नहीं है। तो इस कमी को दूर करने के लिए मैं तो किसानों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये बहुमात्रक विषयों का उपयोग जो हमेशा लगातार उपयोग किए जा सकते हैं, जिनकी धीरे धीरे कई मात्रा खाने के बाद चूहे मर, और ये चूहे भी सामान्य रूप से जहाँ हम विष उपयोग कर रहे हैं वहां ना मर करके दूर जाकर के मरते हैं, कई बार अनुभव होता है या घरों में या कहीं गोदाम में हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि साहब जिंक फॉस्फेट में ये कमी है कि वो खाते हैं मरते हैं फिर कहीं जाके सड़ते हैं और बदबू आती है
1: जी।
0: तो ये बात हमारी जो बहुमात्रक विष के साथ नहीं आती है, दूर जाके चूहे मरते हैं, और ये दवाएं जो है वारफेरिन, रोटाफिन, रेटाफिन ऐसे नामों से बाजार में मिलती, तो इनकी जो है मांग करें किसान भाई और इनका उपयोग करें, इन्हें ज्यादा प्रचलन में लाएं तो ये उनके लिए बेहतर होगा।

0: ये मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा।
1: जी रासायनिक दवाई अपना रहे तो सावधानी रखना जरूरी है।
0: हाँ, रासायनिक दवाई अपना रहे तो सावधानी रखने की जरूरत है। ये क्या है, काली दवा हर जगह मिलती है, गांव में भी मिल जाती है, लेकिन जो बहुमात्रक विष रोडाफिन, रेकाफिन, वारफेरिन बताए, ये बड़े शहरों से मिलती है। या हम खंडवा की बात करें तो खंडवा में यदि हमारे किसान मांगेंगे तो निश्चित रूप से खंडवा के किसानों को भी, जिले के किसानों को भी ये उपलब्ध होगी। तो इसका उपयोग करना बेहतर है उनके चूहा प्रबंधन के दृष्टिकोण से। तो इसे अपनाएं आगे, ये मैं आपके माध्यम से उन तक जानकारी पहुंचाना चाहूंगा।
1: जी अच्छा, चूहों का परसाई जी यदि हमको समूल रूप से नष्ट करना हो तो
0: समूल रूप से नष्ट करना इनको वैसे तो बहुत कठिन है
1: जी।
0: चूहा हम मानते हैं कि मानव की जो संख्या है, जनसंख्या है, उससे कहीं 6 गुना अधिक इनकी संख्या है
1: जी।
0: और ये आपका इतना खाते हैं कि 13 करोड़ लोगों की उदर पूर्ति का साधन ये बन सकता है। या वैज्ञानिक संस्थाओं ने कुछ आंकड़े दिए हैं कि यदि हम केवल चूहों के द्वारा जो क्षति हो रही है अनाज को, उसको बचा ले तो प्रत्येक मनुष्य के लिए 4 चपाती प्रतिदिन उपलब्ध करा सकते हैं। इससे हम इनका नुकसान का आकलन कर सकते हैं। अब समूल नष्ट करना थोड़ा कठिन है, जैसा मैंने कहा कि शक्ति स्वभाव का है
1: जी।
0: और किसी चीज को सामान्य रूप से ग्रहण नहीं करता नई चीज को, तो इसके लिए हमको जैसा मैंने बताया कि बहुमात्रक विष उपयोग करें और एक बड़े पैमाने पर एक अभियान के विरुद्ध छे किसी गांव विशेष में पूरे किसान इसके लिए अभियान
1: जी,
0: शहर विशेष में पूरे शहर के निवासी जो है नागरिक ये अभियान, तभी हम इनको इनका प्रबंधन जो है या नियंत्रण जो है सफलतापूर्वक कर, मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा।
1: जी डॉक्टर सतीश परसाई जी, आज आपने हमारे किसान भाइयों को कृषि में चूहे और उनका प्रबंधन इस विषय पर बहुत अच्छी और विस्तार से जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: चलिए धन्यवाद किसान भाई, राम राम।
2: भाई बहनों ने अभी हम सुनी रहा था भेंटवार्ता, विषय तो कृषि में चूहे और उनका प्रबंधन। इन विषय में जानकारी दे रहा था वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश परसाई। अब आपको हम बता दें आज का कृषि समाचार। खंडवा जिला का छोटा सा गांव जावर अब सब्जी उत्पादन और निर्यात का क्षेत्र में नई पहचान बनी रोज। गांव का प्रगतिशील किसान भाई का द्वारा खीरा रू टमाटर की खेती 2 साल से करी जा रही जी। आज 160 किसान भाई का समूह न 400 एकड़ क्षेत्र तक पहुंची गई। ग्राम जावर में उत्पादित खीरा, टमाटर, करेला, लौकी और नींबू देश का बड़ा बड़ा शहर का साथ साथ विदेशी बाजार तक भी जाई रोज। ग्राम जावर का प्रगतिशील किसान भाई अश्विन बादल सी सावले ने बताया कि 4 साल पहले शुरू कराया गया इना प्रयास से लगातार सफलता मिलने के बाद दूसरा किसान भाई ने जोड़ी कर उत्पादक संगठन को गठन करे। इना संगठन से जुड़ेल 160 किसान भाई आधुनिक तरीका से सब्जी उत्पादन करी रहा न प्रति एकड़ 4 से 5 लाख रुपया तक की आय भी प्राप्त करी रहा। जावर में उत्पादित सब्जी न की मांग मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, लुधियाना, नोएडा न पठानकोट सहित कई प्रमुख मंडी ने तक भेजी जा रही। बेहतर गुणवत्ता न निरंतर आपूर्ति का कारण सब्जी न की मांग लगातार बढ़ी रही। खेती में नवाचार का साथ 6 सोलर ड्रायर भी लगाया गया है। यही था आज का कृषि समाचार। और भाई बहनोनी आओ अब हम एक निवाड़ी लोकगीत सुनी लेवाई जेखा गायज बलिराम आशाराम यदुवंशी अरु साथी ना।

अभी आप सुनी रहा था बलिराम आशाराम यदुवंशी और उस साथी नको गायल निमाड़ी लोकगीत। भाई उन्होंने अब आपको बता देवा कृषि उपज मंडी खंडवा से प्राप्त कृषि उपज का भाव। सोयाबीन को अधिकतम भाव रहो 6,851 रुपये प्रति क्विंटल, न न्यूनतम रहो 5,000 रुपये प्रति क्विंटल। गेहूं को अधिकतम भाव 2,585 रुपये प्रति क्विंटल, न्यूनतम 2,275 रुपये प्रति क्विंटल। तुअर को अधिकतम भाव 7,413 रुपये प्रति क्विंटल, न्यूनतम रहो 6,201 रुपये प्रति क्विंटल। चना को अधिकतम भाव 5,775 रुपये प्रति क्विंटल, न्यूनतम रहो 5,226 रुपये प्रति क्विंटल। मूंग का अधिकतम भाव 7,425 रुपये प्रति क्विंटल, न्यूनतम 6,521 रुपये प्रति क्विंटल। मक्का को अधिकतम भाव रहो 2,169 रुपये प्रति क्विंटल, न्यूनतम भी 2,169 रुपये प्रति क्विंटल रहो। अब जानकारी मौसम की, आज सूर्योदय 5:43 पर हुई और सूर्यास्त शाम 7:10 पर हुआ। आज का दिन को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहो, रात को न्यूनतम तापमान 26

21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तो ये थी मौसम की जानकारी। ना आपको बता दिया हूँ प्रश्न का उत्तर। कार्यक्रम का शुरू हमने आपसे प्रश्न पूछो थो कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड से कौन सी जानकारी न मिले, तो प्रश्न का उत्तर छे मृदा स्वास्थ्य कार्ड से मिट्टी में पोषक तत्व नका गुणवत्ता की जानकारी मिले, संतुलित उर्वरक नको उपयोग से लागत में कमी आवे, फसल उत्पादन में वृद्धि का साथ फसल का चयन में भी सहायता मिले। तो ये तो प्रश्न का उत्तर। अब आज का कार्यक्रम को समय यहाँ पूरा ही रोज, तो कार्यक्रम समाप्त करने की आपका अपना भाई अखिलेश बरोलेख आज्ञा दियो। राम राम।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी आप किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। अब हम राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित करेंगे।

0: दोस्तों, आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं आतिश की लिखी झलकी, लो कर लो दर्शन। निर्देशक हर्षवर्धन गवई।
1: अच्छा सीताराम जी, नहीं वो बात सही है आपकी, लेकिन
2: मैं भी वही कह रहा था।
1: हाँ, आप तो सही कह रहे थे, लेकिन ये अरे ये जोगिंदर सिंह जी कैसे अस्त व्यस्त से चले जा रहे हैं?
2: लगते तो वही है। ए, ए, ए, एक मिनट। अरे जोगिंदर सिंह जी, ओ जोगिंदर सिंह जी, सरदार जी,
1: ओ जी,
2: अरे क्या क्या झटका खाया क्या? है क्या आपने? कहाँ चले जा रहे हैं घबराए से?
3: ओ क्या बताऊं सीताराम जी, शुक्र करो कि मैं जिंदा हूँ।
1: क्यों, क्या हो गया?
2: क्या हो गया?
3: अरे यार, खबर तो पढ़ी होगी आपने, टीवी पर देखी और सुनी भी होगी। हमारे पड़ोस में जो 6 मंजिला इमारत बनी थी।

0: आ चाणक्य कृपणी।
1: ओ जी, अरे रे रे,
0: ओ
1: अरे रे रे,
0: हो,
1: हाँ जी, हाँ
0: जहां
1: जी।
0: जी।
1: अच्छा फिर तो उससे आपका क्या ताल्लुक?
0: ओ यार, हम लोग जहां चाय पीते हैं ना,
1: हाँ।
0: मैं उसी के नीचे खड़ा चाय की दुकान से चाय पी रहा था।
2: हुआ क्या?
0: बस सिर्फ 1 मिनट पहले चाय पीकर वहां से बमुश्किल 100 कदम आगे बढ़ा हूंगा कि पीछे से जोर से धड़ाम की आवाज आई। मुड़कर देखा तो बिल्डिंग गिर गई थी।
2: अच्छा।
0: हाहाकार मच गई। मलबे के नीचे दबकर 30 लोगों की मौत हो गई। बस 1 मिनट का फर्क है, अगर मैं वहां से ना हटा होता ना, मैं भी ऊपर वाले के पास पहुंच गया होता।
2: ओहो, बड़ी बुरी खबर है यार।
0: भला हो भाई गुरु का, उसने ऐन वक्त पर मुझे बचा लिया।
2: सचमुच जाको राखे साइया सरदार जी, मार सके ना कोई।
0: ओए जिसनू राखे रब तो उसनू चखे कान।
1: क्या रब ने बचा लिया है? और वो जो 30 बेगुनाह मलबे के नीचे दबकर मर गए, उन्होंने रब का क्या बिगाड़ा था?
2: लेकिन राम गोपाल जी,
1: अरे सच्चाई ये है सीताराम जी, कि वो बिल्डिंग अनऑथराइज थी।
2: अच्छा।
1: उसकी कंस्ट्रक्शन में भी घटिया माल का इस्तेमाल किया गया था। सीमेंट की जगह रेत खूब ज्यादा इस्तेमाल की गई थी। जाहिर है कि अथॉरिटीज के साथ मिलकर रिश्वतखोरी की गई, मोटी मोटी रकम ऊपर से नीचे तक बहाई गई और
2: ओहो,
1: बिल्डिंग बनने दी गई।
0: जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी।
2: क्या बताएं सरदार जी, क्या माहौल हो गया है। इस भ्रष्टाचार ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है पूरे माहौल का।
1: तो फिर रब ने इन भ्रष्टाचारियों को सजा क्यों नहीं दी? वो तो सब देख रहा है ना, सब जानता है ना। और यही नहीं है जो जोगिंदर सिंह जी के घर के बाजू में हुआ है,
2: तो
1: एक और बुरी खबर है।
2: वो क्या है?
1: एक अनथराइज रेस्टोरेंट में आग लगने से वहां जन्मदिन मना रही एक लड़की और उसके साथी जलकर मर गए। जानते हो 20-22 साल के 14 बच्चे मारे गए।
2: माय गॉड,
0: हाँ जी ये सही कह रहे हैं।
2: बड़ी दिल दहलाने वाली खबर है सरदार जी।
1: अरे वहां भी तो बेचारे लोग खामखा ही मारे गए ना। अब क्यों नहीं जला डाला उन सभी गुनाहगारों को तुम्हारे रब ने? क्यों नहीं मार दिया उनको? क्या अजीब मजाक है, जो बेगुनाह हादसों में मारे जाते हैं उनके बारे में बस एक ही राय है, अजी साहब उनकी तो मौत आ गई थी, अजी साहब उनकी तो किस्मत में बस इतनी ही जिंदगी लिखी थी। और जो हमारे सरदार जी जैसे बच जाते हैं, उसका सारा का सारा क्रेडिट भगवान को चला जाता है।
2: लेकिन यही तो कहा जाता
1: अरे
2: है ना?
1: क्या कहा जाता है, आप सीताराम जी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। आप भगवान को क्रेडिट दे देते हैं, कभी रब को क्रेडिट दे देते हैं। एक और कमाल की सोच है, कमाल का विश्वास है। जो किया वो रब ने किया, जो दिया वो रब ने दिया। अरे साहब देखिए, हम भी पैदा हुए हैं, अपने माँ बाप की औलाद हैं, हमारी भी औलादे हैं, जिसको देखो वो सारा क्रेडिट रब को दिया जा रहा है। है सब क्या उसी की मेहरबानी है? बताइए सरदार जी, चुप क्यों हैं? क्या गलत कह रहा हूं मैं?
0: आप तो नास्तिक हो, आप तो ऐसा ही कहेंगे।
1: अरे सीताराम जी, भगवान ईश्वर गॉड रब सब एक विश्वास है, जो आस्था बन गया है। गॉड यानी रब ने इंसान को बनाया, बनाया या नहीं बनाया ये तो नहीं जानता मैं, लेकिन ये कभी ना झुठलाने वाला सच है कि ये इंसान है जिसने रब को बनाया। इंसान के बिना रब को जानता ही कौन है, बताइए आप। ये जो जानवर हैं, ये भी तो रब के बनाए हुए हैं ना। ये किसी भी धर्म स्थान के अंदर चले जाते हैं, आराम से लघु शंका से निवृत्त हो जाते हैं, गोबर कर देते हैं। भगवान होता तो ऐसा करते ये कभी?
3: यही तो फर्क है नास्तिक जी, इंसान और जानवर में। जानवर को दिमाग नहीं दिया भगवान ने, इंसान को दिया है सोचने और समझने के लिए।
0: ओए भगवान दास, बहुत देर के बाद आए हो, कितने सी तू।
3: मैं भगवान के साथ क्रिकेट खेल रहा था।
2: क्या बात कर रहे हैं भगवान दास जी, है कोई दूसरा भगवान भी तेरे नाम जैसा?
3: मेरे नाम जैसा नहीं, सचमुच का भगवान जिसे तुम ईश्वर कहते हो, रब कहते हो, वो मेरा दोस्त है। मेरे साथ क्रिकेट भी खेलता है और शतरंज भी खेलता है।
1: फेंकू चंद है ये हमारा दोस्त जो है ना, ये भगवान दास नहीं फेंकू चंद है, फेंक रहा है। अरे भला जो दिखता ही नहीं उसकी हकीकत क्या? ढकोसला है सब, रब गॉड। अरे तुम दिख रहे हो, मैं दिख रहा हूं, सीताराम जी दिख रहे हैं, सदा जी दिख रहे हैं, कहाँ है तेरा रब?

0: बता दो कहां, दिखा जरा मुझे, दिखा भाई।
1: वो सर्वव्यापक है ना, तुम्हारे सामने इसी वक्त मौजूद है, मगर तुम जैसे नास्तिक को दिखाई नहीं देगा।
0: चलो मैं मान लेता हूं मैं नास्तिक हूं। ये हमारे सरदार जी तो आस्तिक है ना, ये सीताराम जी तो आस्तिक है ना। भैया आपको दिख रहा है तुमको दिख रहा है?
2: नहीं दिख रहा है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: दो अब जवाब, है कोई जवाब?
1: ये हवा है ना, इसी में हम सब सांस ले रहे हैं, तुम भी। क्या दिखाई देती है किसी को? जिंदगी क्या है? जब तक सांस लेते रहोगे जिंदा रहोगे, सांस बंद जिंदगी खत्म। मैं भगवान का दास हूं इसीलिए वो मेरा दोस्त है। मैं तो जब भी बुलाऊं वो ओब्लाइज करता है, दर्शन देने आ जाता है।
2: क्या बात कर रहे हैं भगवान दास, हमें भी दर्शन करवा दो भाई।
3: ओ हाँ यार, सानू भी करवा दे दर्शन।
1: चलो ठीक है, तो इस संडे को आ जाओ मेरे घर पे, मैं विनती करके बुला लूंगा रब जी को, आप दर्शन कर लीजिए।
2: ठीक है जी, आ जाएंगे। क्यों सरदार जी?
3: बिल्कुल आ जाएंगे जी।
0: भैया मुझे तो बख्श दो।
2: क्या बात कर रहे हो, चलिए आप भी चलिए।
0: नहीं, नहीं नहीं नहीं,
1: ना ही आओ तो अच्छा है।
0: हाँ,
1: भगवान की भी यही इच्छा है,
0: बस आप लोग दर्शन कर लो जी।
1: तो आ जाना आप दोनों हाँ मेरे घर।
3: अच्छा जी, सत श्री अकाल।
2: राम राम भगवान दास, जरूर आएंगे।
3: ओ जी सत श्री अकाल जी।
2: भाई भगवान दास, राम राम।
1: आइए आइए, आ गए आप। मगर ये क्या, साथ में इतनी भीड़ ले आए?
2: अब क्या करें, जिसने भी सुना दौड़ा चला आया, हमें भी दर्शन करवा दो, हमें भी दर्शन करने हैं, साथ ले चलो। चलो भाई,
1: ओके, ऐसा करते हैं, वहाँ दूर एक लाइन में खड़े हो जाओ सब लोग, एक एक करके आना।
2: ठीक है।
1: अंदर कमरे में भगवान जी हाजिर है, कर लो दर्शन।
2: सरदार जी आप एक काम करो, आप लाइन लगवाओ, सबसे पहले मैं दर्शन करूंगा जी, और दूसरी बारी आपकी आ जाएगी, लाइन लगवाओ।
3: ओ अच्छा जी, ओ ठीक है जी, मैं जाता हूँ लाइन लगवाता हूँ, छेती छेती आप भी आ जाना, पहले दर्शन मेरे होंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाओ लाइन लगवाओ। तो भगवान दास जी अब मैं जाऊं भीतर दर्शन करने?
1: हाँ हाँ, मगर एक शर्त है।
2: शर्त वर्त यहाँ पर?
1: भगवान सिर्फ उसी को दिखाई देंगे जिसने कभी झूठ ना बोला हो।
2: जी झूठ से मेरा क्या नाता, कोसों तक कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो केवल सच ही बोलता हूँ जब भी बोलता हूँ।
1: जिसने पाप ना किया हो।
2: ओहो, मैं तो पुण्य का भागी हूँ, और पुण्य भी ऐसे करता हूँ कि इस हाथ का उस हाथ को पता नहीं चलता।
1: और जिसने किसी को धोखा ना दिया।
2: हम क्यों धोखा वोखा देंगे, और भी कोई शर्तें हैं आपकी?
1: जिसने रिश्वत ना ली हो ना दी हो।
2: रिश्वत से अपना दूर दूर का कोई नाता ही नहीं है।
1: किसी लड़की पर बुरी नजर ना डाली हो।
2: हम क्यों नजर डालेंगे, आप बताइए कितनी शर्तें और बाकी हैं आपकी?
1: और जिसने किसी पराई स्त्री को कभी ताका झांका ना हो।
2: अरे भाई क्यों जागेंगे ताकेंगे किसी पराई स्त्री को, और भी कोई शर्त है, भीतर जाऊं दर्शन करने?
1: जाओ अंदर जाओ, दर्शन कर लो।
2: ठीक है, ये चला।
1: क्यों जी सीताराम जी, मिल लिए भगवान को, हो गए दर्शन रब के?
2: दर्शन? अरे भगवान दास जी दर्शन की बात करते हो, हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हो गए, विराट प्रभु का स्वरूप, ओ हो, आत्मा प्रसन्न हो गई, क्या साक्षात दर्शन दिए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु।
1: इसी तरह सरदार जी ने भी दर्शन लिए, और जो भी आया था सभी ने यही कहा कि उसे भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों हंस रहा हूं। मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि ऊपर बैठा भगवान भी हंस रहा है।
4: लो कर लो दर्शन। अभी आप सुन रहे थे आतिश की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे हर्षवर्धन गवई। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे अमरकांत दुबे, अशोक सोनावने, राजेंद्र त्रिपाठी और जयंत पात्रिकर। ये थी विविध भारती मुंबई की प्रस्तुति।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है। और इस गजल के

0: इनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे चित्रलोक।

बर्फी फिल्म का गाना निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज थी, स्वानंद किरकिरे के बोल प्रीतम की तर्ज थी, रेखा भारद्वाज और साथियों की आवाजें, प्रसून जोशी के बोल, संगीत ए आर रहमान का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपये किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रुपये होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। ICC क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और FIFA फुटबॉल विश्व कप में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के UK इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत

0: ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
1: Partnership with UK is taking many more dimensions.
2: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
0: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को SIT का गठन किया था। SIT मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी या तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
4: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1,700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचावकर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप

0: के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायला और बाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागा, कर्नाटक से भाजपा के देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्यत्व के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4,931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2,035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
1: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा AI, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का

0: सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई, वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रुपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए।

0: कुमार कानपुरी का लिखा बप्पी लहरी का स्वर व्यक्त किया ये जख्मी फिल्म का गाना था।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन
2: कौन कौन लाया।
3: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
4: परेशान हूँ मैं।
3: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
5: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
3: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
5: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
3: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता।

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। दोस्तों, आज के फनकार हैं एक ऐसे सुरीले संगीतकार जिन्होंने नाजुक तरीन गाने दिए हैं, जिनका जादू आज तक कायम है और सदियों तक गाए जाएंगे उनके गीत।

आज के फनकार एक ऐसे संगीतकार जिनके स्वरबद्ध किए गाने हमारी जिंदगी के साथी हैं, जिनके संगीत में खुशी है, गम है, प्यार है और इंतजार है, ढेर सारी कशिश है, जज्बात का सागर है।

संगीतकार मदन मोहन ने ढाई दशक के सिनेमा के करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। मदन मोहन की बनाई धुन आपकी नजरों ने गीत से संगीत सम्राट नौशाद इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस धुन के बदले संगीत का पूरा खजाना लुटाने को तैयार हो गए थे।

मदन मोहन कोहली का जन्म 25 जून 1924 को कुर्दिस्तान में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल वहां नौकरी करते थे। जिंदगी के शुरुआती 5 साल मदन मोहन ने वहीं बिताए। आगे चलकर उनका परिवार मुंबई आ गया और उनका बचपन बीता राज कपूर, नरगिस और सुरैया के साथ। दरअसल ये उनके पड़ोसी थे। आगे चलकर मदन मोहन ने आकाशवाणी लखनऊ में नौकरी कर ली, जहां उन्हें मिला साथ उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद बरकत अली खां, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसी हस्तियों का।

मुंबई आने के बाद मदन मोहन श्याम सुंदर और सचिन देव बर्मन के सहायक बन गए। सबसे पहले मदन मोहन को निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल ने फिल्म आंखें में संगीत देने का मौका दिया। इसके बाद मदन मोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर और मदन मोहन का साथ लेकर आया कई अनमोल गाने। उन गानों की बात करने से पहले आपको ये बता दें कि फिल्म अदा से लता मंगेशकर और मदन मोहन ने साथ काम करना शुरू किया, जैसे अदालत।

मदन मोहन के संगीत की दुनिया लता जी तक ही नहीं सीमित रही, न ही मदन मोहन का संगीत सिर्फ संजीदा गानों तक सिमटा रहा, बल्कि उन्होंने मजाहिया गीतों का जादू भी बिखेरा, जैसे फिल्म चाचा जिंदाबाद का ये गाना।

0: उनके बेटे संजीव कोहली और समीर कोहली विविध भारती के स्टूडियो में आए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: यह हमारा सौभाग्य है कि हम उनके बेटे पैदा हुए, लेकिन मेरे हिसाब से कड़ी तो उनका संगीत है और कड़ी उनके सुनने वाले हैं और चाहने वाले हैं जिन्होंने आज तक उनको जिंदा रखा है। और ये जिंदा उनको ऐसा रखा है क्योंकि उनके गाने आज भी लोग इतने ही प्यार से सुनते हैं जैसे पहले सुनते थे। मदन जी जब गुजरे, हमारे पिताजी, मैं मदन जी ही कहूँगा क्योंकि इट बी ईजी फॉर देम, जब वो गुजरे मैं 18 साल का था, समीर शायद 13-14 के थे, तो हमारी यादें जो बचपन की जुड़ी हैं वो काफ़ी याद हैं लेकिन कुछ धुंधलाई भी हैं। ज़्यादातर हमने उनके जाने के बाद सुनने वालों के तौर पे उनको जाना। मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैंने म्यूज़िक कंपनी में भी काम किया और कई संगीतकारों के साथ मिल के काम किया, कई एल्बम्स, कई लोगों का म्यूज़िक बड़े मतलब चाह से सुना समझा। और ये फिर इल्म हुआ कि मदन मोहन जी का एक जो स्थान था वो कुछ अलग था। जितनी इज्जत लोगों ने उनको दी, जितना प्यार सुनने वालों ने और उनके गायकों ने, बाकी संगीतकारों ने जो उनको इज्जत बख्शी है, जिससे हमें इज्जत मिलती है कि मदन जी का संगीत इतने सालों बाद आज भी लोगों को पसंद है। 25 साल उन्होंने म्यूजिक दिया, उनका करियर 25 साल का था, जल्दी गुजर गए 51 की एज पे। हमेशा उन्हें लगता था कि जितना सक्सेस उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिला, हमें नहीं लगता है लेकिन उन्हें ज़रूर लगा। और इसकी वजह भी हैं, सक्सेस का जो बैरोमीटर है वो था कि बड़े बैनर हों, बड़ी फिल्में हों जिनमें बड़े बड़े स्टार्स हों, दिलीप साहब हों, राज कपूर हों, देवानंद हों। फिल्म फेयर अवार्ड मिलना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उस वक्त एक ही अवार्ड था, कि उनके जाने के बाद ये सब होता गया।
2: जी मेरी एक छोटी सी याद है, उस जमाने में मैं विविध भारती बहुत सुना करता था और मुझे अभी तक याद है, ये उस जमाने में टेलीविजन तो था नहीं, तो 7:05 पे आप लोगों का प्रोग्राम शनिवार को जयमाला बजता है, तो वो सुनने के लिए मैंने रेडियो करीब 7 ऑन किया और मैंने रेडियो में ये सुना न्यूज़ में कि दस्तक ने उस साल के सारे अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स स्वीप कर लिए थे। संजीव कुमार साहब को बेस्ट एक्टर के लिए, रेहाना सुल्ताना साहिबा को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, मजरू साहब को बेस्ट लिरिक्स के लिए, मदन जी को म्यूज़िक के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैंने डैड को, म्यूजिक रूम घर के सामने था, मैंने फ़ोन किया उन्हें, मैंने कहा कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं इस वक्त म्यूजिक सिटिंग में हूँ। तो मैंने कहा नहीं, खबर बहुत अच्छी है, मैं आपसे आके मिलना चाहता हूँ और खबर इतनी अच्छी कि मैं आपसे 1,000 रुपये मांगना चाहता हूँ, इस खबर के लिए आप मुझे 1,000 रुपये दें। तो उन्होंने कहा खबर अच्छी होगी तो मैं देखूँगा, नहीं तो तुम देखो तुम्हारी क्या हालत करता हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। तो मैं डरते डरते रोड क्रॉस करके मैं म्यूज़िक रूम में गया और मैंने जब घंटी बजाई और उन्होंने कहा क्या है, तो मैं देखा कि कोने में रफ़ी साहब बैठे हैं, राजेंद्र कृष्ण साहब बैठे थे वहाँ, उनकी किसी गाने की सिटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा कि आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वो बड़े गुस्सा हो गए क्योंकि उन्होंने लगा कि मैं शायद उनके साथ मजाक कर रहा हूँ। और उसी वक्त दरवाजे की घंटी फिर से बजी और उनके बड़े करीबी मित्र मरहूम जयदेव साहब दरवाजे पर खड़े थे, उनके हाथ में एक शैंपेन की बॉटल थी और उन्होंने कहा मदन मैंने भी अभी सुना है कि तुम्हें दस्तक के लिए अवार्ड मिला है और मैं तुम्हें मुबारकबाद।
1: इसकी एक वजह थी, वजह ये थी कि उन्हें तब तक कोई बड़ा अवार्ड मिला ही नहीं था और दस्तक 1970 में मतलब 20 साल का करियर हो चुका था, तो थोड़ा वो निराश भी थे कि मुझे अवार्ड कभी मिलता ही नहीं। और फिर वो दिल्ली जाने से उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। तो संजीव कुमार जी, जिनको भी उस

फिल्म के लिए एक्टर का अवार्ड मिला था, वो हमारे घर आए और उन्होंने उनको मनाया कि आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर संजीव कुमार जी ने वही किस्म के दो सूट सिलवाए और मदन जी और संजीव कुमार ने वही दो सूट बोटाई के साथ एकदम जे सेम सूट्स पहन के दोनों साथ में उस फंक्शन के लिए गए।

लेकिन मैं जैसे कह रहा था, इसकी वजह ये थी कि पहले जब फिल्म फेयर अवार्ड, जो मेन अवार्ड उस वक्त कमर्शियल अवार्ड, पॉपुलर अवार्ड होता था जो वोट से होता था, उन्हें 3 बार नॉमिनेट किया गया लेकिन अवार्ड नहीं मिला अनपढ़ 1962 में। उससे मुझे जुड़ी एक बात याद आ रही है कि हम छोटे थे, मैं 6 साल का था, तो मदन जी गाड़ी खुद चलाते थे, उनकी बहुत बड़ी गाड़ी होती थी जो पहचानी जाती थी कि ये मदन मोहन की गाड़ी है, क्योंकि बहुत स्पेशल रंग था गाड़ी का। तो वो जब हमें ड्राइव पे ले जा रहे थे, हम वर्ली सी फेस पे जा रहे थे और हम बच्चे थे, मैं जैसे काफी छोटा था, तो हम बोलते थे डैड तेज़ चलाओ तेज़ चलाओ, क्योंकि वर्ली सी फेस उस वक्त ट्रैफिक बहुत कम होता था। तो वो तेज़ चलाने लगे, आस्ते आस्ते पुलिस की सायरन्स की आवाज़ पीछे से आने लग गई। हम तो बच्चे थे, समझ नहीं आया कुछ, इतना घबरा गए कि पीछे पुलिस आ गई है। मेरी माता जी जो साथ में बैठी थी, भाई रोको गाड़ी रोको, पुलिस आ रही है, क्या तुम इतने तेज से क्यों चला रहे हो। गाड़ी रोकी और पुलिस के इंस्पेक्टर थे, इनफैक्ट वो उस वक्त सीनियर इंस्पेक्टर थे बहुत, और वो उतरे और उन्होंने कहा शीशा नीचे कीजिए, और उन्होंने कहा मदन जी मैंने इसलिए आपको रोका है कि मैंने आपकी नज़रों ने समझा गाना जो सुना है कमाल गाना है। और फिर वो चले गए और मेरे पिताजी ने माताजी की तरफ देख के कहा कि देखो मेरे लिए अवार्ड यही है।

0: संगीतकार मदन मोहन ने थोड़े समय तक फौज में नौकरी की थी। जब चेतन आनंद ने बनाई फिल्म हकीकत, तो संगीत की जिम्मेदारी सौंपी मदन मोहन को और उन्होंने इस फिल्म में दिया बड़ा ही शानदार संगीत, जिसकी मिसाल है ये देशभक्ति गीत।
1: कर चले हम फिदा जा

दोस्तों, मदन मोहन न केवल सुरीले संगीतकार थे बल्कि उन्होंने सुरीला स्वर भी पाया था। वो खुद भी गाते थे। आकाशवाणी लखनऊ में काम करते हुए मदन मोहन ने संगीत के राग रागिनियों का भी रियाज और प्रयोग किया।

0: शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम छाया गीत में। मैं हूं विधि जैन। रूठना मनाना, ये तो प्यार का ही रूप है। शायद वो रूठकर हक जताते हैं और हम मनाकर प्रेम। वो रूठते हैं तो उदास नहीं, प्यारे लगते हैं, और हम मनाते हैं तो बेसहारा लगते हैं। और सहारा देने को वो मान भी जाते हैं, और फिर प्रेम अपना कुछ यूं दिखाते हैं।

मैं खामोशियों की ऊट में खुद को छुपाइए, मेरी आंखों की बेचैनी जरा आकर पड़ जाइए। खता मुझसे हुई होगी मगर इतनी सजा कैसी, गिले शिकवे सभी रखिए मगर कुछ तो सुनाइए।

हम जानते हैं वो दूर जा रहे हैं, पर मन से नहीं, बस इतरा रहे हैं। बुरा तो लगा था हमारी बातों का उन्हें, पर अब लगता है बस यूं ही वो भाव खा रहे हैं। इसीलिए हमारी कलम ने लिखा कि चलो अब मुस्कुरा दो, ये गुस्सा छोड़ भी दो, मेरी खातिर अपनी जिद का रिश्ता तोड़ भी दो। जानती हूं ये रूठना बस बहाना है तुम्हारा, मुझसे और थोड़ा प्यार जताना है तुम्हारा।

0: देखा दिल न तोड़ो
1: और छोड़ो हाथ छोड़ो
0: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे
1: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ।

0: रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के।

0: अंतराल के बाद पुनः स्वागत है कार्यक्रम छाया गीत में। हम बात कर रहे हैं रूठने की और मनाने की। और अगर प्रेयसी रूठ जाए और कारण पता ना हो तो? पर मनाना तो जरूरी होता है ना, और मनाने के लिए थोड़ी सी जरूरत तो की जा सकती है और थोड़ी सी मेहनत भी। तो कहती है कलम की, तेरी खामोशियों में भी सदाएं सुन रहा हूँ मैं, तेरे रुखसार पर ठहरी दुआएं चुन रहा हूँ मैं, जो तेरी आंखें बरसों से कह ना पाई मुझसे, उन्हीं अनकही बातों के अफसाने बुन रहा हूँ मैं।
1: तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं के इन अदाओं

किसी के रूठने से दिल तड़प जाता है, उसको मनाने के लिए भी दिल रह ही जाता है। रूठने मनाने के सिलसिले में कई सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और प्यार और मुस्कुराता है। कभी कभी रूठे दिल को देखकर तड़पन और मुस्कुराते देखकर मन की खुशी दोनों ही बड़ी खूबसूरत होती हैं। कहती है कलम कि मैं आपके नाम की खुशबू लिए फिरती हूँ सांसों में, मेरे एहसास की दुनिया में फिर से मुस्कुराइए। न जीत मेरी न आपकी मोहब्बत की हो बस, चलिए अब मान भी जाइए और मुझे गले लगाइए।

ये रूठना इजाजत देता है और करीब आने की, और ये मनाना इजाजत देता है फिर से मुस्कुराने की। ये रूठने मनाने के, शिकवे के, शिकायतों के, इन पर्दों को धीरे धीरे हटाकर ही प्रेम का सुंदर रूप दिखाई देता है। रूठना मनाना, इसकी भी एक हद होनी चाहिए। एक हद के बाद रूठे हुए को मान भी जाना चाहिए। और बस ऐसे ही जो रूठा है वो रूठ तो सकता है, यह उसका अधिकार है, पर मानना ये भी उसके काम में ही आता है। तो रूठिए पर जल्दी मान जाइए। इसीलिए तो कहा है कलम ने, ये जो रूठे हैं लब आपके, मौसम भी उदास है, बहारों की तरह फिर से मेरे आंगन में आइए। मैं अपने हर तर्क को अब प्रेम में बदल दूंगी, आप बस एक बार दिल से मुझे अपनाइए। नजर झुक झुक के कहती है बहुत कुछ आज भी, लेकिन मेरे अल्फाज से पहले मेरी धड़कन को पाइए। जो बीती बात थी उसको हवाओं में बिखरने दें, नए सपनों की चादर फिर मोहब्बत पर बिछाइए।

अब अगर रूठे तो जल्दी मान जाना, अगर शिकवे हों तो जल्दी से मिटा देना, क्योंकि जीवन मुस्कुराने के लिए है और साथ बिताने के लिए। रूठना मनाना एक पल का हो तो अच्छा है, अगर लंबा चले तो बड़ा दुखदाई। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, रूठे को मनाते रहिए, अगर कोई मनाए तो जल्दी से मानते रहिए। छाया गीत कार्यक्रम में आज इतना ही। अब आज्ञा दीजिए विधि जैन को। नमस्कार।

0: करोगे?
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन?
2: कौन लाया? कौन लाया?

नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: प्रदेश है 11 बजने वाले हैं। अब समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करते हैं।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
3: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
4: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
3: And together becoming a force multiplier.
2: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार